0: लाडू वाले की सबसे बड़ी खासियत, सबको खुश रखने वाले का,
1: खुश रखने वाले का।
0: सारी दुनिया दावा करती है कि बाबा हमारा है, फ्लाइट से आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है, पेट पलनिया आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है, लेकिन बाबा की खासियत देखो, कोई खाटू आकर बोले ना बोले कि बाबा हमारा है, लेकिन बाबा शाम पूरी दुनिया का आज हो रखा है, बाबा बोलता है तू मेरा है।

जिस मंच पे मैं खड़ा हूं, मेरे बाद विश्व की सबसे सुंदर आवाज मैं कहूंगा। हम उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहे हैं, मेरे बाद वो आएंगे। कोई वक्त होता था आज से 22 साल पहले, जब मैं भी वहां खड़ा होकर देखता था कि इस सूरज को कब नजर से देखूंगा। यह उसी की कृपा है कि उस सूरज के साथ खड़ा हूं, यह उसकी कृपा के बगैर नहीं।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
0: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन। कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद। अगर

0: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। संडे की सुबह खुशी है आपके साथ और ये है आपके अपने सिटी का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। ब्यूटीफुल डे। जी हाँ दोस्तों, संडे का खूबसूरत सा दिन है आज एंड तारीख है 16 अगस्त के और समय हुआ है 10:02 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और आज का मौसम भी कितना सुहाना है ना, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ठंडी सी हवाएं चल रही हैं और ऊपर से संडे की खूबसूरत मॉर्निंग। तो क्यों ना आज खुद से एक छोटी सी बात करें, नो टेंशन, जस्ट एंजॉय जिंदगी में जो हुआ उसके बारे में सोचकर अपने आज को खराब मत कीजिए। जो गम है उन्हें थोड़ा लेट इट गो कह दीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हर नई सुबह हमें एक नया चांस देती है ना, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का और सबसे जरूरी खुद को खुश रखने का। जो आपके पास आज है ना, उसे संभाल कर रखिए, उसकी वैल्यू समझिए, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए और इस पल को खुलकर एंजॉय कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपका टुडे खूबसूरत है ना, तो आपको टुमारो भी खूबसूरत होने की उम्मीद से भरा होगा। तो पुराने गमों को बोलिए बाय बाय, टेंशन को कहिए नॉट टुडे और जिंदगी से कहिए आई एम रेडी टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। तो चलिए इसी सुहानी संडे मॉर्निंग को बनाते हैं थोड़ा और म्यूजिकल और थोड़ा सा मैजिकल भी। और अब बजाते हैं वो गाना जो कहता है चक दे सारे गम। संडे मॉर्निंग मस्ती में आप सुन रहे हैं आरजे खुशी को और एवरीवन आप भी आज के मॉर्निंग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्या स्पेशल है आज के दिन संडे में, सब कुछ आपको पता लगेगा धीरे धीरे। बस बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। मैं लौट कर आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के इस पर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: मेरा गांव मेरी धरोहर है,
2: मेरा गांव मेरी धरोहर पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपने फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ और श्रोताओं, शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती। वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 10:15। और श्रोताओं, कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज 16 अगस्त को हमारे भारत के महान नेता, कुशल व्यक्ति, संवेदनशील कवि और भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी वाणी में शब्दों की ताकत थी, उनके विचारों में राष्ट्र के प्रति समर्पण था और उनकी कविताओं में जीवन को उम्मीद के साथ देखने का संदेश था। तो आज उन्हें याद करते हैं, बस उन्हें याद करते हुए बस यही संकल्प हम लेते हैं कि देश के प्रति जिम्मेदारी, जीवन में सकारात्मकता और कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद कभी ना छोड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम शत-शत नमन करते हैं श्रोताओं। और मैंने आपसे कहा था कि आज की सुबह आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर लगातार आप सभी के खूबसूरत संदेश भी आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है पूजा जी का विकास नगर से, और राज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट यहाँ पर दिव्यांशी का मैसेज आया है और ये कहती हैं संडे की सुबह खुशी जी, आपको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिए। और संडे की सुबह आज छुट्टी है तो क्या कर रहे हैं आप? आराम से सो रहे हैं या उठ कर ब्रेकफास्ट कर लिया है अभी, सारे काम कम्प्लीट हो गए हैं, हाँ, या घूमने का प्लान कर रहे हैं आज? और दोस्तों, आज मेरे शो में क्या स्पेशल होने वाला है वो आपको पता लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना है, जुड़े रहना है फिर मुरादाबाद 89.6 के साथ। तो अभी लौट कर आती हूँ मैं आपकी खुशी

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
1: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संडे मॉर्निंग मस्ती शो में। खुशी आपके साथ है और संडे का दिन हो, खुशी आपके लिए लेकर आती है ढेर सारी खुशी।

जो और मस्ती ना हो ऐसे कैसे हो सकते हैं। हाँ, और अभी आपने सुना बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक दिलहारा। दोस्तों, कभी कभी ना एक गीत, एक ट्रैक ना सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचता है, सीधा दिल में उतर जाता है। और जब प्यारे गीतों की बात हो तो दिल की धड़कन भी जैसे एक खूबसूरत सी धुन बन जाती है ना। दोस्तों, समय हुआ है 10:30। और आज 16 अगस्त है। आज बताती हूँ मैं आपको कि क्या स्पेशल है। दोस्तों, आज बॉलीवुड के एक ऐसे दमदार नवाब और शानदार अभिनेता का बर्थडे है। आज उन्हीं के ऊपर फरमाया गया ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ। दोस्तों, आज जन्मदिन है बॉलीवुड की नवाब और शानदार अभिनेता सैफ अली खान जी का। 16 अगस्त 1970 को जन्मे सैफ ने अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक में की और धीरे धीरे अपनी अलग अभिनय शैली से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। आज उन्हीं के ऊपर फरमाए गए ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ यहाँ पर। और अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं सैफ अली खान जी पर फिल्माया गया, जी हाँ, सैफ अली खान जी पर, तो मुझे फटाफट व्हाट्सएप करो। नंबर है 9837896896। वैसे कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक मैंने भी चुने हैं आज, उन्हीं के ऊपर फिल्माए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। तो चलिए सुन लेते हैं उसी का एक शानदार सा गाना। एंड एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म है और उस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की है सैफ अली खान जी ने। फ्रॉम द मूवी लव आजकल, नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान जी की खूबसूरत सी आवाज़ में एक खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, तो आप इंजॉय कीजिएगा। एंड बस मैं आती हूँ अभी वापस।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग मस्ती शो आज ही खुशी के साथ। और अभी आपने सुनाई ब्यूटीफुल ट्रैक एंड मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी।

और दोस्तों आज जन्मदिन है सैफ अली खान जी का। उनकी बहुत ही बेहद खूबसूरत फिल्में रही हैं, दिल चाहता है, हम तुम, ओमकारा, कल हो ना हो, रईस और तन्हाई जी जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग किरदारों को बखूबी निभाया। रोमांटिक हीरो से लेकर गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं तक सैफ ने अपने अभिनय के कई रंग दिखाए हैं। उनका सफर हमें यही सिखाता है कि अभिनय में पहचान सिर्फ स्टारडम में नहीं बल्कि अपने हुनर को लगातार निखारने से बनती है। तो आज उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से सैफ अली खान जी को ढेरों शुभकामनाएं। जिंदगी का हर नया साल उनके लिए नई खुशियां, नई उपलब्धियां और ढेर सारी मुस्कुराहट लेकर आए। हैप्पी बर्थडे सैफ अली खान जी को, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो हमारी पूरी एफएम की टीम की ओर से एंड सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से। और दोस्तों मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताइए आपको सैफ अली खान जी की फिल्म का कोई ऐसी फिल्म जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी। वैसे बहुत सारी फिल्में उनकी बहुत अच्छी हैं, गाने भी एक से बढ़कर एक हैं और कुछ गाने मैंने भी सिलेक्ट किए हैं आज की सुबह।

0: तो मैं लौट कर आती हूँ, जब तक आप अपने मैसेज पहुँचा दीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, संडे की सुबह है, मुस्कुराइए एवरीवन। हर दिन अपने आप में बहुत स्पेशल होता है और आज का दिन भी बहुत ही स्पेशल है, तो अपने टाइम को बेवजह यूँ खराब ना करें, उसको यूटिलाइज करें। ओके, जो काम आपके इनकम्प्लीट रह गए हैं, पेंडिंग है, तो उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर काम कंप्लीट है तो आज कहीं घूमने का मन है बाहर, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने, क्योंकि मुझे लगता है कि खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, तो खुद को भी टाइम दीजिए, खुद से प्यार कीजिए। ओके, और हाँ, मुस्कुराना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बस मैं आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: प्यार हो गया? प्यार शार कुछ नहीं होता, शादी होगी तो अरेंज।
1: प्यार, ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ भूख, जिस्म की भूख।
2: प्यार अभी बता।

प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता है, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता है, रंगों पे नजर पड़ने लगती है और अब अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है। हर

दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी. वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:56 राइट नाउ. और अभी आपने सुना अमेजिंग ट्रैक अभिजीत भट्टाचार्य जी की बहुत खूबसूरत सी आवाज. ये दिल लगी से और इस ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी राशिद जी ने, रक्षित जी ने भेजी थी ये रिक्वेस्ट. बहुत ही प्यारा ट्रैक अभी आपने सुना. एंड हमारे पास नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है अफरोज फातिमा जी का और ये आज की सुबह हमें गुड मॉर्निंग विश करती हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? ईश्वरपुर से हमें मैसेज पहुंचाती हैं आज की सुबह इरम जी. एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया जिला अमरोहा नई बस्ती पति खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का आज की सुबह और ये अपनी फैमिली के साथ इस समय रेडियो एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाती है मुस्कान जी. गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. बट इन्होंने हमें नाम तो बताया है अपना, लेकिन कहाँ से मैसेज पहुंचा है ये हमें नहीं पहुंचाया है इन्होंने. तो ये आप नेक्स्ट टाइम मैसेज करें ना मुस्कान, तो प्लीज़ बताइएगा कि आप मुरादाबाद से मैसेज पहुँचा रहे हैं या फिर मुरादाबाद यू नो मुरादाबाद के दूसरे सिटी, मतलब मुरादाबाद में. देखिए मुरादाबाद बड़ा सिटी है, तो मुरादाबाद के आसपास भी बहुत सारे विलेज हैं एंड या फिर दूसरे सिटी से आप हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये अपने सिटी का नाम भी ज़रूर लिखा करें. उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ. और आज की सुबह ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं. हाय रबा, इन्होंने तो नाम ही नहीं लिखा, ऐसा मत किया करो यार. मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, तो कभी कभी हो जाता है कि हम मिस कर जाते हैं, लेकिन दोबारा से ये चीज़ें मत करना. मैं आपको रिमाइंड दिला रही हूँ, ठीक है? अच्छा लगता है ना जब आपके नाम के साथ हम भी मैसेज पढ़ते हैं एंड आपके मतलब जहाँ से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि अच्छा हमें वहाँ से उस सिटी से हमें हमारे लिसनर सुन रहे हैं. और दोस्तों 11 बजे हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान जुड़ने वाली हैं आज की सुबह. हमारे आज का हेल्थ टॉक शो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए खुशी के साथ. मैं लौट कर आने वाली हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पर. आप कहीं मचाइए यूं ही मुस्कुराइएगा और एक खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: ना भुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ आऊँ?

0: ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर्का
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी है। भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: प्यार से जिंदगी नहीं चलती। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सभी का बहुत बहुत एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:11। और दोस्तों आज खास कार्यक्रम हेल्थ चौक स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी हमें ना सिर्फ जागरूक बनाती है बल्कि कई ऐसी परेशानियों से समय रहते बचाने में भी मदद करती है जिनके बारे में हम अक्सर खुलकर बात नहीं कर पाते। आज का हमारा विषय भी बेहद महत्वपूर्ण है, इनफर्टिलिटी यानी गर्भधारण में आने वाली परेशानियां, फीमेल और मेल फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी प्लानिंग, IUIC, IVF और प्रेगनेंसी से जुड़ी जरूरी बातें। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद अनुभवी विशेषज्ञ, उनसे बातचीत करते हैं आज हमारे साथ डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, जो MBBS MS इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। OBS और मैम से भी बातचीत करने वाले हैं हम।

0: गायनोलॉजिस्ट एंड और भव्य हॉस्पिटल मुरादाबाद की डायरेक्टर भी हैं। दोस्तों अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। इस पर आप अपने सवाल जो मैम से पूछना चाहते हैं, कोई भी अगर आपको इशू है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा अपना सवाल। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं अगेन रिपीट करती हूँ, 9837896896। तो बस थोड़ी सी देर में मैम के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। हेलो
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।
1: गुड मॉर्निंग, सो वी मीट अगेन एंड इट्स रियली गुड टू कनेक्ट विद यू ऑल। आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी दी हुई कुछ जानकारियों के द्वारा आपके श्रोताओं का भी कुछ भला हो पाता हो, कुछ उनको जानकारी बढ़ती हो।
0: यस मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैम सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेडिकल भाषा में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन या गर्भ धारण में कठिनाइयों को किस स्थिति में कहा जाता है?
1: देखिए आइडियली स्पीकिंग अगर पति पत्नी जो है एक साल से तकरीबन बच्चा प्लान कर रहे हैं,
0: यस मैम,
1: और उसमें उनको सफलता हासिल नहीं हो रही है प्रेगनेंसी होने में, है ना?
0: Yes,
1: हम इसकी बात नहीं कर रहे कि अगर प्रेगनेंसी हो गई हो किसी वजह से वो आगे ना बढ़ सकी। तो अगर कंसीव हुआ ही नहीं है, बच्चा ठहरा ही नहीं है
0: जी मैम,
1: एक साल की अवधि तक, तो हम इसे मानते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए उसके में प्रॉपर आपको इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांचें करानी चाहिए और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचा जाए और उसके बारे में बात की जाए।
0: ओके मैम, सेकंड क्वेश्चन मैम है कि शादी के बाद कितने समय तक नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी ना होने पर कपल को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए?
1: अभी जैसे मैंने बात करी आपसे कि एक साल आप अपना वेट कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़े से इस बारे में हमें थोड़े आधुनिक संदर्भ में भी बात करनी चाहिए
0: जी मैम,
1: क्योंकि आजकल मैरिजेस लेट हो रही हैं।
0: यस मैम,
1: ये वो समय नहीं है जब आप 20 साल के या 22 साल के हुआ करते थे और आपकी शादी हो गई होती थी
0: जी।
1: तो उस समय में आप इंतजार ज्यादा भी कर सकते थे कि स्त्री की साइकिल थोड़ी रेगुलर हो जाए, उसकी भी उतनी मेच्योरिटी नहीं होती थी। लेकिन अब आजकल जैसे कि अब 35 के आसपास लोग प्लान करते हैं शादियां और बच्चे, तो मेरे ख्याल से अगर आपको 6-8 महीने भी हो गए हैं और आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कत आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि एक जांच बेसिक सी अपने डॉक्टर से मिलकर करा लें, कुछ जानकारी हासिल करें अपने स्वास्थ्य के बारे में भी, और उसके बाद फिर उस लिहाज से आगे बढ़ें कि दिक्कत कहाँ पे है। ज्यादा बहुत ज्यादा वेट ना करें अगर आपकी उम्र जो है वो 30-32 से ऊपर जा रही है।
0: ओके मैम,
1: खासकर महिला के लिए,
0: ओनली महिलाओं के लिए ना,
1: ज्यादातर महिलाओं के लिए 32 के ऊपर जो है आपकी फर्टिलिटी का थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो जाता है और 35 के बाद वो स्टील डाउनफॉल यानी कि बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। इसलिए अगर आप 32 से ट्राई करते हैं तो 33 या 34 की उम्र तक आपको एटलीस्ट एक प्रेगनेंसी हासिल हो जाती है।
0: ओके मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन है मैम कि आज की बदलती लाइफ स्टाइल, दी रात तक जागना, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी और लगातार स्क्रीन टाइम इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण बन रही है।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण बन रही है, लाइफ स्टाइल आपका बहुत बड़ा कारण है। इसमें से प्रमुख जो बातें हैं वो आ रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, इंसुलिन के प्रभाव से बॉडी जो है रेजिस्टेंट हो गई है, तो इस वजह से इंसुलिन की स्पाइक्स होती रहती है बॉडी में और आपका जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया है। तो मोटापा बढ़ रहा है, आप देख ही रहे हैं, ज्यादा वजन के लोग अब ज्यादा आपको कॉमनली दिखाई दे रहे हैं। रात में लोग सो नहीं रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है,
0: yes, ma'am,
1: और ऑफ शोर क्लाइंट्स हैं तो उनका उनका टाइमिंग को मैच करने के लिए आप 2 बजे से लेकर के रात में और सुबह 6 बजे तक काम कर रहे हैं और दोपहर में सो रहे हैं, तो ये सारी आपकी लाइफस्टाइल को खराब कर रही है सब चीजें। अधिकतर क्या है कि आप बाहर का खाना ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है खाना बना पाने का, हेल्दी फूड की हैबिट्स आपकी चेंज हो चुकी हैं, आपका डिनर टाइम चेंज हो चुका है, पहले जो 8 बजे डिनर हो जाता था वो 12 बजे 1 बजे डिनर हो रहा है, ब्रेकफास्ट जो सुबह 6-8 बजे तक हो जाता था वो 12-1 बजे हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आपके फर्टिलिटी को और आपके पूरे शारीरिक मेटाबॉलिज्म को सभी चीजों को इफेक्ट कर रही हैं। तो इसी वजह से आप देखिए इनफर्टिलिटी तो एक जगह, बाकी और चीजें भी आपकी डिस्टर्ब होंगी, जैसे आपके ब्लड प्रेशर के केसेस बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर के, और ब्लड शुगर के हाई होना, इस तरह के केसेस बढ़ना, या हार्ट संबंधित दिक्कतें बढ़ना. आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स क्रैश कर रहे हैं सडन हार्ट अटैक से. तो ये सब जो चीजें हैं ये सारे लाइफस्टाइल डिपेंडेंट है काफी हद तक. तो ये जो गड़बड़ाया हुआ लाइफस्टाइल है, इसको बहुत, सिर्फ फर्टिलिटी नहीं, आपकी बहुत जीवनचर्या जो है, आपकी काफी और सारी समस्याओं के लिए ये कारक है.
0: यस मैम, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हम जैसे युवाओं में, क्योंकि सारी रूटीन हमारा चेंज हो गया है. जैसे आपने कहा कि लेट नाइट खाना खाना, जो जहाँ पर हम 8 बजे खाना खाते थे अब वहाँ पर 12-1 बजे हम डिनर कर रहे हैं. तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं.
1: जी जी बिल्कुल. तो
0: हाँ जी, तो उनको मेंटेन करने की आवश्यकता है.
1: हाँ, उनको दुरुस्त करने का काम देखिए सभी लोगों को खुद ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इसको सही करने के लिए. कोई डॉक्टर आपको कितनी भी सलाह दे दे,
0: यस मैम,
1: जब तक आप अपने लाइफस्टाइल के लिए खुद आगे नहीं बढ़ते, उसको समझते नहीं कि हाँ ये चीजें हमें दिक्कत कर रही हैं, तो तब तक आपकी मदद शायद ही कोई डॉक्टर पूरी तरह से कर पाए.
0: यस मैम, पहले डॉक्टर तो हम खुद ही होते हैं. अगर हम खुद अपनी मेंटालिटी को ठीक नहीं करेंगे, अपनी डेली रूटीन को, लाइफ को चेंज नहीं करेंगे, तो डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं. जैसे आपने भी कहा मैम.
1: देखिए, हम लोग सलाह दे सकते हैं कि आपके लिए क्या उचित रहेगा,
0: यस
1: बट
0: मैम, आप
1: वो उचित को कैसे आप अपने जीवन में शामिल करेंगे ये आपको खुद सोचना होता है.
0: यस मैम, आई एग्री विद यू. मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब बहुत ज्यादा वजन या कम वजन होने से भी प्रेगनेंसी में परेशानियां हो सकती हैं.
1: हाँ देखिए, ये बिल्कुल परेशानी आ सकती है. कम, बहुत कम वजन होने की समस्याएं थोड़ी सी कम है, लेकिन ज्यादा वजन की संबंधित समस्याएं हम लोग ज्यादा देख रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया, जो सबसे प्रमुख कारक है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है. तो इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बढ़ते हैं पीसीओएस, जो कि उसका नाम अब चेंज हो चुका है, पीएमओएस कहा जा रहा है, कि मल्टीपल मेटाबॉलिक डिजीज है ये, जिसमें कि कार्डियक, लिपिड प्रोफाइल और सारे बहुत सारे पैरामीटर्स और भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं. तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा, इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है. तो उस वजन, बढ़ा हुआ वजन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. थोड़ा कम वजन है उसको आसानी से थोड़ा बढ़ाया जा सकता है अच्छे न्यूट्रिशन के द्वारा, अच्छी डाइट के द्वारा. अगर बहुत कम वजन है तो एक बार एनीमिया का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि खून की कमी बहुत ज्यादा ना हो. तो अगर अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा कम वजन का आजकल तो नहीं है सवाल, बढ़े हुए वजन से ज्यादा ही हम लोग चिंतित हैं.
0: मैम, जो कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी से पहले कौन कौन सी बेसिक हेल्थ चेकअप्स करवाना जरूरी है.
1: देखिए, इसमें दो चीजें हैं, स्त्री के लिए अलग है जांचें और पुरुष के लिए अलग है. तो स्त्री के लिए अगर वो थोड़ा ओबीज है और थोड़ा सा वजन ज्यादा है, एज ज्यादा है,
0: जी
1: तो
0: मैम,
1: उनके लिए जरूरी है कि एक बेसिक ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा करके ओवरीज और यूट्रस की परिस्थिति देखें कि कैसा है, अंदर का सारा माहौल कैसा है, एटमोसफियर कैसा है जहां बच्चे को कंसीव होना है और आगे बढ़ना है. दूसरे आते हैं कुछ हार्मोनल पैरामीटर्स, जिसमें से प्रमुख हैं जैसे थायराइड लेवल्स, आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स है ना,
0: जी मैम,
1: आपके पिछले 3 महीने के ब्लड शुगर जिसको हम HbA1c कहते हैं, उनका एक एवरेज पैरामीटर कितना रहा है. इसके अलावा सेकेंड डे ऑफ साइकिल के कुछ हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें FSH, LH और एक प्रमुख हार्मोन है जो आपकी फर्टिलिटी को डायरेक्ट इंडिकेट करता है, उसे हम कहते हैं AMH,
0: ओके मैम,
1: जो कि आपको एक डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि आपकी फर्टिलिटी का स्तर कितना है. तो
0: जी मैम,
1: ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कराए जा सकते हैं. इसके अलावा नलों की जांच, यानी कि ट्यूब्स आपके पेटेंट हैं या नहीं, वो भी. और इसके अलावा आती है ओव्यूलेशन स्टडीज, यानी कि आपका अंडोत्सर्ग जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं वो टाइमली हो रहा है कि नहीं. तो ओव्यूलेशन स्टडी अल्ट्रासाउंड के द्वारा की जाती है, बहुत ही सिंपल चीज है ये. और आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको डेज बताएंगे किन किन डेज में आपका ओव्यूलेशन हो रहा है. और जहां तक पुरुषों का संबंध है, पुरुषों के लिए बेसिक सीमेन एनालिसिस, यानी कि उनके स्पर्म काउंट्स, जो कि आइडियल टाइम रहता है 3 से लेकर के 5 या 6 दिन का गैप रहे अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में, और उसके बाद में वो स्पर्म काउंट कराया जाए और देखा जाए कि उसमें कोई कोई पैरामीटर्स ऐसे तो नहीं है कि जो डिस्टर्ब चल रहे हैं. जैसे मोटिलिटी, मोटिलिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है. और स्पर्म मोर्फोलॉजी, मतलब स्पर्म काउंट तो सही है, लेकिन उसमें से अच्छे दिखने वाले जो अच्छे स्पर्म्स हैं जो कि आपको वाकई में फर्टाइल एक्टिविटी दे सकते हैं, वो बहुत कम है। तो ये सारे पैरामीटर्स चेक होने चाहिए, पुरुषों में कम से कम ये जरूर चेक होना चाहिए।
0: मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या IVF सिर्फ ज्यादा उम्र वाली महिलाओं के लिए किया जाता है या कम उम्र में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है?
1: ये डिपेंड करता है कि इनफर्टिलिटी के कारक क्या है। अगर ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत सीवियर है ना, जैसे ट्यूब्स हैं आपके कम सोने में, कम उम्र में ही अगर आपके खराब हैं और स्पर्म्स आपके बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, या कि बहुत कम है या बहुत ही मिनिमम है, तब ऐसे केसेस में यंग एज में भी आपको IVF के लिए ही सीधे जाना चाहिए बजाय समय को बर्बाद किए हुए। और ज्यादा उम्र की लेडीज में आते हैं ओव्यूलेशन संबंधित प्रॉब्लम्स, यानी कि ओव्यूलेशन हो तो रहा है लेकिन उसमें से एम्ब्रियो जनरेट नहीं हो रहा, यानी कि वो उतनी क्वालिटी ऑफ एग्स अच्छी नहीं है, तब ऐसे केसेस में आपको IVF के लिए जाना पड़ सकता है।
0: ओके मैम,
1: वो
0: मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा चलने फिरने से या रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करने से प्रेगनेंसी ठहरने में परेशानी होती
1: नहीं, ये तो भ्रम है।
0: है? ओके
1: जितना अच्छा आप चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं,
0: हाँ जी
1: उतना ही
0: मैम,
1: आपका मेटाबॉलिक हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, आपके हॉर्मोन्स अच्छी तरह से प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि देखिए, इंसान बैठे रहने के लिए पैदा नहीं हुआ था,
0: यस मैम
1: इंसान एक चलायमान व्यक्ति था।
0: जी
1: अब उसने खुद को, अपने को कंफर्ट देने के लिए उसने पैदल चलना छोड़ दिया और एयर कंडीशन कमरों में रहना शुरू कर दिया, कर्टन से अपने कमरों की दीवारें ढक ली ताकि धूप ना लग जाए, तो वो विटामिन डी की कमी आ रही है,
0: यस मैम
1: हड्डियां और जोड़ कमजोर हो रहे हैं, है ना। नीचे बैठने की एक्टिविटी जो स्क्वैटिंग पोजीशन थी वो छोड़ दी, वो कमर में दर्द, जाहिर सी बात है वो कमर में दर्द शुरू हो गया, वेस्टर्न टॉयलेट से उपयोग होने लगे, ज्यादातर कुर्सियों पर बैठ के काम होने लगा, तो नेचुरली थोड़ा पेट आगे निकलने लगा,
0: यस
1: यानी कि
0: मैम
1: विसरल फैट,
0: हाँ जी
1: है ना, जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, है
0: यस
1: ना। तो जितना आप चलेंगे फिरेंगे उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और ये कहा जाता है कि 10,000 स्टेप्स अगर प्रतिदिन चले जाएं तो एक बेसिक हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर भी, शुगर भी, सभी चीजें इससे कंट्रोल की जा सकती हैं।
0: एवरीडे 10,000,
1: दिस शुड बी योर गोल। आप
0: या
1: नहीं कर पाए, गोल के करीब पहुंचने की कोशिश तो करें,
0: यस मैम
1: 10,000
0: कोश
1: नहीं कर पाएंगे, 5,000 कर पाएंगे, दो
0: या
1: हजार कर पाएंगे, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होगी,
0: जब शुरुआत करेंगे तो 10,000 तक भी पहुंच जाएंगे।
1: पहुंचेंगे। अपने को मोटिवेट करिए, थोड़ा बहुत चलने की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि चल सके जितना अधिक से अधिक संभव हो, कुछ नहीं तो फोन पे बात करते हुए भी आप चल सकते हैं, वो भी स्टेप्स काउंट होते हैं।
0: ओके थैंक यू सो मच मैम, एंड अभी आपसे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे कंटिन्यू
1: जी
0: कनेक्ट
1: जी
0: करते हैं
1: हाँ
0: मैम।
1: बिल्कुल
0: थैंक यू
1: बिल्कुल
0: सो
1: बिल्कुल
0: मच। तो चलिए मैम से अभी फिर से कनेक्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है, एंड लौट कर आते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है मैम

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। फोन लाइन के जरिए हम उनसे कनेक्ट करने वाले हैं, मैम से फिर से बात करने वाले हैं, डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव जी से। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। हेलो मैम, वंस अगेन वेलकम बैक।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम मैम। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आज के मॉर्निंग। अगर किसी महिला का एक बार मिसकैरेज हो जाए तो क्या इसका मतलब यह है कि आगे प्रेगनेंसी में भी परेशानी हो सकती है?
1: नहीं, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। मिसकैरेजेस जो बहुत अर्ली हो जाते हैं
0: जी,
1: तो वो उनमें अधिकतर जो कारक होते हैं वो क्रोमोसोमल होते हैं, डीएनए।
0: ओके मैम,
1: यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ उसके डीएनए में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे कि प्रकृति यानी कि नेचर उसको आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसी परिस्थिति में या तो भ्रूण पूरी तरह बनता ही नहीं है
0: जी,
1: या फिर उसमें कार्डियक एक्टिविटी यानी कि शुरुआती जो धड़कन आती है वो नहीं आती और फिर अबॉर्शन हो जाता है। अगर अबॉर्शन जो है महिला की प्रेगनेंसी में 3 महीने से ऊपर की अवस्था में हुआ है
0: जी,
1: तो फिर उसके कारण थोड़े गंभीर भी हो सकते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कराए जाते हैं। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर आप एक बार आपको अबॉर्शन हो गया या 2 बार भी या 3 बार भी हो गया तो आगे आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। देखिए, एक बात तो इससे साफ हो गई कि आप फर्टाइल हैं यानी कि प्रेगनेंसी हो सकती है।
0: यस मैम।
1: अब वो दिक्कत कहाँ पे आ रही है ये एक जांच का विषय है। उसकी जांच करने के बाद में उस चीज को करेक्ट किया जाता है और ज्यादातर महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं।
0: ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम अक्सर महिलाओं की उम्र और फर्टिलिटी की बात करते हैं, लेकिन क्या उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों की फर्टिलिटी भी प्रभावित होती है?
1: हाँ, बिल्कुल हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर उनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी बढ़े हैं, जैसे कि उनमें भी मोटापा बढ़ा है
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा है और ब्लड शुगर्स उनके वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, थायराइड इश्यूज चल रहे हैं, एक हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है जो कि पुरुषों की फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है, या फिर उनकी नींद पूरी नहीं है, या फिर उनको एडिक्शन है जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग, तो ये सारी की सारी चीजें ही उनकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकती हैं अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ इन चीजों पे ध्यान ना दिया जाए।
0: ओके मैम, और जो कपल लंबे समय से इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं वो इस दौरान होने वाले मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस से किस तरह से डील करें मैम?
1: देखिए, सबसे पहले तो इसमें काउंसलर्स का भी एक रोल होता है
0: जी मैम,
1: तो आप काउंसलिंग के लिए जाएं। अधिकतर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो हैं अच्छे काउंसलर्स भी होते हैं या फिर वो काउंसलर्स को अपने साथ रखते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। अच्छी काउंसलिंग करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज जरूर करें, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, और हो सके तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि बार बार उनको इस चीज के लिए ताना मारें या फिर उनसे सवाल पूछें कि क्यों नहीं आप प्रेग्नेंट हो पा रहे हो। दूर रहिए ऐसे लोगों से और अच्छे मित्र बनाइए, अच्छी संगति में अच्छे उसमें रहिए, मेडिटेशन जरूर करिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और अगर किसी कारण से इसको लेकर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो किसी साइकियाट्रिस्ट से भी बात करने में इसमें कोई बुराई नहीं है। हम सब लोग आपको यही कहना चाहेंगे कि भाई सारे डॉक्टर्स मिलकर के यही कोशिश करते हैं कि हमारी पेशेंट जो है हर तरह से मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करें।
0: यस मैम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, फर्टिलिटी के लिए एक ऐसी आदत जो आपको लगातार है सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, फर्टिलिटी के लिए एक ऐसी आदत जो आपको लगातार लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक है?
1: तो नंबर वन पे तो मैं कहूंगी कि स्मोकिंग। अब आजकल स्मोकिंग जो है ना वो मेल फीमेल दोनों में ही एक कॉमन, वो एक कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा सा बनता जा रहा है
0: जी मैम।
1: तो स्मोकिंग में कहूंगी कि एडिक्शन कहना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही आ जाते हैं
0: जी,
1: तो ये एक ऐसी आदत है जिससे आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है।
0: ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा है आपसे कि और मेरा क्वेश्चन आखिरी भी है मैम कि महिलाओं को अपनी रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ के लिए कौन सी एक बात कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए?
1: रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कौन सी बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो है देखिए, अगर आपको कॉन्टिन्यूअस कोई डिस्चार्ज आता रहता है, कोई इन्फेक्शन सा फील होता रहता है, कोई इचिंग और सूजन वगैरह रहती है यौन अंगों में, और या फिर आपके पीरियड्स बहुत पेनफुल या बहुत इरेगुलर है, और इसके अलावा अगर आपको बिना किसी कारण के पीरियड्स मिस हो जाता है, जिसमें कि आपको पीरियड्स आते ही नहीं लंबे समय पर, ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए, और इनमें से अगर कोई भी चीज आपकी है तो आप उसको जरूर एड्रेस करिए, उसको चाहे आपकी शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, है ना, इररेस्पेक्टिव आप जो है अगर ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं तो आप अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आप इन चीजों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए।
0: यस मैम, मैंने देखा है मैम बहुत सारी गर्ल्स हैं जो यू नो हम जैसी यंग गर्ल हैं, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको, मतलब काफ़ी गर्ल्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनके पीरियड्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं, 2 मंथ 3 मंथ नहीं आते हैं।
1: हाँ, तो ये नॉर्मल स्थिति नहीं कही जा सकती, लेकिन आपको इसके लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, यानी खुद पहला कदम उठाना पड़ेगा। एक तो डॉक्टर के यहाँ जाने से या गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ जाने से यंग लड़कियों के साथ में पता नहीं क्या एक मानसिक दबाव जुड़ा हुआ है, एक मानसिक हिचक जुड़ी हुई है, या स्टिग्मा सोशल जुड़ा हुआ है कि अरे वो क्या करेगी जाकर के गायनेकोलॉजिस्ट से, अभी तो उसी कोई उम्र ही नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको एक्सपर्ट एडवाइस किसी एक लंबे समय तक मिल ही नहीं पाती। तो अगर आप यंग हैं और आपके संग ये इश्यूज आ रहे हैं तो आपको अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए, हो सकता है यहीं पर समस्या का निदान हो जाए और आगे आपको किसी लंबे इलाज की जरूरत ही ना पड़े।
0: राइट मैम, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और क्या कहना चाहेंगी जो ऐसी विमेन्स हमें सुन रही हैं, जो गर्ल्स सुन रही हैं, जो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन करती हैं, घबराती हैं कि डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं, बहुत ज़्यादा सोचती भी हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी मैम उन विमेन्स को जो मतलब बहुत ज़्यादा सोचती हैं अपनी हेल्थ को लेकर? मुझे लगता है मैम, देखिए सेहत सबसे ज़रूरी है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे।
1: जी हाँ, पहला सुख निरोगी काया,
0: यस मैम,
1: वाक्य परम वाक्य है, और आप किसी भी चीज को जिंदगी में एंजॉय नहीं कर सकते अगर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देती। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करें, लड़की अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे फोकस करें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखें, और जो मैंने अभी बताई है प्रॉब्लम्स, अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहे हैं और लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, या अचानक से आना बंद हो गए हैं, या अचानक से बहुत ज्यादा भी हो रहे हैं, मतलब दोनों ही चीजें हैं
0: जी मैम,
1: तो आपको डॉक्टर के पास जाने में एक मेंटल ब्लॉकेज वो आपको हटाना पड़ेगा। और प्लीज आजकल जो चलन चल रहा है ना कि आपने गूगल सर्च कर लिया, इंटरनेट पे देख के कोई इलाज कर लिया, दवा खा ली, और आयुर्वेदिक कोई सी भी आपने वहां देखा गूगल पे और दवा आपको समझ में आ गई कि ये खा लेनी चाहिए, तो ये सब मत करिए, ये सब आपकी सेहत को और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं,
0: हार्मफुल हो सकते
1: हैं। आप एक्सपर्ट से एडवाइस करें।
0: यस मैम,
1: चाहे अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है तो आप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के पास जाएं, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लेना है तो होम्योपैथिक एक्सपर्ट के पास जाएं, मॉडर्न मेडिसिन का आपको ट्रीटमेंट लेना है तो मॉडर्न मेडिसिन के एक्सपर्ट के पास जाएं, लेकिन प्लीज इंटरनेट देख के स्वयं का इलाज ना करें, आप ज्यादा अपने आप को दिक्कत में ला सकते हैं, फायदा होने के बजाय हानि ज्यादा हो सकती है।
0: यस मैम, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चंस का आंसर दिया है मैम, और बहुत सारे हमारे समय श्रोता सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस सुन रही है इस वक्त?
1: तो महिलाओं के लिए तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने साइकिल्स पे नजर रखिए, अगर आपको लग रहा है कहीं से कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई चीज ऐसी है जो आपको, लड़कियां भी बच्चियां भी आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एग्जाम्स की तैयारी है और कॉम्पिटिशन की तैयारी है, तो कई बार स्ट्रेस लेवल्स उनके बहुत हाई होते हैं, लेकिन आप एक काउंसलिंग सेशन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से लीजिए, अपने आपका एक बेसिक चेकअप कराइए कि हाँ भाई सब कुछ अंदर सही चल रहा है और अभी मुझे किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं, या फिर अगर कोई बीमारी है

0: तो वो अभी अपनी इन्फेंसी में यानी बहुत प्रारंभिक अवस्था में होगी, तो उसका ट्रीटमेंट ज्यादा आसान होता है। कोई भी चीज बहुत एडवांस हो जाती है जब आप उसका ट्रीटमेंट लेने पहुंचते हैं, नेचुरली उसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इग्नोर मत करिए, 2-3 महीने में अगर चीजें सेटल नहीं होती लगती आपको, 2-3 साइकिल में अगर आपको पीरियड संबंधित दिक्कतें सेटल्ड होती हुई नहीं लग रही है, तो आप प्लीज जाकर के जिस भी डॉक्टर पे आपको भरोसा हो, आपको लगता हो आपको सही तरह से एडवाइस कर सकते हैं, आप जाके उनसे मिलिए, उनके कहे के अनुसार, हैव फेथ इन योर डॉक्टर, उनके कहे के अनुसार आप अपने बेसिक से कुछ चेकअप्स कराइए, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होंगे, कुछ बेसिक अल्ट्रासाउंड वगैरह होंगे, ज्यादातर इससे ज्यादा किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ मेडिकेशन हल्की फुल्की से दी जाती है जो आपके हॉर्मोन्स को दुरुस्त करती है। ध्यान रखिए इस समय पीरियड्स की रेगुलरिटी बहुत कॉमन है क्योंकि थायराइड संबंधित इश्यूज बहुत ज्यादा कॉमनली होने लगे, तो एक बेसिक थायराइड का वर्कअप करा लेना अपने आप में समझदारी का काम है।
1: ओके मैम, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन और है मैम, और आखिरी भी है, उन सभी कपल्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो लंबे समय से प्रेगनेंसी का इंतजार कर रहे हैं और इस सफर में उम्मीद और हिम्मत बनाए हुए हैं?
0: देखिए, अगर कुछ समय कुछ साइकिल्स के ट्रीटमेंट के बाद में, अगर आपके मान लीजिए कई वर्ष के ट्रीटमेंट के बाद में भी अगर कोई नतीजा नहीं निकला है अभी तक, तो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि IVF के ट्रीटमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए, जो आपको एक आजकल के युग में बेहतर रिजल्ट देने की संभावनाएं रखता है, और किसी अच्छे IVF सेंटर पे जाकर के अपना टेस्ट ट्यूब भी आप एक प्लान कर सकते हैं, उसको प्लान कर लीजिए। और अगर वहां पे भी कोई आपको फेलियर्स मिलते हैं, तो एक बच्चा हासिल करने के लिए मैं तो कहूंगी कि आज के समय में एडॉप्शन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको कंसिडर करना चाहिए
1: जी मैम
0: आप। और इस देश में बच्चों को एडॉप्टिव पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, एडॉप्शन की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए, बहुत से और कपल्स को आगे आना चाहिए बच्चों को गोद लेने के लिए। ध्यान रखिए, जो जिस बच्चे को आप प्यार देंगे वो बच्चा आपका अपना हो जाएगा, और जो बच्चा आपको प्यार देगा वो ऑटोमेटिकली आपको अपना होगा। तो एडॉप्शन भी एक अच्छी ऑप्शन है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं अगर आपके फाइनेंसेस इतना परमिट नहीं करते कि आप बार बार कई साइकिल IVF कराएं, या कई सारे साइकिल IVF के आपके फेल हो चुके हैं। तो यही मेरी सलाह है कि आप बहुत ज्यादा इंतजार ना करें, बच्चे का सुख प्राप्त करें।
1: थैंक यू सो मच मैम, आज की इस खूबसूरत बातचीत में आपने सिर्फ हमारे सवालों के जवाब ही नहीं दिए बल्कि कई परिवारों के मन में मौजूद चिंताओं को दूर करते हुए उन्हें एक नई उम्मीद भी दी है। आपका अनुभव, आपकी सहज बातें और सबसे बढ़कर लोगों को जागरूक करने का आपका अंदाज वाकई काबिले तारीफ था। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
0: थैंक यू सो मच, आपने कंसिडर किया कि मैं इस लायक हूं कि आपके लिए कुछ कह सकूं आपके चैनल पे, कुछ आप लोगों के लिए बातें कर सकूं आपके साथ, तो धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस चैनल का पार्ट बनके। आइंदा भी मैं चाहूंगी कि हम लोग इस तरह की बातें करते रहें और कोशिश करें कि का जनता का कुछ लाभ इस अगर बातचीत से हो सके। को
1: श्योर मैम, एंड नाइस टॉकिंग टू यू। आपको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, आपके हेयर भी बहुत ही खूबसूरत हैं।
0: थैंक यू सो मच, आप सभी बहनों को बीज की शुभकामनाएं और हमारे 15 अगस्त की शुभकामनाएं। सब लोग खुशहाल रहे, सारे देशवासी इसी तरह से खुशियां मनाते रहें और स्वतंत्रता का अनुभव भी करें
1: जी,
0: सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का ही नहीं स्वतंत्रता का भी
1: अनुभव करें। एग्जैक्टली मैम, एकता में ही शक्ति है और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए प्रेम से जी। थैंक यू सो मच मैम, नाइस टॉकिंग टू यू, टेक केयर।
0: थैंक यू,
1: मोस्ट वेलकम मैम। तो चलिए एवरीवन, मैम से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मेरे को ये अवसर मिला। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव जी का, एंड मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, आपको भी ये बातचीत आज की जो इन्फॉर्मेशन मैम ने दी है, जो जानकारियाँ दी हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिला होगा और ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। तो बस मैं अभी लौट कर आती हूँ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पार, आप कहीं मजा आएगा, यूं ही मुस्कुराइए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपनों के साथ रहिए और हाँ, अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
3: कोई मिल गया,
4: कोई मिल गया।
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
9: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
10: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और आरजे खुशी है यहाँ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. दोस्तों, अभी आपने ये शानदार सा ट्रैक सुना शान साथ में कविता कृष्ण मूर्ति जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है. और अब इस लड़की के भी जाने का टाइम हो गया है, लेकिन दोस्तों जाने से पहले याद रखिएगा कि दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो अपने लिए और अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए. चेहरे पर मुस्कान रखिए, दिल में उम्मीद रखिए और ज़िंदगी को हर दिन थोड़ा और खूबसूरत बनाइए. इसी प्यारी बातों के साथ मैं आपसे जाने की अनुमति तो लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आपके जो मैसेज आए हैं उनको भी तो शामिल कर लेती हूँ. उनको पढ़े बिना मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ. एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है आरजे खुशी जी. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. वी के सागर जी हमें मैसेज पहुँचाते हैं मुरादाबाद से. एंड सर कहते हैं कि कल तीज फेस्टिवल का आपका फंक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर, हमने इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ और हमारी नियर बाय रामला ग्राउंड में बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ था. बहुत ज़्यादा क्राउड था तो अच्छा था कल का दिन. लेकिन मेरे लिए ना, जब मैं आपसे बातचीत करती हूँ तो ये दिन और स्पेशल हो जाता है. टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे. आप सबसे बातचीत करके हाँ लगता है कि कुछ तो स्पेशल है, क्योंकि आप सब बहुत ही प्यारे हैं. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का. नेक्स्ट इनके साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, शहीद इशारी कली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी. गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर. कहते हैं कि आज का शो आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है. अभी डॉक्टर मैम से आपकी बातचीत सुन रहे हैं. बहुत ही अच्छी जानकारियाँ डॉक्टर मैम के द्वारा मिल रही हैं. उम्मीद है कि सभी सुनने वालों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा. श्योर सर. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राधे राधे खुशी जी, अलका वर्मा जी का बुद्धि विहार से. आपको भी राधे राधे मैम. थैंक यू सो मच, आपने आज की सुबह हमारे साथ जुड़े पार्टिसिपेट किया. अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है, पर आपको मिलने वाले हैं सी यू सून. तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी फैमिली का अपना विशेष ध्यान रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर.
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: मत करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, इसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श और फिर शुरुआत महीने में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हम दोनों सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। नमस्कार भैया।
1: नमस्कार आरजी खुशी, आप दोनों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज हम भी आ जाते हैं जब आप इतनी प्यार से बुला रही हैं, क्योंकि हम अब आशाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करके ये सब मिलाकर नवजात बच्चे की जान बचा सकते हैं।
0: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
2: माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है। ये बच्चे को निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है।
3: बिल्कुल ठीक, माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए चाहे कोई कुछ भी कहे। क्यों अन्नू जी?
2: बिल्कुल, जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है।
4: भाई साहब, 6 महीने का होने से पहले माँ के दूध के अलावा बाहर का कुछ भी खाएगा तो बहादुर नहीं मरियल सिंह ही बनेगा।
3: जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए।
5: अब देखो, मुन्नी 7वें महीने में आ गई है, अब मुन्नी को खाना दो, ना रोए तब भी। और हाँ, अब मुन्नी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाओ।
6: जी हाँ, 7वें महीने से बच्चे को मुलायम मसले हुए अनाज, दालें, सब्जियाँ और फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू कर दें, दिन में 3 से 4 बार, और उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखें।
3: और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा, 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा, 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान, और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया सिंह दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकते हैं। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन टीके लगते हैं, क्या ये भी उतना ही जरूरी है?
1: बिल्कुल जरूरी है जी खुशी, जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
7: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन

0: आस पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मकता विकास की नींव है।
1: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले बोल नहीं सकता लेकिन वह महसूस करता है। माँ की छाती से लगाना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पिलाना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसके लिए इसे गोल्डन आर कहते हैं।
1: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आर इतना जरूरी क्यों है?
0: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को माँ की छाती से लगाएं और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह बच्चों को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, यह बच्चे की पहली सुरक्षा है।
1: तो साफ संदेश, पहला पीला दूध फेंकना नहीं, बच्चों को देना है।
2: और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने की कोशिश करानी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है, बच्चा भी सीख रहा होता है। नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
0: स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है, माँ का दूध नहीं आ रहा। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसीलिए माँ दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
1: बहुत सी घरों में जन्म के बाद बच्चों को शहद, गुटी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन देवी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
2: नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी या बाहर की कोई चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
1: गर्मी में पानी भी नहीं?
0: पहले 6 महीनों तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर या किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह ना दें। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी होते हैं, इसीलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
1: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
2: हाँ, रोना भूख नहीं होता, बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पिलाना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
1: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है?
2: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना है, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
0: पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है, बच्चों की देखभाल शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
1: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी है?
0: त्वचा से त्वचा का संपर्क का मतलब होता है कि बच्चों को माँ या देखभाल करता की छाती से सीधा लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कंगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। खासकर कम वजन वाले समय से पहले बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभकारी हो सकता है।
2: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए यह बहुत अच्छा है।
1: क्या पिता भी ऐसा कर सकते हैं?
0: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा का संपर्क दे सकते हैं, खास करके जब माँ को आराम चाहिए।

0: तो वह थकी हुई है, लेकिन इसका तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुला रहे, बच्चा दबे नहीं, वह आराम से सांस ले रहा हो, यह ध्यान रखना भी जरूरी है।
1: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू होती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, यह भी पिता की जिम्मेदारी है।
2: साथियों, अब हम कुछ आम गलत फहमियों को दूर करते हैं। पहली गलत फहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
1: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
2: दूसरी गलत फहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
0: सच्चाई ये है आरजे खुशी, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग से सलाह ना दे।
2: तीसरी गलत फहमी है, माँ का दूध कम होता है, तुरंत ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं।
1: सच्चाई, पहले स्तनपान सहायता ले, माँ को दोष ना दे, स्वास्थ्य कर्मी से मदद ले।
2: चौथी गलत फहमी, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
1: सच्चाई, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सब की भूमिका है।
2: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
0: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, बहुत सुस्त हो, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरे जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चों पर घरेलू प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
2: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
0: आरजी खुशी, ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि बच्चों का दिमाग, शरीर और भविष्य की शुरुआत देखभाल से बनती है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग, ये सब कुछ भी शामिल है।
1: हर घर 5 संकल्प ले सकते हैं। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध देंगे, माँ को अकेले नहीं छोड़ेंगे।
0: और एक छठा संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद आने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएं।
1: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चों को जीवन की सुरक्षित शुरुआत होती हैं।
2: बहुत स्पष्ट बात है, बच्चों के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चों की मजबूत शुरुआत होती है।
0: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में कोई दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें और यह सीखने की प्रक्रिया है।
1: माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चों को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
2: साथियों, आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करवाने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चों को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
1: और छठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाए, इंतजार ना करे।
2: इसी संदेश साथ आज का सेहत सही लाभ कई यही समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चों की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ गई।
1: पहला दूध, पहला प्यार, पहला घंटा जीवन का आधार, माँ का साथ, पिता का हाथ, बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत, सेहत सही लाभ गई।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: करो।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती। गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए? अब जांच करानी चाहिए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
4: देखिए आरजी रीना, सरल भाषा में कहते हैं, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
3: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
4: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
3: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए होगा।
3: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
4: बिल्कुल आर्जरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और अनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
3: दृष्टि चक्र वह कैसे?
4: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और अनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
3: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज मां के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सेहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
4: देखिए आरजी रीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
3: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं,
5: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहां खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
3: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
5: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
3: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
5: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
3: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच
5: कब कराना चाहिए।
4: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
5: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
4: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
5: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
4: कई बातें देखी जाती हैं RJ, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
5: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
4: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
5: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
4: बिल्कुल सही कहा आपने।
5: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
4: आर्जेरीना IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
5: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
4: बिल्कुल,
5: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
4: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
5: बिल्कुल सही, केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
3: किस तरह का भोजन करें?
5: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खासतौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
3: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
5: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
3: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
4: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
3: अच्छा?
4: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
3: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
4: बिल्कुल सही आर्जेरीना, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है। नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
3: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
4: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
5: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
3: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
5: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA, MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
4: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदे होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
3: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है? क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है? याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा IV और FCM की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।
0: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ कहीं, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक बार आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
6: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार विमेन्स स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
6: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं, उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
0: ठीक है मैम।
6: जिसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
0: ऑलराइट, ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
6: बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
0: ओके, ठीक है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
6: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
0: ठीक है।
6: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
0: ठीक है।
6: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
0: ज्यादा है।
6: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है।
0: ओके।
6: इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
0: ऑलराइट। अच्छा मैम, क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं, या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
6: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल मैम।
6: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
0: हाँ जी, ये दालें भी, आई थिंक
6: दालें, दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
6: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबिन भी होता है।
0: राइट।
6: हीम प्रोटीन होता है।
0: राइट।
6: प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए। उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
0: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
6: बिल्कुल करना
0: सारे
6: चाहिए। और जितने सेब हैं,
0: हाँ जी, जो फ्रूट्स हैं,
6: ओके, फ्रूट्स हैं,
0: मौसमी फल को ज्यादा शामिल करें।
6: बिल्कुल सही,
0: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर एनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
6: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो।
0: ओके,
6: ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
0: ओके।
6: और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है।
0: कम हो जाता।
6: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
0: ओह माय गॉड,
6: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
0: बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते
6: हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मात्र की मोर्टैलिटी होती है, मरती हैं जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
0: एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें।
6: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हैं उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिर आप जब डॉक्टर से मिलें तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं किसी डॉक्टर को, जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
0: That's very nice, ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you, ma'am. हमारे साथ आने के लिए गाइज आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
7: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

मेरा गांव मेरी धरोहर पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

0: खबरों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, अपना टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त है और एक और दोस्त है, तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नया जब हम आप लोग एफएम पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
1: कुछ नया है
0: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
1: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
0: जी
1: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
0: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाय करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
0: जी।
2: मैं कुमकुम आप सबकी प्यारी दोस्त फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
0: जिसका नाम है सोच बदलो।
2: जिसका नाम है सोच बदलो।
0: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
3: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
0: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
1: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
0: करेक्ट?
1: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाएं। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं, तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
0: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
1: चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
0: एडवाइस
1: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारी हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसे लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना? बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए। मुद्दे की बात यह है, क्यों कुमकुम, कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
2: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
0: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
3: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोग की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
0: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आपके मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें इन चालों के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपने फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा, पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है, कुछ

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलो में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ।

0: आपने और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
1: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है। लेकिन जब आप परेशान होंगे, आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा,
0: करेक्ट,
1: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
1: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना। बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी इस
1: मैं तो में? इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
1: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस कर,
1: मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
1: और मैं सही जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट, करेक्ट। मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी। और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम? जरूरी है ना?
2: मैं एक बात कहती हूँ,
0: सुनो प्लीज।
2: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं। जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट, करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
2: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
1: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, हाँ, चार लोग
2: अच्छे भी होते हैं,
1: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
2: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं। तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा। जो डर गए लोगों की सोच से, उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव ही चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: जिद करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
1: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
0: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे, क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
0: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉइज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
0: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
1: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
0: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
1: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है। और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं, उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
0: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
1: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
0: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
1: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ANM बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है, और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में

0: वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथपुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जोड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है।

0: बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी उड़ीसा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 270,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुँचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
4: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
3: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
4: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
3: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद

इन चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। और देखिए, मैं अकेले नहीं आती हूं महिला मंच शो में, मेरे साथ आरजे खुशी भी आती है। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो इस महिला मंच शो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना भी कहना जरूरी होता है। अक्सर हम यही करते हैं ना कि हम दूसरे को खुशियों के लिए हमेशा जब भी वो कुछ काम बोलता है हम हाँ कर देते हैं। लेकिन देखिए, हाँ करना भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी ना आपको जब लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, वहाँ पर मुझे ना बोलना है, तो वहाँ पे ना बोलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो ज्यादा अच्छे आप बनोगे ना, तो उतने अच्छे तरीके से चक्की में पीसे भी जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा भी बनना जरूरी नहीं है। उनके साथ अच्छे रहिए जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आप जब भी बोलते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। उनके लिए तो भैया देखिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, उनके साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। और कभी कभी हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को दुखी कर बैठते हैं। किसी ने मदद मांगी, हमने हाँ कह दी। किसी ने अपना काम हमारे ऊपर डाल दिया, हमने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे। मन नहीं था फिर भी किसी की बात मान ली, थक गए थे फिर भी किसी के लिए समय निकाल लिया। और जब अपने लिए कुछ करने की बारी आई तो हम खुद से ही कह देते हैं अभी नहीं बाद में। लेकिन श्रोताओं, आज के इस महिला मंच शो में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, सो देखिए काम करना जरूरी है हर किसी के लिए। जब भी कोई काम बोले आप करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना खुद के लिए टाइम निकालिए और कभी कभी ना बोलना भी सीखिए। क्योंकि अक्सर लड़कियां महिलाएं होती हैं, वो ना नहीं बोलती है, हमेशा काम के लिए तैनात रहती है, जिसने बोला काम करो तो कर देती है। लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है।
1: साथियों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और क्या हर बार हाँ कहना हमें अच्छा इंसान बनाता है, या फिर कभी कभी अपने लिए ना कहना भी जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, हर हाँ रिश्ता नहीं बचाती और हर ना रिश्ता नहीं तोड़ती। कभी कभी एक छोटा सा ना आपको खुद से दोबारा जोड़ देता है। तो आज बात करेंगे दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देने की। बात करेंगे अपनी सीमाओं की, अपने सम्मान की और अपने लिए ना कहना सीखने की। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला मंच और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, हर किसी को खुश करने से पहले एक बार खुद से भी पूछेंगे, क्या खुशी, क्या तू खुश है? और एक बार आपका जो भी नाम है, आप खुद से पूछिएगा कि क्या आप खुद से खुश हैं? आखिर ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, ना सिर्फ भू अक्षर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे बोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है सामने वाला बुरा ना मान जाए, उसे लगेगा कि हम स्वार्थी हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा। और डर में हम अपनी इच्छा के खिलाफ बार बार हाँ कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरों की हर उम्मीद पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप भी थक सकते हैं, आपका भी मन नहीं हो सकता है, आपके पास भी समय कम हो सकता है, और ये सब बिल्कुल सामान्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एवरीवन, आप आखिरी बार कब सिर्फ इसलिए हाँ बोले थे क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला बुरा ना मान जाए? और अगर आप उस समय ना कह देते तो क्या होता? मुझे अपने संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896।
0: तो देखिए श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अच्छा इंसान बनने की गलत परिभाषा। हमारे मन में बचपन से ही एक बात बैठा दी जाती है, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात, अच्छी बेटी वही है जो सबके काम आए, अच्छी पत्नी वही है जो सबको खुश रखे, अच्छा दोस्त वही है जो हर समय उपलब्ध रहे। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप हर किसी के लिए मौजूद है लेकिन खुद के लिए कभी कोई मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे। अच्छा इंसान होना और खुद को भूल जाना दो अलग बात। और घर वाले तो अक्सर हमें सिखाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनको साथ दो जो आपके साथ जैसे आप किसी के लिए एक बात पर खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करूंगी, तो जो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, सामने वाला भी आपको वैसा रिप्लाई दे और आपके साथ वैसा ही रहे, तो बिल्कुल आप भी उनके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही व्यवहार करें जैसा सामने वाला करता है। और कभी कभी हर विमनिया को ना भी कर देना चाहिए। शाम होते ही सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी रहती है, भाई कुछ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कभी अपने पसंद के कुछ नहीं बनाती है। तो कभी कभी ना करके ये बोला करिए कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, बाहर एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी जिंदगी जीने का मौका मिले, बाहर घूमने का मौका मिले। और बाहर घूमने का ये सबसे आसान तरीका है कि शाम के खाने के लिए ना कर दो, आज खाना नहीं, आज बाहर खा के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। तो देखिए आपको भी टाइम मिलेगा और अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगी और बाहर के नजारे हैं, जो बाहर की देश दुनिया है, आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगी। क्योंकि चार दीवारी में रहना और भाई थोड़ी सी घुटन भी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए, ताजगी हवा लीजिए और अपने जीवन को एंजॉय करिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पे श्रोता एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ। एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के लिए है, तो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो। मेरे साथ आरजे खुशी भी है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ, ना स्वार्थ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अपने लिए ना कहना स्वार्थ, लेकिन नहीं। अगर कोई आपसे कहता है आज मेरे साथ बाहर चलो और आपका मन नहीं है, तो आप प्यार से कह सकते हैं आज मेरा मन थोड़ा आराम करने का है। हर किसी और दिल मिलते हैं, इसमें स्वार्थ कहाँ है। अगर कोई आपसे ऐसा काम करने को कहता है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है कि बाद में करूँगी या फिर कर दूंगा। क्योंकि देखिए, जब आपका मन ना हो ना कोई काम करने के लिए और आप उसको जबरदस्ती करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो काम आप बेटर कर ही नहीं पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपका जो काम है वो कर दूंगी, शायद आप और बेटर उस टाइम कर पाए। और जब मन नहीं होता किसी काम को करने के लिए, तो आपका वो सारा काम गलत ही होता जाता है। आप उसको खुद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो कहीं और रहता है। बॉडी थकान हो चुकी होती है तो वो आपसे आराम मांगती है, तो उसको आराम दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप उस काम को कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं खुशी से जानना चाहूंगी, कहाँ हो भैया तुम? बातें सुन रही है भैया, लड़के चुप चुप के। अरे बोलो भाई, तुम भी कुछ?
1: हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी, बहुत ही अच्छे से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती हूँ, पहले आपको सुन लेती हूँ। और दोस्तों, मैं भी आपसे कुछ एक छोटा सा संवाद शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको ना कहने के बाद अपराध बोध होता है? मतलब आपने किसी को मना तो कर दिया, लेकिन बाद में मन में बार बार चलता रहता है शायद मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। ये मेरे साथ होती ना, मैं
0: हाँ, मेरे साथ भी होता है।
1: मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों ना बोल दिया, मुझे हाँ बोलना
0: और
1: चाहिए।
0: वो मुझे लगता है कि वो पूरा दिन हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है।
1: हाँ।
0: सामने भी जब जाते हैं ना उसके पास, तो मैंने कहा यार क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी।
1: सेम सिचुएशन होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आज का हमारा महिला मंच बहुत खास है आपके लिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुना चाहती हूँ। कहानी है मीरा की। मीरा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। घर में सबकी मदद करना, दोस्तों के काम आना, ऑफिस में दोस्तों का काम कर देना, मीरा के लिए सब सामान्य था। उसकी एक आदत थी, वह किसी को ना ही नहीं कह पाती थी। ऑफिस में कोई कहता मीरा मेरा ये काम कर दो, वह कहती हाँ। दोस्त फोन पर कहते मीरा मेरे साथ बाजार चलोगी, मीरा बोलती हाँ चलूंगी। घर में कोई कहता आज ये काम तुम कर देना, मीरा कहती हाँ मैं कर दूंगी। धीरे धीरे मीरा थकने लगी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई घर लौट कर आई। उस दिन उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? मीरा ने कहा कुछ नहीं माँ। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा माँ मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। माँ कुछ देर चुप रही, उन्होंने बहुत प्यार से कहा बेटा दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में तुम खुद के लिए बुरी बन गई हो। मीरा चौंक गई। माँ ने कहा तुमने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन कभी खुद से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक साथी ने फिर अपना काम मीरा को देते हुए कहा मीरा ये भी काम कर देना मीरा प्लीज। मीरा कुछ सेकंड चुप। पहली बार उसने मुस्कुरा कर कहा माफ कीजिएगा आज मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस इतना ही कहा सामने वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं हुई, बड़ा रिश्ता नहीं टूटा, ऑफिस नहीं हुआ। मीरा को बस पहली बार महसूस हुआ अरे मैं मना कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मीरा ने हर बात पर ना कहना शुरू नहीं किया। जहाँ सच में जरूरत है वहाँ मदद करो, लेकिन जहाँ आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा हो वहाँ अपनी सीमा तय करो। और दोस्तों, मीरा की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आया जब उसने दूसरों को खुश करने से पहले खुद को भी इन

0: ने एंजॉय किया है, अपने तो अपने होते हैं, सच में अपने तो अपने ही होते हैं। फिलहाल इस महिला मंच में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जो बात है वो शुरू यानी कि जारी रखते हैं। रिश्तों में ना क्यों जरूरी है, अब एक बहुत जरूरी बात। कई लोग सोचते हैं कि ना कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता आपके एक सम्मानजनक ना होकर स्वीकार ना कर सकता, उस रिश्ते में कभी ना कभी संतुलन की जरूरत है। सच्चे रिश्ते में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए और सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करे। यही स्वस्थ रिश्ता होता है, क्योंकि जो आपकी बात समझे, जो आपका अहमियत करे, मुझे लगता है कि वो रिश्ता सबसे बेस्ट होता है। और रिश्ता वो नहीं कि जो आपने हाँ कहा वो टूट गया और उसने अगले ने सोचा कि यार इसका तो यही काम है, ये ना कर देती, इसे बोलना ही बेकार है, आज के बाद मैं इसे कुछ काम बोलूंगा ही नहीं, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। मुझे ये लगता है वहाँ पर आपको ना करना बहुत जरूरी। जो इंसान आपको समझता है, जिस रिश्ते में आपको समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, वो आपको समझेगा, वहाँ पर आपकी बातें अच्छे से सुनी भी जाएगी, तो वो रिश्ता हमारे लिए बेस्ट होता है। ना कि ना कहा और टूट गया, वो रिश्ता नहीं होता है। सो महिलाओं के लिए यानी कि खास बात क्या है, जो आजकल की हमारी प्यारी विमेन है उनके लिए खास बात क्या है, और आज की ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घर में सबकी जरूरत समझती हैं, सबके खाने का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, सास ससुर का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कहती हैं मेरे लिए क्या। याद रखिए, आप घर की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना समय है, आपके अपने सपने हैं, घर वालों की देखभाल कीजिए, लेकिन खुद की देखभाल भी उतनी जरूरी है। अक्सर महिलाएं इस चीज को अवॉइड करती है, उनको अगर थोड़ी तबीयत भी खराब होती है ना तो बस एक ही बात कहती है, यार ठीक है दवाई लेके ठीक हो जाएगा, क्या ही जरूरत है, वो दवाई लेके दो एक दिन के लिए ठीक भी हो जाता, फिर से उनके साथ यही होता है। तो मुझे लगता है कि खुद के लिए कदम बढ़ाइए, आप अगर आप स्वस्थ रहेंगी ना तभी आप परिवार वालों को भी खुश रख पाएंगी, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार वालों को आप खुश नहीं रख पाएंगी। और जब आपकी लग रहा है कि आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बोल दो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्योंकि हर समय हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। आप जितना अच्छा बन के दिखाएंगे आपसे उतना ही काम कराया जाएगा और आप उतने ही बेवकूफ बनते जाएंगे, इसीलिए थोड़ा दिमाग से काम करिए। देखिए हर किसी के साथ काम करिए लेकिन थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बच्चों के बारे में भी बात करने वाली हूँ। बच्चों को भी ना कहना सिखाइए, क्योंकि अक्सर माँ बाप यही सिखाते हैं हमें कि हर किसी के साथ रहो, हर किसी की बात मानो, जो भी तुम्हें कोई कहे मतलब जो तुमसे बड़ा है उनकी बातों का सम्मान करें, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कभी कभी ना कहना भी सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनको ना कहना नहीं सिखाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं बड़ों की बात मानो, लेकिन हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें ऐसी बात के लिए मजबूर करे जिसे वो असहज महसूस करे तो वो साफ शब्दों में ना कह सके और किसी भरोसेमंद बड़े को बता सके। ना कहना सिर्फ व्यक्तित्व की बात नहीं, कई बार ये अपनी सुरक्षा सम्मान की बात भी होती है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अच्छा बच्चा बनो मत सिखाइए, ये भी सिखाइए अपनी बात कहना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि हाँ बोलो हाँ बोलो, तो कभी कभी एक ऐसा अनजान व्यक्ति भी सामने आ जाता है जिसको नहीं जानता है बच्चा, और फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, वो ले लेता है और हमें नहीं पता उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं मिलावट है और बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि रास्ते में अकेले भी आते हैं। तो ऐसी जगह पर यानी कि बच्चों को ना कहना भी सिखाना चाहिए कि जो अनजान व्यक्ति है जिसको नहीं जानते हैं उनको आप ना बोलो, अगर उनके साथ भी अगर आप बोलते हो तो आजकल आप सभी को पता है कि कितना स्कैम चला हुआ है, बच्चे के साथ भी धोखाधड़ी होती है। तो बच्चों को ना कहना सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि जो अब आपके साथ अनजान व्यक्ति आता है तो उसे कम बात करें, और साथ ही साथ कोई अजनबी व्यक्ति आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ दे रहा है और उसे कह रहा है कि बेटा चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैन में छोड़ देता हूँ, तुम पैदल चल रहे हो धूप में ना, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाइए कि वहाँ पर आपको ना बोले। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बाहर जाते हैं और बच्चे लालच में भी आ जाते हैं, बच्चे होते दिल के सच्चे, वो उनको लालच मिल जाता है कि चलो मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, तो ले लो और खा लो और मेरे साथ चलो, तो बच्चे चल भी देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सावधान करिए, जो घर वाले दे रहे वो खाओ, लेकिन जब आपको बाहर दिया जा रहा है तो मत खाओ। और कोई भी कहता है कि दो कदम पर मेरे साथ चलो तो वो भी आपको ना कहना है। वहाँ पर बच्चों को सिखाइए, ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी।
1: क्या बात है दीना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है, कोई अजनबी पर्सन उनको मिल रहा है, तो उनसे कोई चीज ना ले और उनके साथ कहीं भी ना जाए, क्योंकि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी होता है। बच्चे बड़े मासूम होते हैं। और बच्चों को ना ये भी बताइए, आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपने घर का एड्रेस, पूरा डिटेल्स में पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें बच्चों को याद करवाइए, ताकि बच्चा कभी ऐसे सिचुएशन में अगर फंस जाए, कभी ऐसी कंडीशन, मैं तो कहूँ कि ना आए, लेकिन कभी ऐसा हो तो बच्चों को अगर सारी चीजें याद रहे तो वो अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट कर सकता है एंड अपनी सही अपने डायरेक्शन पर वो पहुँच सकता है।
0: और साथ ही साथ बच्चों को ये भी सिखाइए बैड टच और गुड टच।
1: हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत मोस्ट था, क्योंकि चलो हमने बहुत सारे बच्चों के ऊपर बातें की है और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम थोड़ा सा ना फन भी करने वाले हैं, थोड़ी सी मस्ती भी करने वाले हैं, थोड़ा फन एक्टिविटीज हो जाए ना एवरीवन। तो चलो रीना, मैं तुम्हारे साथ एक मजेदार गेम खेलती हूँ, ठीक है? चलो रीना, हमने एक मजेदार गेम खेलते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दूंगी जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है,
0: ठीक है?
1: और वो भी प्यार से, ठीक है? तो पहला सवाल मेरा ये है, आप बहुत थकी हुई हो और दोस्त आपसे कहें कि चलो आज पार्टी करते हैं, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: अगर वो मेरे खास होंगे तो हाँ, अदरवाइज ना।
1: चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास पहले से ही बहुत काम है और कोई अपना आपको भी अपना काम दे दे, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: ना।
1: चलो तीसरा सवाल, कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा लेकिन आप सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए चुपचाप हैं, क्या यहाँ हमेशा हाँ सोचेंगी या आपने जवाब ना? ओके, इन्होंने सवाल से पहले ही जवाब दे दिया।
0: तुम क्या कहना चाह रही हो?
1: ठीक है,
0: आगे पूछो।
1: अरे वाह, क्या बात है, रीना तो हर सवाल का राइट आंसर दे दिया है, राइट आंसर दिया है। और ये तो हमारे आज महिला मंच की बन गई हैं क्वीन, तो उनके लिए जोरदार तालियां। बड़ी खुशी होती है ना जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है।
0: हाँ।
1: ना कैसे कहें ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है दोस्तों? अब सबसे जरूरी बात, अगर ना कहना है तो कैसे कहें, क्योंकि ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को अपमानित करें। आप प्यार से कह सकते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगी, या मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन इस बार मेरे लिए संभव नहीं है।
0: मतलब वही बात है ना, मुस्कुरा कर कहनी है, गुस्से में नहीं कहनी।
1: हाँ, सिचुएशंस, और अभी मुझे थोड़ा अपने लिए समय चाहिए बस। तो चलिए एवरीवन, मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा हमें जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सभी अपना ख्याल रखिए।
2: आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

0: विजिट करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, दोपहर की इस प्यारी सी घड़ी में आपका स्वागत है आपके अपने शो बिंदास बोल में। मैं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और आज फिर लेकर आई हूँ ढेर सारी बातें, कुछ दिल की, कुछ आपकी और कुछ ऐसी जो शायद आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। अगर कुछ पल अपने लिए निकाले जाएं तो जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। तो बस आज की दोपहर अपने नाम कीजिए, चाय की एक चुस्की लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए बिंदास बोल्ड शो में। मैं बस लौट कर आती हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप भी मेरे साथ कनेक्ट रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए। एंड अपने मुरादाबाद सिटी में क्या हो रहा है सब आपको अपडेट मिलेगी ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिंदास पोल आरजे खुशी के साथ और ये है आपके अपने सिटी का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और अब वक्त है अपने शहर मुरादाबाद की खबरों और लोकल अपडेट्स पर भी बात करने का, क्योंकि दोस्तों अपने शहर में क्या चल रहा है इसकी जानकारी रखना भी उतना ही जरूरी है जितना देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहना। मुरादाबाद में इस समय सावन के तीसरे सोमवार और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी

0: यहाँ अलर्ट हैं। बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भीड़ और यातायात व्यवस्था को देख 17 अगस्त सोमवार को जिला के शिक्षण संस्थाओं में अवकाश रखने का फैसला लिया गया है। वहीं कांवड़ यात्रा के चलते प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि कांवड़ियों की आवाजाही सुरक्षित और सुचारू बनी रहे। ऐसे में अगर आपको कल किसी जरूरी काम से बाहर निकलना है, तो घर से निकलने से पहले अपने रूट और ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी जरूर लीजिए। और एक छोटी सी अपील, आस्था अपनी जगह, लेकिन सड़क पर सुरक्षा सबसे जरूरी। ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, धैर्य रखिए और कांवड़ यात्रियों का भी सम्मान कीजिए। तो ये थी अपने मुरादाबाद शहर के लोकल अपडेट्स। ऐसे ही सुनते रहिए बिंदास बोल, और भी बातें करेंगे हम आपसे। तब तक के लिए दोस्तों, जुड़े रहिए आरजे खुशी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। बस मैं आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है बिंदास बोल शो में। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि जिंदगी में बड़ी खुशियों से ज्यादा छोटी छोटी चीजें हमें खुश कर देती हैं? किसी अपने का अचानक से मैसेज आ जाना, किसी पुराने गाने का बजना, बारिश की खुशबू या बिना वजह के चेहरे पर मुस्कान आ जाना, यही तो है जिंदगी। इसीलिए आज का छोटा सा थॉट है कि खुश रहने के लिए बड़ी वजह का इंतजार मत कीजिए, छोटी खुशियों को महसूस करना सीखिए। क्योंकि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है जिसे हम हर दिन चुन सकते हैं। एक सवाल भी मेरा आपसे है, आखिरी बार आपने खुद की तारीफ कब की थी? दूसरों को अप्रिशिएट करना तो हमें आता है, लेकिन खुद से कहना कि हाँ मैंने बहुत कुछ संभाला है और कुछ मैं अच्छा कर रही हूँ, ये कहना हम भूल जाते हैं। तो आज आईने में देख कर खुद से एक बात जरूर कहिए, मैं परफेक्ट हूँ लेकिन मैं अपनी जगह बहुत खास हूँ। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी एटीट्यूड नहीं होती, ये खुद से किया गया प्यार होता है। तो बस अभी आती हूँ लौटकर एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के, इस पर आप बने रहिएगा FM मुरादाबाद 89.6 के साथ।

मेरी धरोहर। पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोक गीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव, मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपने फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव, मेरी धरोहर।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का से दर्द तो है, मगर कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा, खाऊंगा, मेरे को आराम मिल जाएगा। बट वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ आसान है, तो बहुत इजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ। तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफ कोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं। डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इनवाइट किया जाए, बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिससे भी बात करते हैं। तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
1: थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अमेजिंग,
0: मतलब आपने वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो,
1: डिफरेंट एरा।
0: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है, कुछ नया सा है।
1: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग, अ न्यू थिंग, समथिंग न्यू थिंग इज।
0: थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हैपनिंग बातें करवा ही लेते हैं, ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की। सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ। उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे अलग है। सो सी आगे बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं पहले तो मुझे बताओ मैम,
1: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये अभी। एक्चुअली देखिए, दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्ते या चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है,
0: हाँ जी मैम,
1: वो अक्यूट में आता है।
0: ओके।
1: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में, जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा छह हफ्ते या आठ हफ्ते तक रहता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन। अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है, जो कि 12 हफ्ते, 3 महीना, 3 महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना, जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया। या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का दर्द, एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द। तो जैसा कि मैंने बताया, क्रॉनिक पेन जो 3 महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है वो क्रॉनिक में आता है।
0: ओके।
1: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयां देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं, वो हम करते हैं।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये जो दर्दों का खेल है ना, आज आपको पता लगेगा होता क्या है। छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं मुझे पता नहीं था मैम, आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं, दो तीन ही सुने थे मैंने बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है। एग्जैक्टली। सो दोस्तों अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है, अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है, तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं।
1: देखिए कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहना पड़ता है, तो उनमें क्या होता है गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है, तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेज एंड ऑल, तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है, B12 डेफिशिएंसी होना, तो इन सारी अब आते हैं। इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द, ठीक है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। फिर आता है हमारी बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं, जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं, अर्थराइट बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया। डिस्क का पीछे की तरफ जाना जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पाँव में भी जाएगा। जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पाँव में झंझनाहट होना, कमर से पाँव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना, ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है। तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है।

0: दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया। ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की, वो कम हो जाती है। थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है।
1: ओके मैम, ये तो हमने बात के लिए सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की।
0: ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले पेशेंट कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है और दर्द किस तरह का दर्द है। नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन्न हो गया है। तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा, हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक नोसिसेप्टिव दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं। वो देने के बाद में हम आते हैं, जांचें कराते हैं, MRI में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है कैनाल डायमीटर। उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया। आपने भी सुना होगा, है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोग के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी। आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं जिसकी वजह से दर्द नहीं होता। वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना, वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है।
1: Okay. तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती है? नहीं है,
0: बिल्कुल भी नहीं है।
1: ये आपने बहुत अच्छा मिथ दूर किया है, निदा मैम।
0: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं। आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा। तो वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा, बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है।
1: Okay.
0: हम सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं। जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं। तो ये इसका इलाज है।
1: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
0: बिल्कुल,
1: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है कई बार, मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का, तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली का रीजन ये भी हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
1: जी।
0: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई, वो सर मेरे दिमाग पे आया, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको। क्या अब क्रॉनिक पेन में होता है, बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं। ब्रेन में क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है,
1: जी जी,
0: ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, उस पे जाके वो ट्रिगर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है। पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना, जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना, आपको अच्छा लगता है तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा व्हाट एवर द वर्क यू लाइक।
1: ओके,
0: ऐसे।
1: ओके मैम, सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
0: डेफिनेटली।
1: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं? मैम
0: बिल्कुल, क्या होता है कि हम, हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया, AI आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेनजी हैं, जेन अल्फा है,
1: बीटा है,
0: और बहुत सारी जनरेशन आ गई है।
1: करेक्ट।
0: तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है। मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, तो हम अपने आप को अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं. तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है.
1: बिल्कुल मैम.
0: और टाइम ऑफ स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का, और इलाज भी इसका यही है. जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते, सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ.
1: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
0: बीच में भी हम देखते हैं,
1: फिर भी हम देख रहे होते हैं. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है.
0: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना.
1: करेक्ट. तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है मैम.
0: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है. ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो. ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है. अगर और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को, कि भाई अगर माइग्रेन है आपको, तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन. सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे. माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीख से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर. और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं. माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरेलजिया. पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपो, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है. तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है. तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं.
1: बिल्कुल. डॉक्टर निधा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साईं हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं. निधा मैम, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, लेकिन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है. तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं, तो क्या ये करना चाहिए या फिर
0: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आस पास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई दर्द चला गया, फिर अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क. फीमेल्स को मैं बोलूंगी वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होगी, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है.
1: करेक्ट.
0: तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है. कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो जा रहे हैं, दैट इज प्योरली ओके. कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं.
1: Exactly.
0: कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है.
1: ठीक है.
0: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है.
1: तो मतलब ऐसे
0: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम जीरो डॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना, कि खा लेते हैं. अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है. लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे, और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है.
1: डॉक्टर निधा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज, दर्द को लेके हम काफी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं. देखिए, जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि एक गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है. वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते. और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निधा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साईं हॉस्पिटल से. मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय, जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेन्युइनली?
0: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
1: ऑलराइट,
0: ठीक है।
1: अच्छा,
0: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
1: ओके,
0: मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है, तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
1: ओके,
0: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
1: ओके,
0: हॉट फर्मेंटेशन,
1: वो फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
0: बिल्कुल नहीं है।
1: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
0: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं,
1: बीमारी को ढूंढते हैं। एग्जैक्टली,
0: तो पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
1: ओके मैम, कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है? मतलब पूरे सर में दर्द ना होके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है।
0: देखिए, सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
1: ठीक है,
0: ठीक है,
1: ठीक है।
0: और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑक्सिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
1: ओके,
0: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है, ऑक्सिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है। एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं। तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है पेन, किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
1: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
0: बिल्कुल है,
1: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
0: बिल्कुल है, मानसिक तनाव, देखिए स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
1: ठीक है,
0: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
1: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन किया आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली? क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है या कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
0: देखिए, आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन,
1: ठीक है
0: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है। या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि 3 महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
1: ठीक है,
0: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है।
1: ठीक है, ओके मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
0: देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें
1: जी।
0: अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ।
1: बिल्कुल
0: ऐसा ही है
1: मैम, एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी
0: क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
1: बिल्कुल मैम सही बोला। इनफैक्ट मैम मुझे ऐसे लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है पूरा मोबाइल में घुसा होता है।

0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है।
0: ओके,
1: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण है।
0: ओके, सो दोस्तों आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैम कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए? बिल्कुल, स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं।
1: बिल्कुल, दर्द की दवाइयाँ आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें।
0: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
1: AI
0: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सर दर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा।
1: नहीं सर दर्द, देखिए गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन आप जब 40-50 साल की जब उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है। तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट, अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँगी।
0: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हम आशा करते हैं कि, थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा। और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत। मैम थैंक यू,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच। और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आपके शहर का सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर। और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है सर? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल। ठीक है, आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
1: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी, जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं।
0: जी, जी, जी, जी।
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी, जी, जी।
1: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं,
0: बट
1: ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि, जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ
1: हम
0: जी.
1: प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
0: दिस इज कंगारू मदर केयर, आई थिंक
1: सॉर्ट ऑफ, इट्स अ डिफरेंट थिंग।
0: ऑलराइट।
1: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है।
0: जी।
1: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
0: ओके।
1: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है। कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है
0: तो जी जी।
1: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
0: ओके
1: ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
0: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
1: बेबी को 2-3 आवर्ली, इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं उनको नहीं पता होता है। वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
0: जी।
1: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
0: Okay.
1: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं, उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाए ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए।
0: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
1: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
0: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
1: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीज हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
1: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: ठीक है, बहुत
1: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं, अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहनाने हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म से जनरली कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए, बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं। तो आज का लाइफ स्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो है पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू। तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
1: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
0: जी,
1: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
0: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
1: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
1: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है। उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेरेंट्स पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कतें हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
0: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश जाते जाते?
1: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत,
0: हाँ जी।
1: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड

0: देंगे, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे, सो जाएंगे। बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे, बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान, बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेलियां तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी, तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखें। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
5: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। शो का नाम है बिंदास बोल, जहाँ पर बिंदास होकर बातें करते हैं हम। और दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती, क्योंकि रिश्ते बहुत अजीब होते हैं ना, कभी एक छोटा सा कैसे हो दिल को बहुत सुकून दिया जाता है और कभी घंटों की बातें भी दिल तक नहीं पहुँच पाती है। इसीलिए रिश्तों में शब्दों से ज्यादा जरूरी है फीलिंग। किसी अपने की जरूरत हो तो उसके पास बैठ जाइए, हर बात का देना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ साथ होना ही काफी होता है। क्योंकि जिंदगी में लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन जो हमारे बिना कहे हमें समझ जाएं, वही सच में अपने होते हैं। और आज है संडे, यानी हमारे बिजी लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपने अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का दिन। रोज की भागदौड़, काम का प्रेशर और बिजी शेड्यूल के बीच हम अक्सर उन्हीं लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खास हैं। तो क्यों ना आज थोड़ा सा टाइम फैमिली के नाम किया जाए, हाथ बैठकर चाय पी जाए, पुरानी यादों को रिकॉल किया जाए, कहीं घूमने का छोटा सा प्लान बनाइए या फिर घर पर ही कुछ स्पेशल बनाकर सबको खिलाइए। और अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आज अपने हाथों से फैमिली के लिए कुछ बनाइए, क्योंकि खाने में सिर्फ स्वाद ही नहीं होता, उसमें आपका प्यार और केयर भी शामिल होती है। और अगर कुकिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, आज किचन में किसी अपने का हाथ बता दीजिए। यकीन मानिए, छोटा सा काम भी बहुत मायने रखता है। कभी कभी हमें अपने लोगों की हर प्रॉब्लम का सलूशन देने की जरूरत नहीं होती, बस उनके पास बैठकर कहना होता है मैं हूँ ना, और शायद रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है। तो इस संडे मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रखिए, सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लीजिए और अपने परिवार के साथ रियल मोमेंट्स शेयर कीजिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत मेमोरीज अक्सर किसी बड़े सेलिब्रेशन में नहीं बल्कि घर के छोटे छोटे पलों में बनती है। याद रखिए, रिश्तों को महंगे गिफ्ट से नहीं, का टाइम आपका टेंशन और आपका अपनापन मजबूत बनाता है। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ बिंदास बोल शो में। मैं लौट कर आती हूँ एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: इस साइड आर्जेरीना एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनुरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही
1: कहा। तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
1: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
1: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
0: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
1: देखिए, आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटम ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटम ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटम ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटम ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो बात, जो अदालत ने जो बात कह दी, आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
0: शो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
1: देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है, तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
0: सुना सकती है। बिल्कुल,
1: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
0: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
1: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है, एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकते। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पर कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
0: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
1: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है ये भारत में, कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है। इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ बोलती है, फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
0: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
1: हाँ, अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो होता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पर जो हैबियस कॉर्पस रेट होती है, ये रेट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको। थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके लिए इसमें विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है, ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये इस सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाई कोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पे बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है
0: या नहीं है।
1: हाँ, तो मुख्यतः ये पांच रेट होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते हैं।
0: अंत में सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
1: देखिए, कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है। हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
1: मेरे को माना तो बाद ही एक यूनिवर्सिटी से मिली थी और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में माना तो बाद ही मिली हुई
2: है। वैसे
1: एक क्वालिफिकेशन मैंने एम कॉम किया हुआ है, एम बी ए किया हुआ है और एल एल बी मेरा है और नाउ आई एम परसुइंग एल एल एम।
0: तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
1: देखिए बाकी सब तो ठीक है, मेरा वो बेसिक जो है मेरा खुद का ड्रीम था, मुझे एम कॉम करना है उसके बाद मेरे को एम बी ए करना है, लेकिन एल एल बी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
0: हाँ सर वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पी एच डी के बाद
1: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कम्प्लेंट करी थी और वो फेक कम्प्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल एथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं। मैं इसको
0: बिल्कुल क्या
1: क्योंकि
0: है?
1: इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
0: बिल्कुल
1: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा और मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में।
0: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।
1: बस एक एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
0: और कहते हैं ना सर, एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है,
1: मिलती है। और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर सही।
1: तो मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम ना वहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल
1: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिंदगी वो एक गाना ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहना है सुबह शाम।
0: बिल्कुल
1: तो बस यही लाइफ है
0: सर। किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती है।
1: किताबें ही आपकी
0: सच्ची। बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहा आपने।
3: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। दोस्तों आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आस पास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं, और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि।

दी और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है दोस्तों। पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं और दोस्तों तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं। और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मेरा गांव मेरी धरोहर है,
2: मेरा गांव मेरी धरोहर, पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली विसरी कविताओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

0: खबरों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कानूनी अधिकारों के बारे में, यानी कि हमारे बुजुर्ग समाज के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन कई बार उन्हें अपने ही अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है।
1: थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है। और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही का
1: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर। तो चलिए इस सिलसिले को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सीनियर सिटीजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है?
1: देखिए कानून के बारे में जानने से पहले मैं पहले अपने जो हमारे समाज में जो इस समय बुजुर्गों की स्थिति है उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। अधिकतर देखा गया जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन है उनको मोस्टली एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है आजकल के यूथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनको बिल्कुल किसी भी चीज की भरण पोषण की आवश्यकता है या कोई हेल्प चाहिए उनको इग्नोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, हमें हमारे पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, हमारा भी दायित्व है कि अगर वो इस एज में है तो
0: उनकी सेवा करें,
1: सेवा करें हम भी। और भारत में सीनियर सिटीजन्स के अगर हम अधिकारों के लिए बात करते हैं, सुरक्षा के लिए उनकी बात करते हैं, तो मुख्य रूप से एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। ये कानून के तहत बच्चों या परिवार के सदस्यों के अपने माता पिता की देखभाल के लिए भरण पोषण का अधिकार है। अगर कोई जो भरण पोषण अपने माता पिता का नहीं कर रहा है, जैसे अधिकतर घर में देखते भी है कि भाई बच्चों की शादी हो जाती है तो वो अपना
0: अलग रहने की कोशिश करते हैं
1: और माता पिता को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, और उस समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है सीनियर सिटीजन्स को, तो उसके लिए भी उनके पास राइट्स है, वो कोर्ट में विवाद दायर करके उनके मेंटेनेंस इत्यादि मांग कर सकते हैं भरण पोषण की।
0: बिल्कुल सर। सो अगला क्वेश्चन है हमारा सर, अगर बच्चों के द्वारा माता पिता की देखभाल नहीं की जाती तो बुजुर्ग क्या कर सकते हैं?
1: देखिए ऐसी स्थिति में आप किसी भी लीगल लॉयर की एडवोकेट की हेल्प लें, उसे पूरी बात बताएं, और ऐसी स्थिति में आपको जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल बच्चों को आदेश दे सकता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। लोकल आप एसडीएम कोर्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं, डीएम के यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कानूनी विधि हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों से मदद मांग सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रत्येक बच्चों को खुद ही आगे आके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
0: जिस तरीके से हमें माँ बाप जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े करते हैं, वही हमारा दायित्व है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
1: करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था।
0: बिल्कुल सर। और इनफैक्ट तो हम भी उस एज में आने वाले ही एक टाइम।
1: बिल्कुल, जैसा आप बीज
0: वैसे ही फल मिलेगा,
1: फल मिलेगा आपको।
0: बिल्कुल सर। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है लोकल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आवेदन करके आप जो है मांग कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है तो वह अपने बच्चों से कानूनी वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकता है।
0: श्रोताओं आपको जो ये हमारी बात है आई होप कि बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। यानी कि अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही घर में जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या कोई जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करे, तो सबसे पहले तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएं। पुलिस आपकी तुरंत हेल्प करेगी। सीनियर सिटीजन एक्ट में भी ये आपको अधिकार दिया गया है। पुलिस आपकी तुरंत सहायता करती है। नजदीकी थाने या चौकी पे जाके अपनी पूरी बात बताएं। रिटन में अगर कंप्लेंट करने को वहाँ पे पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं तो लिखित में अवगत कराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तुरंत किसी लीगल सलाहकार से बात करके ट्रिब्यूनल में अगर आप केस डालना चाहते हैं तो आप केस भी डाल सकते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी।
0: और बहुत से बुजुर्ग है सर, उनके पास फोन नहीं होते तो वो कैसे पहुंच सकते हैं?
1: देखिए, नजदीकी थाने में तो आपको पता होता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका मित्र है या संबंधी है तो आप तुरंत उसकी मदद मांगी कैसे भी करके, लेकिन सूचना आपको पुलिस को देना जरूरी,
0: पहुंचाना जरूरी है
1: तुरंत।
0: चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल उठा सकते हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अपनी संपत्ति को देते समय कुछ शर्तें रख सकते हैं। अगर उन शर्तों का पालन के वारिसान नहीं करते हैं तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी कर सकते हैं कानूनी।
0: बिल्कुल।
1: तो लेकिन जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखित में होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रॉपर यही है कि लिखित में हो।
1: हाँ,
0: तभी
1: अगर आप कोई भी संपत्ति अपने वारिसों को देते हैं या दान करते हैं और दान करने के बाद वो आपकी सेवा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, तो अक्सर मन में ये मलाल रहता है कि हमने संपत्ति क्यों दे दी।
0: बिल्कुल।
1: तो जो भी आपके मन की बात है, जो भी टर्म्स कंडीशन है, वो पहले ही लिखित में आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं।
0: इससे लिखित में होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी सर।
1: आपका अधिकार बना रहता है फिर भी। अगर मान लीजिए आपको कोई दान में दी हुई चीज रद्द करनी है या किसी चीज को लेके आप उसमें कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपने उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है और उसकी वो फुलफिल आपके वारिस नहीं करते, तो आप उस चीज को लेके भी आप जो भी आपने कोई भी उनको फेवर दिया तो उस पॉइंट पे आप उनको रद्द भी कर सकते हैं।
0: ओके सर, क्या सरकार सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अदालत या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करती है?
1: हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे सुना जाता है। अगर हम कोई भी बात दायर करते हैं तो उनके लिए एक जो है कोर्ट का भी जो है अलग ही एक नजरिया रहता है। और मुख्य रूप से जो ये हमारी सरकार की नीति है या हमारी जुडिशरी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता प्रथम पायदान पे दी गई
0: दी जाती है।
1: जी।
0: सीनियर सिटीजन को सरकारी योजनाओं में कोई विशेष सुविधाएं मिलती हैं?
1: सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकारी सुविधाएं काफी दी गई हैं। जैसे आप सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए पेंशन है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी है, यात्राओं में छूट दी गई है, उनके सामाजिक योजनाएं कई सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सुरक्षित व सम्मान ढंग से कर सके।
0: बहुत अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बुजुर्ग के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो जाए तो क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, बुजुर्गों को सबसे बड़ी चीज है कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो सॉफ्ट टारगेट समझता है, क्योंकि इस एज में एक तो बुजुर्ग ज्यादा जो है सोचने विचारने की शक्ति थोड़ा सा उनकी कम,
0: थोड़ी शक्ति उनकी कम हो जाती है,
1: कम हो जाती है, शरीर भी थोड़ा दुर्बल हो जाता है,
0: मतलब एनर्जी पावर थोड़ा लो हो जाता है।
1: क्रिमिनल व्यक्तित्व के लोग हैं वो सॉफ्ट टारगेट उनको लगता है कि वो बुजुर्ग को बनाए। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप तुरंत जो है पुलिस में लेके शिकायत दर्ज कराएं, कानूनी सहायता आप लीजिए। कानून बुजुर्ग को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ही सख्त प्रावधान कानून के तहत बने हैं, और बुजुर्गों की जो शिकायत है वो बिल्कुल प्रथम पायदान पे जाके सुनी जाती है पुलिस आला अधिकारियों द्वारा। तो निश्चित तौर पे आपको तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए।
0: क्या बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना कानूनी अपराध है?
1: जी हाँ, बुजुर्गों के साथ कानून अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है कोई, तो ये कानूनन अपराध है। आमतौर की डेली दिनचर्या में हम देखते हैं कि अगर हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं या पड़ोस में ही होते हैं तो हम किसी बुजुर्ग को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, धमका देते हैं, तो ये भी क्राइम है अपने आप में।
0: अच्छा अच्छा, मतलब कोई धमका रहा है, कुछ गलत
1: तो
0: बोल रहा है।
1: आप किसी को भी आप ऐसे अगर आप बोलते हैं बुजुर्गों को, तो खास तौर पे अगर आपने कोई भी ऐसी अपशब्द बोल दी तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। और खास तौर पे जो है पुलिस के आला अधिकारियों को जुडिशरी की तरफ से भी साफ इंस्ट्रक्शंस है कि बुजुर्गों का, बच्चे और बुजुर्गों दोनों के लिए अगर कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत तत्काल लीगल एक्शन लिया जाए उसके।
0: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, हमें किसी के बारे में बोलने का कोई राइट?
1: बिल्कुल, आप किसी को अब शब्द कैसे बोल सकते हैं, आप किसी को कानून कैसे आप हाथ में ले सकते हैं? तो आपको निश्चित तौर पे जो है सबका आदर सम्मान करना चाहिए, और जो है बुजुर्गों को तो खास तौर पे आपको जो है उनकी सेवा भाव रखना चाहिए मन के अंदर।
0: बिल्कुल। श्रोताओं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर आप सेवा करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारा अंत में, यानी कि आप सीनियर सिटीजन और उनके परिवार को क्या संदेश एक देना चाहेंगे?
1: देखिए, मेरा सभी जितने भी आपके FM मुरादाबाद 89.6 MHz के कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि हम सभी को अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, और साथ ही सीनियर सिटीजन्स को अपने कानूनी अधिकारों की भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भी मिस हैपनिंग हो रही है, तो तत्काल वो उस पर लीगल एक्शन ले सके, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। और जो है बुजुर्गों को खास तौर पे हमें जो है वॉच भी करना चाहिए, क्योंकि उन इस एज में आके उनको हमारी जरूरत पड़ती है, वो शरीर से भी दुर्बल होते हैं, सोच भी उनकी थोड़ी सी, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके हमें बहुत सी जानकारियां मिली कि बुजुर्गों के लिए भी कानून है, मतलब उनके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं मतलब। तो थैंक यू सो मच सर, अब मैं यहाँ से जाने की इजाजत लेती हूँ। श्रोताओं, अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारा नंबर है 9837896896।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहाँ बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: दिस साइड आर्जेरीन एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
1: रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सर ये बताइए आप मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
1: जी,
0: तो आपको हमारे रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
1: नहीं मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
0: अरे अरे क्या बात है।
1: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया है आपने।
0: बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी सर।
1: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए। और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सर। तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है।
1: देखिए बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को निर्णय को कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
0: बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
1: देखिए जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को अस्थायी रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती
0: है। सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
1: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है तो अदालत के समक्ष अपनी एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
0: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
1: देखिए स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
1: देखिए जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है उस पर कुछ नहीं कर सकते।
0: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
1: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना आपको मानना भी है और बाध्यता है आपकी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
1: नहीं देखिए इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
0: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
1: देखिए इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कोर्ट
0: बिल्कुल
1: के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
0: बिल्कुल।
1: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल लगा सकती है। अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाई कोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
0: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
1: जी हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
0: क्या बात है सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
1: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपनी लीगल राइट्स को जानें और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या जो कानून तोड़ रहे होते हैं। तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
1: बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए। अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताओ तो पता नहीं था।
1: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं उसको स्टडी करते हैं पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है ना, जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: बहुत
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद। अगर

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल की धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के

0: ये भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
1: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
0: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
1: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
0: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
1: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
0: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
1: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
0: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
1: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
0: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
0: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं, फिर लिट्टी खाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना।
0: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
1: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
0: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मैम,
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती, इसलिए हम लोगों ने बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी, अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, इस दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहे, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है।
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: करो।
1: हाँ जी, कैसे हालचाल? आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और यहाँ पर जब आनंद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है। और दोस्तों, आज तो मैं भी एक शायर बन के आ गया हूँ। माना कि मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अंदर की जो बातें हैं ना, जो अंदर की फीलिंग्स है, वो निकल जानी चाहिए और अच्छा होता है यार। और आज हमारे साथ में जो शख्स हैं, जो जनाब हैं, वो भी बस इसी के सरताज बनने वाले हैं हमारे स्टूडियो में। आज बहुत सारी बातचीत होगी आपके साथ, आपकी शाम को थोड़ा सा और खूबसूरती के साथ जो है हम ब्यूटीफुल बनाएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाँ जी, फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भावनाएं मिलती हैं सुरों से, कि जहाँ भावनाएं मिलती हैं सुरों से, वहीं शुरू होती है हमारी महफिल, दिलों की बात दिलों के साथ। आपका अपना रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद, जहां पर आज प्यार मोहब्बत इश्क और न जाने कौन कौन सी बातें होने वाली है, लेकिन जो भी बातें होंगी वो सिर्फ आपके काम की होंगी और आपसे रिलेटेड होंगी, यानी कि आपको एंटरटेनमेंट का डोज भी देंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और अभी मैं अपनी बातों को देता हूं विराम, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है अब उन्हें नहीं करने देंगे आराम, उनसे बातचीत करना है यार, यही तो हमारा काम है। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेशन में आपका।
2: मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू आनंद जी।
1: जी, हालांकि इनकी आवाज आपने पहले भी सुनी है, लेकिन ये अभी काफी सीरियस होके बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सर, मतलब लंच वंच खा पी के आए हो ना आप स्टूडियो में हमारे?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। जरा एक शुरुआत होती है तो उससे फिर आगे बढ़ना होता है, तो वही मैं उस इंजन को स्टार्ट करने के।
1: बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आप इंजन स्टार्ट कीजिए, हमने तो पूरी गाड़ी स्टार्ट कर दी है सर। वेल, आगे बढ़ते हैं सर। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में हमारी जनता को अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए जरा आपने आपको।
2: जी, मेरा परिचय क्या है कि मैं आप ही के बीच का हूँ।
1: बिल्कुल सर।
2: मेरा नाम मनोज मनु है
1: जी,
2: और शायरी और कविताओं से मुझे निस्बत है।
1: क्या
2: मैं
1: बात है?
2: अपने परिचय के बारे में चार मिसरे ही क्यों ना रखूं?
1: बिल्कुल इरशाद जनाब, मजा आ जाएगा फिर तो। आए हाय,
2: कहता हूँ कि अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है।
1: अरे वाह।
2: अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है। कौन है कैसा खबर है मुझको, सब होशियारी मुझ में है।
1: क्या बात है।
2: पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझ में है। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझ में है।
1: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया।

0: शुक्रिया,
1: फैंटास्टिक। तो मनु जी एक बात मैं आपसे, मैं आपको मनु जी बोल सकता हूँ ना सर?
0: क्या बात है मेरा
1: सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी आवाज में बेस इतना अच्छा है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना बढ़िया आप डिलीवर कर रहे हैं अपना, लेकिन ये जो आपने अभी अपने आप को भी इन शब्दों में पिरो दिया मुरादाबाद और फिर अपने आप को भी कनेक्ट कर दिया, तो ये खूबसूरती कहाँ से आती है मुरादाबाद के कलाकारों में? अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूँ सबका कुछ ना कुछ रहा है मुरादाबाद की चीजों से रिलेटेड, अपने आप को भी उसमें शामिल कर देना, ये मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग जब लिखते हो तो उसके अंदर खुद को फील करते हो?
0: आपने सुना होगा कि अल्लाह अगर तौफीक ना दे इंसान के बस की बात नहीं।
1: एग्जैक्टली,
0: तो ये बस प्रभु का आशीर्वाद है।
1: क्या बात है,
0: जिसने जो शब्द अता किए हैं उनके माध्यम से जो जहन में आता जाता है, उतरता जाता है, वही कहा जाता है। कहते हैं ना कि शेर लिखा नहीं जाता, कहा जाता है, पढ़ा जाता है,
1: पढ़ा जाता है, फील किया जाता है।
0: जी जी, तो बस वही जो वो दे देता है वही हम ले लेते हैं।
1: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया सर। और ऐसी खूबसूरत बातें जो है आज सुनते रहेंगे आप इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आपके शाम को खूबसूरत बना रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोज वर्मा मनु जी, और आज आपकी शाम को स्पेशल बनाने के लिए कुछ तो अपनी डायरी में चिट्ठा लेकर आए हैं, पूरा एकदम भारी भरकम तैयारी के साथ आए हैं। तो सर शुरुआत कैसे होने वाली है, क्या है जो आप हमारे श्रोताओं को आज की शाम सुनाएंगे? लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं मैं, मतलब बता दूं आपको गाइज, जैसे मनु जी हमारे स्टूडियो में आए तो उन्होंने बोला कि आनंद जी अपनी रफ्तार थोड़ी कम रखिएगा, तो मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई ऐसे में कौन सी एक्सप्रेस में सवार होता हूं जो सर ने मेरे को ये पहले से अलर्ट भेज दिया। ऐसा क्यों बोला सर आपने? माना कि आपका फ्लो वो अपना शायर वाला चलेगा, बट मेरा तो वो जॉकी वाला ही रहेगा ना सर।
0: जी, एक शेर कहा जाता है,
1: हर बार
0: बर्क रो था,
1: हाँ,
0: वो बर्क रो था,
1: हाँ,
0: कहाँ रह गया जाने पीछे,
1: हाँ,
0: अब इंतजार करेंगे सकिश्तापा उसका।
1: हाँ, अरे वाह,
0: सकिश्तापा यानी कि जो धीरे धीरे कदमों से चलने वाले हैं,
1: हाँ,
0: वो इंतजार करते रह जाते हैं।
1: ओके,
0: तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोफेशन है और आप जुड़े हुए हैं, शहर मुरादाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत जो उसकी स्पीड है आपकी, वो स्पीड काबिले तारीफ है, लेकिन ये जो शायरी है,
1: हाँ,
0: ये हसास का विषय है,
1: इसमें ठहराव
0: एहसासों का विषय है,
1: और इसमें
0: ठहराव की बहुत जरूरत है, बस इसीलिए मैंने आपसे दर्ज की थी
1: कि नहीं तो मैंने वो पब्लिकली रख दी ना सर, देखिए इतनी अच्छी बात है, ताकि वो चीज हमें पता तो चले और हमारी ऑडियंस को भी पता चले।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, जब हम पब्लिक के सामने होते हैं तो हमारा अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ पब्लिक के लिए होता है,
1: क्या ही होता है, उसी के लिए होता है।
0: बेशक इसमें कोई जरा सा भी गुंजाइश नहीं कहने की, मुरादाबाद की और आपके एफएम की जो जनता है, जो श्रोता है, वो निहायत खास हैं, कोई आम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं रेडियो एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बोला, और आप भी काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लग रहा है आरजे बन जाएंगे आप भी अगर ऐसी प्रैक्टिस चलती रही तो। खैर आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मनु जी आपसे बातचीत करके, और वैसे तो कई मरतबा मेरी इनसे मुलाकात होती रहती है आते जाते रोड के किनारे, सड़क के किनारे हम लोग गुफ्तगू करने लग जाते हैं जब भी मिलते हैं, लेकिन आज जो ये इंटरेक्शन हो रहा है ना सर, मेरा आपका पहली बार हो रहा है शायद ये कॉन्वर्सेशन ना?
0: जी जी, ये पहली बार ही है जो मैं हिम्मत समेट के आपके सामने हूँ।
1: अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, हमेशा इतना अच्छा करते हैं, मैं इवन आपकी स्टेटस भी देखता रहता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, आप कनेक्टेड है मेरे साथ, तो जब भी कोई ओकेजन होता है सर का हम देखते रहते हैं, मान सम्मान और आपकी जो चीजें आप करते हैं मतलब बढ़िया है, और मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास कलाकारी है, अगर वो पहचान के उसमें कुछ अच्छा करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है।
0: सही कहा आनंद जी, ये बिल्कुल आपकी निस्बत है, आपकी मोहब्बत है जो मुझे इतनी आपने सम्मान प्रदान किया है। मैं फिर अपनी दो लाइनें रहूं?
1: जरूर सर,
0: ये यही शेर में दो लाइनें दो मिसरे होते हैं जो आपके साथ साथ हमारे जो सामाईन जो श्रोतागण है
1: जी जी,
0: उनके लिए भी है कि मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं।
1: वाह,
0: मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं, उसकी बख्शी हुई नेमत है मेरा कुछ भी नहीं, और चंद मिसरों को जो तरजीह अता करता है, ये तेरा हुस्ने समात है मेरा कुछ भी नहीं।
1: क्या बात है,
0: ये तेरा हुस्ने समात है मेरा
1: गजब
0: कुछ भी नहीं।
1: गजब, मुझे लग रहा है कि दोस्तों कल सुबह अगर मैंने उर्दू के कुछ भी शब्द नए बोले तो उसमें सारा योगदान मनु जी का होगा, आज पूरी उर्दू सिखा के जाने वाले हैं। मतलब क्या इनके शब्द है, मतलब तलफ्फुज देख रहे हैं आप इनका कितना गजब का है सर, मतलब
0: उर्दू यार, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करते हुए सर।
0: ये कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे लिए,
1: एब्सोल्युटली सर आप डिजर्व करते हैं, और गाइस हम जो है आपकी शाम को ऐसे ही रॉकिंग बनाते रहेंगे, काम करते हैं, रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो सर से कुछ बेहतरीन सा सुनेंगे जो आपकी शाम को और भी बेहतर से बेहतरीन बना देगा। फिलहाल आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैंने कहा जी आपका खैर मकदम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आज मैं भी थोड़ा उर्दू में, थोड़ा शायराना अंदाज में मैं भी कुछ ना कुछ कहता रहूंगा। जब इतने खास लोग सामने बैठे हों शानदार प्रस्तुति के साथ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो मनु जी वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। और मैं चाहूंगा कि कुछ बढ़िया से अपने अल्फाजों में कुछ बढ़िया से हमारे लिसनर्स को सुना दें आप।
1: शुक्रिया आनंद जी, मैं फिर रखता हूँ दो मिसरे
0: जी।
1: तमाशा बन के रह जाएं मरासिम,
0: वाह
1: मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना। तमाशा बन के रह जाएं मरासिम, मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना।
0: क्या बात,
1: उसी की जी हुजूरी मार देगी। मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है,
1: मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे भी कुछ लिखते हैं सर, या यहीं पे ये लाइन जो है एंड हो जाती है?
1: जी लाइनें तो हैं, लेकिन जो मौजू है वही चीज सामने आती है।
0: क्या बात है, लेकिन सर एक बात तो है कि कहीं ना कहीं जो प्यार करने का तरीका होता है, जब आप शेरो शायरी के साथ आते हो तो उसका मजा डबल हो जाता है। आप लोगों तक वो बात पहुंचा देते हो जो एक्चुअली आप जानते हो, और जो सुन रहा होता है ना, जो उसको फील करता है तो वो समझ पाता है। क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना, वो दिल से दिल तक का होता है। और ये बात जो आप अपने अल्फाज के थ्रू कह रहे हैं हमारे लिसनर्स से, जो अपनी शायरियों के थ्रू रख रहे हैं, ये ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे जो दिल से इस चीज को फील करते हों या इस चीज से जुड़े हों कहीं ना कहीं।
1: नहीं, मैं समझता हूँ कि शायरी का जो अपना मकाम है, जो उसकी सफलता है
0: जी जी,
1: वो भी यही है कि जो मन कह रहा है वो मन सुने सामने वाला।
0: वही वही, बिल्कुल सही कहा,
1: कनेक्ट करता है, तो ये शायरी वास्तव में अपनी अपनी सार्थकता महसूस कराती है।
0: गॉट इट, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आजकल के प्यार के बारे में कुछ है आपके पास, कुछ इंटरेस्टिंग? आजकल का जो सोशल मीडिया वाला जमाना है, सोशल मीडिया वाला प्यार है, जहाँ एक घंटे के अंदर प्यार हो जाता है, वहीं दूसरे घंटे में लोग ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर कोई नया मिल जाता है। तो इस आजकल का जो जमाना चल रहा है, अगर उसकी बात करूं तो उस पर कुछ अगर आप रखना चाहें।
1: देखिये, चीज तो होती है, दरअसल क्या है, बाकी की चीजें मौका ही नहीं देती। जिंदगी इतनी तेज भाग रही है मौजूदा हालात में,
0: 100%
1: कि उसे आप कुछ भी नहीं कह सकते, रोक नहीं सकते। जहां रुकते हैं तो दुनिया आगे निकल जाती है। लेकिन आप इस बारे में ये नहीं कह सकते कि जो कली, जो जो जो एक पौधा, उसके जो बीज मोहब्बत का उस दिल में फूटा था, वो दबके रह गया। हो सकता है वो खत्म हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते।
0: Correct.
1: उनके लिए मैं दो लाइनें बताता हूँ आपको।
0: Please, sure.
1: ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई।
0: वाह।
1: ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई। ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल ना हुई।
0: क्या बात है,
1: ये आज की बात नहीं है। ये पहले भी होता रहा है
0: जी।
1: तो जो सच्चाई है वो हमेशा सच्चाई रहती है।
0: बिल्कुल,
1: यही सच्चाई का एक सार्थक गुण है। ये किसी शय का किसी तौर भी बदल ना हुई, ये मोहब्बत की कहानी भी मुकम्मल ना हुई। हमने माना कि तेरा साथ नहीं किस्मत में, मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: क्या बात है,
1: मगर ये भी क्या किसी और से पहल ना हुई।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, कहते हैं कि सच्चा प्यार वही होता है जो मुकम्मल नहीं होता है। इसमें कितनी सच्चाई है कि सच्चा इश्क वही होता है जो आपको ना मिले? ऐसा बहुत सारे लोगों को कहते मैंने सुना है। इवन मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल एकदम सच्चा वाला प्यार करते हैं, एकदम सत्यवान टाइप वाला, बट उनको जब नहीं मिलता तो वो कहते हैं सच्चा प्यार तो वही है जो नसीब ना हो। क्या सच में इसमें इस बात में सच्चाई है? वैसे आप लोग इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं?
1: सच्चाई क्या है? सच्चाई दरअसल ये है कि जब तक, जैसे मैं एक आपको फिर वही शेर के माध्यम से बताना चाहूंगा
0: जी, प्लीज।
1: हमारे एक उस्ताद शायर ने कहा है
0: जी जी,
1: आ तमन्ना तुझको रोलू वक्त वसल।
0: क्या बात,
1: वसल यानी कि मिलन का जो समय होता है
0: जी जी।
1: आ तमन्ना तुझको रोलू वक्त वसल, आज तू दिल से निकाली जाएगी। यानी कि जो चीजें पूरी हो जाती हैं फिर वो खत्म हो जाती हैं। और जैसे हमारे गालिब चचा ने भी कहा है कि वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर का पार होता।
0: क्या बात,
1: तो जाहिर सी बात है कि जो उस तीर की खलिश है, दर्द है, वो जब तक गड़ा रहता है तब तक मुकम्मल रहती है, लगातार रहती है। यही अधूरी मोहब्बत का सिलसिला भी है, जो पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं लगातार वो अपनी पीस बनाए रखती है, और जो पूरी हो जाती है वो अपना दम तोड़ देती है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसी तमाम जानकारियां जो आज हम सर से निकलवाते रहेंगे और तमाम ऐसे उनके दिल की फीलिंग्स कह सकते हैं जो आज वो हमारे साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट्स, अपनी बातें, अपनी शायरी, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर आज की शाम हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए, रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद लौट कर आएंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। मेरा नाम आनंद है।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन जिसमें आज हमारे साथ मनु जी मौजूद हैं। ढेर सारी आपको शेरो शायरी के साथ एक कह सकते हैं फ्लो बना रहे हैं आपका और मेरा एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी शाम को खूबसूरत बना रहे हैं। नए नए शब्दों से हमें रूबरू करा रहे हैं, ढेर सारी बातें उनके साथ चल भी रही हैं और उनकी अंदर की जो कलाकारी है वो भी कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से।
1: शुक्रिया। थैंक
0: यू जी। मनु जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, और मतलब पूछना क्या, साफ शब्दों में कहूँ तो सुनना चाह रहा हूँ, शेर व शायरी और ये जो कविताएं हैं जो आप रचनाएं हैं वो तो आप करते ही रहते हैं, इवन आप गीत भी बढ़िया गाते हैं, मैंने आपके सुने हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी आप अच्छा करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ वही नज्म की, क्योंकि शेर व शायरी से हटके कुछ अलग चीज लगती है मुझे नज्म, है ना, तो कुछ अगर आप नज्म पे चर्चा कर लें, कुछ बढ़िया सी सुना दें तो हमारे सुनने वाले श्रोताओं को डबल मजा आ जाएगा।
1: क्या बात है। वास्तव में नज्म अपने आप में एक मुकम्मल चीज है।
0: Absolutely.
1: और शायरी में जहाँ गजलें अपने मुख्तलिफ शेर अलग अलग शेरों में अलग अलग बात कहती हुई चली जाती है, वो कहीं भी हो सकती है। नज्म की खासियत यह है कि ये जब उतरती है तो पहले अक्षर से शुरू होकर अपनी बात मुकम्मल करने तक उतरती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक मेरी एक पसंदीदा नज्म है
0: जी,
1: जिसका अनुवाद मैंने हसरत रखा हुआ है।
0: अरे वाह।
1: मैं आपको और दर्शकों के बीच में रखता हूँ।
0: पक्का पक्का, श्योर।
1: हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे।
0: क्या बात है।
1: ये देखिए एहसास किस तरह से पिरोते हैं एक नज्म के साथ, कैसे बहती है एक
0: फ्लो
1: नज्म है, जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है। हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे, कल मुकद्दर में ना हो मैं न रहूं, दिल के जज्बे जुबा से कहने दे, हाँ तेरी आस में जाने कितने, मैंने लम्हों को जिया सदियों सा, फासला तेरे दरमिया मेरा, फासला जैसे रहा सदियों सा, फासला तेरे दरमिया मेरा, फासला जैसे रहा सदियों सा, कतरा कतरा जो निचोड़ा खुद को, तो यह एहसास बयां कर पाया, देख ले तू जो तेरा जी चाहे, जिंदगी का ये मेरी सरमाया, शर्त वैसे ये नहीं होती, जो तुझे चाहे तू उसे चाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे, मैं जो इस दर्जा चाहता हूँ तुझे, इसके इजहार में हो सकता है, ये जो एहसास है रिफाकत है मेरा, आखिरी आस भी खो सकता है, पर ये उम्मीद के साये भी तो उलझने जीस्त की बढ़ाते हैं, जो महल चुनते हैं रेजा रेजा, और फिर आप ही गिराते हैं, इससे बेहतर तो यही है, ये दिल जान ले बात की हकीकत को, इससे बेहतर तो यही है, ये दिल जान ले बात की हकीकत को, मुतमईन हो ले जो भी होना है, दिल के मिटने को या मोहब्बत को, हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे। तो देखा आपने कि ये रवानी
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप जो है शब्दों को पिरो रहे थे, और मतलब मैं तो कश्मकश में था कि सर ये मतलब कहाँ क्या क्या फ्लो बना रहे, कहाँ मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, और इतनी बढ़िया आपने जो है शुरुआत करी नज्म की, और कहाँ से कहाँ आप ले गए, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, मतलब वो शब्द वाला सीन वही था, मतलब मजा आ गया, मैं पूरी गहराइयों के साथ।
1: आनंद जी, होता यही है कि जो नज्म है वो उतरती है उसका उसका जो लुत्फ है वो यही लुत्फ है,
0: कसम से
1: बहुत अच्छा लगा मुझे। आखिरी मिसरे को जाकर ये मुकम्मल कर दे।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन।
1: मैंने आपके बीच रखी और आपको और श्रोताओं को मुझे यकीन है
0: पसंद आई होगी। बहुत मजेदार लग रही है, और आपके जो शब्द हैं, आपके जो अल्फाज हैं बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, नो डाउट आप इतना अच्छा बोल रहे हैं। और सर देखिए, बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को और मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आप वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
1: जी, प्रोफेशनली मैं ज्वेलर्स परिवार से ताल्लुक रखता हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और बेसिकली मैं रामपुर जनपद के टांडा का निवासी हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: पिछले 2011 से हम लोग यहाँ पर मुरादाबाद शिफ्ट हुए हैं, पीतल नगरी।
0: अरे वाह।
1: और सही कहूँ तो जो मेरी साहित्यिक शुरुआत, साहित्यिक जन्म हुआ वो 2006 से मुरादाबाद से ही प्रारंभ हुआ। दादा महेश्वर तिवारी जी जैसी अजीम नव गीत की जो हस्ताक्षर,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: उनके बीच उनसे मिलना जो हमारे सौभाग्य की बात थी।
0: अरे वाह
1: जी। कृष्ण कुमार नाथ साहब, आदरणीय योगेंद्र वर्मा व्योम जी, मंसूर उस्मानी साहब, इन सब से जब मिलना हुआ, इनको सुनना हुआ, तो इनको सुनते सुनते धीरे धीरे वहीं से वो अनवरत यात्रा शुरू हुई है। तो वर्तमान में मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा।
1: और का तो भी हमारा वर्क है, तो वो चलता रहता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही वर्मा नाम दिमाग में आता है वो ज्वेलर्स तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, नो डाउट। वेल खैर कह सकते हैं कि एक अपना घर का
1: ही वही
0: मतलब एक होता है ना कि आप शुरू से आप चलता आ रहा है एक।
1: जी जी, हमारा दादालाई जो कारोबार है वो यही है,
0: वो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर। और ऐसी खूबसूरत बातें और खूबसूरत जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। आपके मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आरजे आनंद के साथ हैं आप।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आरजे आनंद के साथ और ये स्टेशन है दिल से दिल तक वाला। यस ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। आज स्टूडियो की शाम को और भी खूबसूरत और रंगीन बना रहे हैं अपनी बातों के साथ मनु वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में है एंड अभी मैं भी उनके साथ दे रहा हूँ, ढेर सारी बातचीत उनसे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप एंजॉय कर रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों इतना और कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है, कुछ बढ़िया कला है, आप लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा सुना सकते हैं, आप अच्छी शायरी करते हैं, जो भी आप करते हैं व्हाटएवर, आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा सोशल मीडिया का हैंडल आपको मिलेगा एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, या ऑफिशियली अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो वहां की भी आप डीएम कर सकते हैं अगर आप हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं तो, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपका टैलेंट है, जो आप हमारे साथ परफॉर्म करना चाहते हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर पर आप हमें भेजिए ना अपनी एंट्रीज 9837896896, यानी कि 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर पर आप बिना किसी देरी के फटाफट से जो भी आप बढ़िया करते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तो ये सबके लिए खुल चुका है। बिल्कुल आप हमें पहुंचाइए अपने प्यारा सा एक मैसेज अपने टैलेंट के साथ, उसके बाद हम आपसे खुद ही कनेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अभी मनु जी से हमने ढेर सारी शेर व शायरी तो सुन ली है, नज्म हमने सुन ली है, अब बारी है एक ऐसी चीज की जो शेर व शायरी से भी परे है। अच्छा सर, शेर व शायरी से मुझे याद आया, शेर व शायरी से हम प्यार मोहब्बत इश्क हर चीज की बातें करते हैं शेर व शायरी के माध्यम से, लेकिन अगर हमें कोई सामाजिक मैसेज डिलीवर करना हो, हमें कोई सोशल मैसेज देना हो या आम जनता के हित की बात करनी हो, तो क्या ये भी शेर व शायरी और गजलों के माध्यम से हो सकती है क्या?
1: हम गजल के माध्यम से, शेर के माध्यम से क्या नहीं कह सकते,
0: मतलब वही मैं आपसे जानना, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होती है बहुत सारी चीजें।
1: काव्य की यही खूबसूरती है।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि मेरा जो कविता में भी
0: जी
1: और गजल में भी मैं दोनों को पसंद करता हूँ।
0: क्या बात,
1: और दोनों का मैं विद्यार्थी हूँ।
0: वेरी नाइस।
1: तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुरातन समय में जो हम वेदों की बात करते हैं, ऋचाओं की बात करते हैं, जो अनुष्टुप छंद में आपने देखा होगा
0: जी,
1: ये काव्य चीज यही है जो हर तरीके का संदेश देता है।
0: क्या बात,
1: हर तरह का संदेश देता है, और इसमें सारी की सारी जो जानकारियां हैं
0: जी,
1: जो हमारे हित के लिए हैं, जो सामाजिक हित के लिए हो सकती हैं, इवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा, राष्ट्र पर, देश पर, विश्व पर, और अपने अंदर के मन पर, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण पर भी, यही चीज आगे बढ़ी है। बस भाषाओं का फेर है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा सर आपने, भाषाओं का,
1: उर्दू से ली गई है,
0: बिल्कुल
1: फारसी से ली गई है, और काव्य का क्षेत्र हमारे सनातन से
0: जी
1: जुड़ा हुआ है, कविता क्षेत्र वही है। मैं आपको दो वानगी इसकी दूंगा।
0: जरूर सर।
1: एक रचना के माध्यम से।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: ये हिंदी रचना है
0: जी।
1: आप देखें किस तरह का संदेश कैसे देती है, एक सामाजिक संदेश, और वर्तमान में ये बहुत आवश्यक है। बच्चे जिनका अपना एक अलग आइडियोलॉजी है, ये क्या सोचते हैं, जो वर्तमान में हमारा पार का ध्रुवीकरण हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली हमारी हो गई है, ऐसी कंडीशन में ये रहता है कि एक बच्चा या दो बीबी, इस तरीके की कंडीशन हो गई है, तो एक बच्चा क्या सोचता है, ये संदेश बच्चे के माध्यम से बड़े को पहुंच रहा है।
0: क्या बात है,
1: हम उस चीज को देखें, सोचें, महसूस करें
0: जी
1: और कोशिश करें कि हम कैसे बदल सकते हैं। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, ये एक बच्चे की तकलीफ है जो रचना प्रस्तुत कर रही है। हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, अलग पले दादा दादी का साथ न मिल पाया, चाचा चाची बुआ सभी का मेहमानी साया, एक अकेली आया है बस रिश्ते नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, रंग बिरंगे फूल तितलियां सब मॉनिटर पर, आभासी दुनिया में जीते हम ऐसे अवसर, रंग बिरंगे फूल तितलियां सब मॉनिटर पर, आभासी दुनिया में जीते हम ऐसे अवसर, धूप सुनहरी क्या वो घर वो अंगने नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
0: क्या बात है,
1: भेंट चढ़ गई प्रदूषण की होली दिवाली, भेंट चढ़ गई प्रदूषण की होली दिवाली, क्या खुशियां त्योहारी सब लगता खाली खाली,
0: क्या बात है,
1: वो त्योहारी रंग बिरंगे सपने नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
0: क्या
1: देखें, लगे हमारे बचपन में अब सुर्खावों के पर, अकेला बच्चा रह गया है, सारी की सारी इंटेंशंस उस पर आ गई और इतना सोफिस्टिकेटेड उसे बना दिया गया
0: जी,
1: उसके बचपन का क्या होना है, ये उसका अधिकार सारा छीन लिया गया है। आप देखें, हालांकि हम महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चे को इतनी सहूलियतें, इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है
0: जी,
1: लगे हमारे बचपन में अब सुर्खाबों के पर, केवल शिष्टाचार ओढ़ जीना होता अक्सर। लगे हमारे बचपन में अब सुर्खाबों के पर, केवल शिष्टाचार ओढ़ जीना होता अक्सर। बचपन से बतियाते दो पल सच्चे नहीं रहे, बचपन से बतियाते दो पल सच्चे नहीं रहे, हम बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे।
0: क्या बात है।
1: तो ये रचना
0: बहुत ही बढ़िया,
1: क्या कहती है, एक बचपन क्या कहना चाहता है, उसकी अपनी क्या मंशा है,
0: एक मैसेज भी है इसमें। एक सोशली आपने बहुत अच्छी, मतलब कहना की अवेयरनेस भी पहुंची है, और जो आपने एक बचपन की बात करके हमें फ्लैशबैक में पहुंचा दिया, उसकी
1: बात देख रहा था कि आप थोड़ा सोच दिए।
0: नहीं सच में, इसीलिए ना सर, मतलब एक अपना, एक तो बचपन जब शब्द आता है तो हम रिलेट करने लगते हैं तुरंत, हम अपने उस टाइम में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बचपन एक इतनी खूबसूरत चीज है कि हर जवान आदमी सोचता है कि आज एक बार फिर से बचपन आ जाता, हाँ फिर से बच्चा बन जाता। तो वो चीज है
1: जो संभव नहीं
0: है, जो संभव नहीं है बिल्कुल। लेकिन कहते हैं इंसान को अपने अंदर का बचपना कभी नहीं मारना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उसकी कुछ हरकतें, उसकी कुछ शरारतें होती हैं जो उसको बचपन में ले जाती हैं, उसकी आदतें ऐसी फील कराती हैं सामने वालों की कितना बचपन है इसके अंदर।
1: सही कहा, बिल्कुल सही कहा आनंद जी आपने। दरअसल क्या है कि हमारी जिम्मेदारियों के साथ हमें एक सीरियसनेस होनी चाहिए,
0: होनी चाहिए।
1: लेकिन मैं समझता हूँ जो आपने कहा अभी कि अपना बचपन नहीं भूलना चाहिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बचपन जो नहीं भूलता है वही अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखता है।
0: करेक्ट, ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट।
1: आपने बहुत बढ़िया बात कही है,
0: शुक्रिया सर।
1: आप भी बचपन में पहुंच गए थे
0: बिल्कुल, और मुझे बहुत आनंद आया,
1: सार्थकता के महसूस हुई,
0: मुझे बहुत आनंद आया। थैंक यू वेरी मच, आपने ये खूबसूरत बात, ये जो कुछ पंक्तियां थी ना, ये एक्चुअल में वो रियलिटी से हमें रूबरू करा रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। और मनु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने निकाला। लेकिन मैं चाहूंगा कि जाने से पहले, इजाजत लेने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम म्यूजिक वाला, क्योंकि गीत संगीत भी जरूरी है सर बातचीत के साथ, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो एक छोटा सा गीत, उसके बाद जो है लौट कर आते हैं मनु जी के पास और उनसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाने से पहले उनसे कुछ बेहतरीन भी सुनेंगे। तो सर एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं, ठीक है सर। चलिए दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: दोस्तों वेलकम बैक है और ये महफिल सच रही थी आज कुछ खास शब्दों से, कुछ खास शेरो शायरी से और कुछ खास ऐसी बातों से जो शायद आपको आज सुन के आनंद आ गया होगा। आनंद के साथ और साथ में मनु जी भी स्टूडियो में उपस्थित हैं आज की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए। आई होप सर आपको भी अच्छा लगा हो हमारे स्टेशन में आके।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वास्तव में हम यहाँ पर दो हैं लेकिन तीन है, एक मैं आनंद और एक आनंद।
0: क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला आपने। और मतलब ये जो संवाद है, जो कॉन्वर्सेशन है, ये कैसे, मतलब इतना टाइम हम लोगों का निकल गया, हमें पता भी नहीं चल रहा है, मतलब हाउ इंटरेस्टिंग, कैसे जा रहा है मुझे भी नहीं पता। सर वो ये ना, जब दिल से आप काम करते हो तो मजा आता है, अरे यार ये बोरिंग लग रहा है, चलो कब खत्म होगा, कब भागेंगे, वो फीलिंग नहीं इसमें, लगता और करो और ज्यादा करना है, वो है, बस वो भूख बढ़ती रहती है फिर। चलिए सर, अब जो है हमारा जाने का समय हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे लिसनर्स को आप क्या सुनाना चाहेंगे, क्या कुछ खास उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे जाते जाते, क्या छोड़ के जा रहे हैं अपनी स्पेशल छाप।
1: जी आनंद जी, अभी पीछे जो बात चली थी कि रचना, कविता, शायरी क्या सामाजिक संदेश भी देती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसके परिपेक्ष में कि हिंदी की रचना हुई थी
0: जी,
1: दो चार मिसरे, दो चार शेर आप उर्दू के गजल के सुने। जमी पे पाँव फलक पे निगाह याद रहे,
0: क्या बात है,
1: जमी पे पाँव फलक पे निगाह याद रहे, मियाँ बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रहे, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रहे, करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो,
0: क्या बात है,
1: करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, मगर गुनाह से तौबा गुनाह याद रहे, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे। देखिए पहले बुजुर्ग ही सलाह देते थे, मशवरे देते थे, और रहम पसंद बनो, ये पसंद है उसकी, ये ईश्वर के लिए है कि रहम पसंद बनो, ये पसंद है उसकी, मुआफियों में है रब की पनाह याद रहे, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रहे, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रहे, जमी पे पांव फलक पे निगाह याद रहे,
0: क्या बात है,
1: मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रहे।
0: nice.
1: और चलते चलते
0: जी जी,
1: मैं अपने सुधी दर्शकों श्रोताओं के लिए, आपके एफएम के इन श्रोताओं के लिए जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दो शेर रखता हूँ और उसके बाद इजाजत।
0: बिल्कुल सर, श्योर।
1: मेरी सच्चाई मेरा एतबार सुनता है,
0: वाह,
1: मेरी सच्चाई मेरा एतबार सुनता है, मेरी खामोशियां ठहराव गार सुनता है,
0: क्या बात है,
1: और बराए हुस्ने समात गजल के मिस्रों को उठा के हाथ उन्हें बार बार सुनता है। और ये हमारे समाइन के लिए, ये श्रोताओं के लिए कि ये तरीका है मेरी हौसला अफजाई का,
0: क्या बात,
1: ये तरीका है मेरी हौसला अफजाई का, बड़े अदब में वो करके शुमार सुनता है,
0: क्या बात है,
1: बड़ी अदब में वो करके शुमार सुनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी।
0: सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके साथ जो है हमने भी एक जो स्पेशल ये कन्वर्सेशन की, ये जो एक शो था, ये शो था, ये एक बेसिकली मेमोरी थी,
1: क्या बात है,
0: है ना, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो काम तो होता ही लेकिन एक याद भी हम बना लेते हैं,
1: ये मोहब्बत है आपकी, मुझे ताउम्र याद रहे।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको ऐसे ही परेशान करने के लिए बुलाते रहेंगे,
1: क्या बात है, मेरी खुश नसीबी है,
0: अरे बिल्कुल,
1: जब भी आप याद करेंगे जरूर, आप... नहीं सर के बल दौड़े हुए आएंगे।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे तो हम मुलाकात जो है करते रहते हैं नो डाउट, लेकिन जब लिसनर के साथ मुलाकात होती है तो उसका जो मतलब एक माहौल है वो अलग ही हो जाता है।
1: जी बेशक,
0: है ना, तो सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप आए, और दोस्तों आप कहीं मत जाइए, ऐसे इंटरेस्टिंग शोज के लिए, इंटरेस्टिंग बातों के लिए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए ट्यून इन रहिए आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जो कहता है भैया कनेक्शन जो है ना आपका और हमारा वो दिल से दिल तक का है। जल्दी मिलेंगे फिर कुछ और नए कलाकारों के साथ, कुछ और नई बातों के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है, और हाँ ढेर सारा पानी पीना भी जरूरी है क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा है,
1: बिल्कुल सही
0: है ना,
1: ये संदेश रेगुलर रहना चाहिए,
0: एब्सोल्युटली। तो बाकी दोस्तों चलिए अभी हम चलते हैं, तो अब जो है समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा, एक खूबसूरत नगमा आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए, और बाकी ऐसे ही प्लीज कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: अगर

0: माना वो हर किसी से कम बोलती थी। माना वो हर किसी से कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो दो और को हम बोलती थी।
1: हेलो जी, कैसे हालचाल है? मेरा नाम आरजे आनंद है। इस वक्त आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम को अमेजिंग बनाने के लिए हमारे साथ एक बड़ा ही फॉन्ट न्यूज बंदा स्टूडियो में है। एंड जब ये स्टूडियो आने वाले थे तो इनके आने से पहले मेरे को एक ऐसा थॉट आ रहा था कि कोई बड़ा सा बंदा आएगा, बहुत बड़ा सा होगा, भारी भरकम टाइप का, यू नो, एकदम से कुछ बड़ी बड़ी किताबें लाएगा। लेकिन जब मैं इनसे मिला तो ये तो बिल्कुल मेरी सेम एज का, मतलब मेरी ग्रुप का बंदा, मेरी एज का बंदा, बिल्कुल मेरी तरह है, एकदम फिट एंड फाइन, एकदम बढ़िया सा। सो हे, हाउ आर यू, कैसे हालचाल है ब्रो? अब जरा इनसे आपको तारुफ कराते हैं और आज ये क्या लेकर आए हैं ये मैं नहीं यही बताएंगे, आज आपको ये क्या स्पेशल सुनवाने वाले हैं। आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन में ना आपको बहुत मजा आने वाला है एंड आप बहुत सारा इंजॉय करने वाले हो। सो सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे आज के अमेजिंग गेस्ट का, जिनका नाम है हर्ष। हर्ष जी, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप जैन साहब?
0: बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया हूँ। एंड I also looking forward for this great conversation, right? मैं भी expect करूंगा कि जो सामने वाला सुन रहा है उसको भी fun आए and they are gonna enjoy it.
1: Absolutely.
0: Here with a lot of one-liners and a very good story to tell you about the startups and yes.
1: क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, इतनी बढ़िया बातें आप कर रहे हो तो ये कहीं सोच साच के आए हो या बस अपना शुरू से चलता आ रहा है ऐसा कुछ?
0: नहीं, इट इज वेरी मच स्पॉन्टेनियस। लाइक मैं जब आया था तो मैं बस यही सोच के आया था कि ठीक है, जाएंगे, जो कॉन्वर्जेशन होगी उसमें जो मेरा POV होगा हम वो रखेंगे एंड वील बिल्ड द कॉन्वर्जेशन देन एंड देयर ओनली।
1: वेरी नाइस यार, मतलब ये बंदा मुझे लगता है कि फुल ऑन तैयारी से आया कि भैया लिख के कुछ नहीं जाएंगे, जो रैंडम होगा उसको रैंडम ही उसका आंसर्स करेंगे, राइट? क्रिएटिविटी के साथ।
0: यस,
1: दैट्स वेरी ग्रेट। थोड़ा सा अपने बारे में हर्ष बताओ, मुरादा बाद में आप कहां से हो, क्या करते हो?
0: सो मैं मधुबनी कॉलोनी में रहता हूं एंड वी हैव अ फैमिली बिजनेस। वी हैव टू शॉप्स नेम्ड जेनसंस एंड वल्लभ गारमेंट्स। एंड मैं 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई वर्क्ड इन अ स्टार्टअप फॉर 6 मंथ्स।

0: wherein I paid rupees 20,000 to them to work and got nothing out of then in Stumper my allegations aa gaye. That is a very good story, I'll tell you in the conversation. And after that I worked in my brother's company and now I'm working with in my family business, and side by side I'm doing this comedy part and content creation.
1: All right, that's great. अच्छा ये स्टोरी तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा भाई, क्योंकि मुझे लगता है कुछ कुछ स्टोरीज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ना एक मोटिवेशन का काम करते हैं, यू नो कई बारी वो हमें बहुत सारी चीजों से बचा भी लेते हैं.
0: यू
1: गेटिंग माई पॉइंट? सो उस पर डेफिनेटली बात करेंगे अभी हर्ष से. लेकिन हर्ष अभी तुम यहाँ पे आए हो तो ऑफकोर्स ये जो कॉन्वर्सेशन है बेसिकली इट्स नॉट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. यहाँ पे हम कुछ जोक्स करते हैं, कुछ शेयर करते हैं. ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो सकता है जो आपको यू नो अच्छा है आपके अंदर है, आपके टैलेंट की कुछ अलग पहचान हो, बिकॉज यहाँ पे वही लोग आते हैं क्योंकि स्तुरम खा होते हैं और आई एम श्योर आप भी वो हो, इसलिए आप यहाँ पे आए हो. तो वैसे आप अपने अगर पर्सनल की मैं बात करूँ तो तुम कौन सा तुम्हारा जोनर है, क्या तुम करते हो बेसिकली, मतलब शेरो शायरी पोएट्री या जो कॉमेडी, क्या क्या मतलब आप करते हो?
0: मैं कॉमेडी करता हूँ, वन लाइनर्स मेरा एक वो है कि हाँ कोर है, ठीक है. एंड इंस्टेड मैं राइट आई राइट सेट्स, मैंने कई बार परफॉर्म भी करा है ओपन माइक्स में, मैंने शोज भी करे हैं अपने पर्सनल, ठीक है. दोज वर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बट यस दे वर गुड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो इन टू शेरो शायरी, आई राइट अ फ्यू शेरो शायरीज एंड दैट्स इट.
1: अच्छा कहीं ओपन माइक वगैरह करते हो कुछ ऐसा?
0: या आई हैव डन मल्टीपल ओपन माइक्स.
1: दैट्स ग्रेट. अच्छा तो हर्ष के साथ ना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होगी. लेडीज एंड जेंटलमैन डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक. एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे फिर हर्ष के साथ जो एक कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे. और ये क्या आज आपको सुनाने वाला है, कैसे आपको हंसाने वाला है, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आज हर्ष का होने वाला है, नॉट मी. हाँ मैं सपोर्ट में रहूंगा बट सारी कॉन्वर्सेशन को हर्ष हैंडल करेंगे. सो अभी मिलते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक.

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। आप आनंद के साथ हैं ऑफ कोर्स एंड आई हैव विद मी हर्ष जैन। हाय हर्ष, वेलकम बैक यू वंस अगेन ब्रो। आपको बोरिंगनेस फील तो नहीं हो रही ना? एकदम बोरिंग शोरिंग तो नहीं लग रहा ना आपको? यहाँ पे
1: बिल्कुल भी नहीं
0: होना भी नहीं चाहिए यार, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है यार। यहाँ पे हमें फन करना है, एंजॉय करना है, ढेर सारे गाने हैं, म्यूजिक है, मस्ती है, तो मुझे लगता नहीं है कि यार आपको एंजॉय करने में मजा नहीं आ रहा होगा। टेल मी,
1: इट्स गोइंग गुड एंड होपिंग फॉर ग्रेट अहेड।
0: या श्योर। अच्छा तो हर्ष अभी कुछ सुना दो यार। मैं चाह रहा हूँ यार, आजकल ना धोखे शोके बड़े मिल रहे हैं, चाहे वो प्यार श्यार में हो या इंस्टाग्राम पे एवं किसी फ्रेंड के साथ हो, तो आजकल ये धोखाधड़ी वाला सीन बहुत ज्यादा हो रहा है यार। तो इस पे कुछ है तुम्हारे पास कोई बढ़िया सी पोएट्री या कोई शायरी?
1: बिल्कुल है। सो आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी, राइट? मैं जब कॉलेज गया था ना, सो आई एम सिंगल फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। मैं स्कूल में भी सिंगल था, मैं आज तक की डेट में सिंगल हूँ। बट
0: मैं तो अखंड सिंगल हूँ भाई।
1: Same goes with me. एंड मीनवाइल ना, मुझे एकदम जैसे हमारे ग्रुप में सब लोग रिलेशनशिप्स में आ गए थे, तो मुझे भी लगा था रिलेशनशिप में आना चाहिए। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स, एंड यू विल बी लाफिंग लिसनिंग टू दिस, मेरे को 6 अटेम्प्ट्स लगे गर्लफ्रेंड बनाने में।
0: Oh my God,
1: right?
0: Really?
1: मैं तब ये सोच रहा था 5 में सीए हो जाती है कम्प्लीट और मैं 6 में गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, इससे अच्छा मैं बीबीए क्यों कर रहा हूँ, फिर मैं सीए कर लेता यार, दैट वुड हैव बीन अ लॉट इजी।
0: ट्रू ट्रू।
1: एंड उसने भी ना धोखा दे दिया, वो पता नहीं किसी और के साथ चीटिंग वगैरह कर रही थी एंड स्टफ। तो हम लोग का लगभग 7-8 दिन के बाद वो रिवील हो गया, ठीक है। तो फिर जब भी कोई प्यार मोहब्बत तैयारी करता है ना, तो मैं उसको 2 लाइन अपनी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़का धोखा दे जाता है। आई एम नॉट, इट इट्स वेरी जेंडर न्यूट्रल, बट मैं इसमें कहना चाहूंगा, मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि माना वो हर किसी से कम बोलती थी, माना वो हर किसी से कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो 2 और को हम बोलती थी।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: उसने इतना ऐसा धोखा दिया ना कि दीस लाइंस हैव स्टेड विद मी फ्रॉम देन एंड ऑनवर्ड्स।
0: ऑलराइट, बट प्लीज यू कैन रिपीट दिस लाइन, मैं दोबारा से इसको सुनना चाहता हूँ।
1: तो लाइन ऐसी थी, माना वो हर किसी से कम बोलती थी,
0: माना वो हर किसी से
1: कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला
0: वो दो
1: और को हम बोलती थी।
0: दो और को भी हम बोलती थी। वाह वाह वाह वाह। इस स्टोरी का, इस लाइन का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो?
1: सी, बहुत लोग कहते हैं ना कि यार जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो वो दूसरे लोगों से कम बात करता है, वो आपसे ज्यादा अटैच होता है। मैंने भी मान लिया, मेरी वाली भी दूसरों से कम बोलती थी इन फ्रंट ऑफ मी, और जैसे ही मैंने उसका हाथ छूटा ना, सो व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप यू डोंट कॉल आई, यू कॉल हम, राइट? हम अपनी बात नहीं करते ना, मेरी, हम कहते हैं हमारी, राइट? तो वो भी जब हाथ छूटा तब पता चलता था वो खाली मुझे नहीं, वो 2 और लोगों को हम बोलती थी।
0: ऑलराइट,
1: सो दैट इज हाउ इट वेंट।
0: ऑलराइट, मतलब अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पिक्चर की बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। एंड आई डोंट थिंक, यार मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें ना बहुत सारे लोगों के साथ होती है, नॉट यू नॉट मी, एंड बहुत सारे ऐसे लोग जब स्कूल्स में जाते हैं, जहाँ कॉलेजेस में जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार अब हमारी लाइफ में सब कुछ मिल गया है हमें।
1: Yeah.
0: जब उस पहले इंसान को देखते हैं और हमारे अंदर दिल के अंदर तोते तोते वाले तार बजते हैं, तो हमें लगता है बस यही सब कुछ हमारा, एवरीथिंग इज मी फॉर मी, मेरे लिए वो है ना। बट बाद में पता चलता है कि नहीं भाई,
1: वो किसी और के लिए भी है।
0: हम गलत फहमी में है।
1: डेफिनेटली,
0: बिल्कुल।
1: So, ये तो बहुत होता है, एंड आई हैव सीन दैट सो मेनी टाइम्स। जब मेरा फिर ब्रेकअप हुआ तो फिर सब मेरे पूरा,
0: मतलब इस लड़के का ब्रेकअप भी हो गया भाई, आप सोच रहे हो ये कैसे?
1: दैट वाज इवन लेस देन अ सब्सक्रिप्शन पैकेज। मेरा सब्सक्रिप्शन आपको ले जाओ, ट्रायल भी आजकल 10 दिन का होता है, मेरा रिलेशनशिप 7 दिन का था।
0: आई कांट बिलीव दिस कि भैया आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, सोचिए। हम अभी भी अखंड सिंगल है,
1: मेरा ट्रायल पैक खत्म होने से पहले ब्रेकअप हो गया।
0: ओ भाई साहब, मतलब तुम्हारा थोड़ा तगड़ा वाला था आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। सी, अच्छा यू नो हर्ष, ऐसे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, हम लोग उनसे बात भी करते हैं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कुछ ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में पहला प्यार होता है, तो आपको कैसे पता लगा कि आपका ये यू नो फर्स्ट टाइम वाला है? यू नो
1: फर्स्ट टाइम वाला भी द सिचुएशन वाज समथिंग लाइक कि उसने मुझे सामने से प्रपोज किया था। देन
0: कितने साल के थे जब तुम्हें ये प्रपोजल वाले यू नो पिक्चर्स और ये आने लगे?
1: मेरे को आज तक नहीं आया,
0: सिग्निफिकेशन आया तुम्हें कोई ऐसा?
1: नहीं, मुझे आज तक बस एक ही लड़की ने अप्रोच करा है, मैंने उसको हाँ बोल दिया था, एंड वो 7 दिन बाद उसने धोखा दे दिया। मेरे को लगता है शायद इसीलिए धोखा दे दिया।
0: अच्छा, तुम इस बात को मानते हो यू नो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है?
1: डेफिनेटली यस।
0: अगर सपोज दैट वो 7 दिन के बाद ना देके 7 सालों बाद देगी तो सब ज्यादा दुख होता है,
1: तो ज्यादा दुख होता
0: है ना। 7 दिन में दे दिया तो एटलीस्ट रियलिटी पता लग गई। एंड आई थिंक अगर हम अभी भी सिंगल है तो अपनी लाइफ में हम बहुत हैप्पी है।
1: डेफिनेटली,
0: यू नो सेटिस्फाई अपनी लाइफ से कि ठीक है यार सिंगल है, बट आई थिंक हैप्पी है।
1: मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए।
0: Absolutely, और जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, इसे चक्कर में फिर अब जो है ना बेवकूफ बनते रहते हैं
1: कई
0: बार। सो गाइज, आपको वो चीज नहीं करनी है, एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो भैया पहले रिसर्च करो, उसके बाद ही जो है किसी की तरफ आप हाथ बढ़ाओ। वेल आगे बढ़ते हैं, हम एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6।

0: रिसेंटली एक रिसर्च हुआ था और उसमें ना एक फैक्ट चेक किया था, तो रियलिटी चेक में पता लगा कि जिनकी बड़ी हाइट होती है ना, उनकी रात को सोने से पहले हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड जब मैंने ये रिसर्च किया तो मुझे लगा नहीं यार, ये तो मुझे खुद पे अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही मैं इस पे यू नो ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो आज रात को मैं अपनी हाइट सोने से पहले जरूर नापूंगा, बट उसके लिए फिर मुझे सुबह में भी नापनी पड़ेगी ना यार, तो वो कल वो प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा। बट उससे पहले मैं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन भी है और एक रिसर्च भी है, तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि अभी हाइट के ऊपर कुछ सुनने वाला हूँ मैं हर्ष से, तो मुझे लगा पहले आपको ही काम की बात बताता हूँ। हर्ष, आपको पता है ऐसा कुछ फैक्ट और रिसर्च?
1: यार हाइट से तो मैंने बात करना छोड़ दिया, बिकॉज हाइट इज द ट्रॉमा फॉर मी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा रिसेंट ब्रेकअप हुआ, मतलब रिसेंट क्या, मेरा इकलौता रिलेशनशिप ब्रेकअप ट्रायल ब्रेकअप
0: सब कुछ एक ही था,
1: वो सब कुछ एक ही था। और वो भी जो हुआ ना, उसका कोर रीजन जो था, कोर रीजन भी ये था कि उसने स्टार्टिंग में ऐसा बोला कि इंटेलेक्ट बहुत कम है तुम्हारा, तुम ना बातें अच्छी नहीं करते, तुम ना ठीक से नहीं रहते, एंड ऑल एंड ऑल। तो मैंने कहा यार ये सब तो पहले भी था, सो यू स्टार्टेड लाइकिंग मी फर्स्ट, है ना, तो ये सब तो पहले से था। सो देन शी सेड यार अब क्या रीजन लाऊं, तुम्हारी ना हाइट मुझसे कम है।
0: ओह माय गॉड,
1: एंड दैट हिट मी सो हार्ड, सो फकिंग हार्ड, कि मैं सोच रहा हूँ यार ये तो गलत हो गया। एंड देन एंड ऑनवर्ड्स मैंने फिर हाइट पे बात करना ही छोड़ दिया, मैं कहता हूँ ठीक है आपकी हाइट मेरी हाइट मेरी हाइट।
0: एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है कि इसमें तो जजमेंट होना भी नहीं चाहिए यार।
1: डेफिनेटली
0: आई थिंक ये तो हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं यार।
1: हाँ,
0: है ना, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो ऊपर वाला डिसाइड करके
1: भेजता है
0: ना,
1: तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
0: आप अपनी हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी थोड़ी ऊंची ऊंची हील्स पहन के जाओगे, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं आपको यार,
1: वो बिना हील्स के मुझसे बहुत ऊंची थी।
0: अरे यार, तो फिर उसमें फिर आपको प्रॉब्लम, यू नो, आपने सोचने का और अपने फैसले में थोड़ी जल्द बात कर ली आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है। गाइस आप क्या कहते हो, आप जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। वेल टेल अस, इसके ऊपर तुम कुछ सुनाने वाले, सो आई थिंक मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, आई एम श्योर।
1: मैं आपको एक वन लाइनर से, एक दो वन लाइनर से शुरू करते
0: हैं। डेफिनेटली श्योर।
1: नेम एन एक्ट्रेस, आनंद भाई आप मेरे को एक एक्ट्रेस का नाम बताओ जिनको कोई रास्ता नहीं मालूम होता।
0: यार सच बताऊं तो मुझे खुद को ही रास्ते नहीं मालूम होते, क्योंकि मैं मुरादाबाद में खुद नया हूँ, तो तुम एक्ट्रेस की बात पूछ रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है यार।
1: कोई एक्ट्रेस, एक रैंडम गैस के उन्हें आप कभी पूछ लो कि ये रास्ता कौन सा, उन्हें कोई नहीं पता होगा।
0: ओके, सी आई थिंक अनन्या पांडे, उसको सब्जियों के नाम नहीं पता, तो उसको रस्तों के नाम कहां से पता होंगे।
1: अनन्या पांडे को पता हो सकता है, बट देयर इज दिस वन एक्ट्रेस नेम्ड दिशा पता नहीं,
0: दिशा पता नहीं, ओ
1: सो शी मस्ट नॉट बी नोइंग ऑल द रूट्स।
0: दिशा पता नहीं, ओ भाई कहां दिमाग लगा रहा है, क्या बात है यार, अल्टीमेट यार अल्टीमेट। अच्छा, और ऐसा तुम्हें दिमाग में क्यों आया, यू नो ये वाला?
1: सो देयर वाज दिस वन पिक्चर दे वर प्रमोटिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम,
0: वेलकम टू द जंगल।
1: हां, वेलकम टू द जंगल। सो मैंने उनको देखा, एंड जैसे ही मैंने उनको देखा ना, बिकॉज दे केम टू टॉयर, तो मैंने वहां जैसे ही उनको देखा ना, रियलाइज यार ये तो बहुत अच्छा जोक निकल के आ सकता है यहाँ से। सो दैट इज हाउ आई डिड
0: इट। आप गए थे वहां पे?
1: नहीं।
0: अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे देखा?
1: ऑन सोशल मीडिया।
0: ऑलराइट डन। सो यार लेकिन ये बड़ा अल्टीमेट था, मतलब इतना स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है बंदा, कि किसी एक्ट्रेस के नाम से तो मैंने और आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, उसने तुरंत उसका दिशा पाटनी का दिशा क्या है?
1: पता नहीं
0: बताओ यार। अच्छा, और भी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऊपर आप ऐसे करते हो या फिर कभी किया ट्राई?
1: लेट्स मूव ऑन फ्रॉम सेलिब्रिटीज टू फ्रूट्स, ओके?
0: हाँ, टेल अस,
1: कौन सा फ्रूट कहता है कि जी मैं सबसे खड़ूस हूँ, मैं एकदम बिल्कुल
0: यार, सच में मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इस मामले में बहुत खराब है, मैं बहुत ही, मेरी मतलब बहुत ही गंदी वाली आदत है कि मैं इन चीजों में थोड़ा कम रिसर्च रखता हूँ, बट अब आप ही मुझे सजेशन दो यार।
1: ओके, एनी रैंडम गेस,
0: जो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा
1: खड़ूस हूँ, अड़ियल हूँ, और मैं मतलब गुस्सेल रहता हूँ थोड़ा सा, ऐसा
0: ऐसा कौन सा फ्रूट हो सकता है? गाइस सीरियसली आई हैव नो आइडिया, मैं किसको बोलूँ, सारे फ्रूट्स तो इतने सॉफ्ट और इतने प्यारे से होते हैं।
1: Shall I tell you the name? Yes.
0: तू बताए।
1: It's guava.
0: Guava.
1: I'll tell you, ask me why so guava.
0: यार मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या क्या चूज करूँ, किसको क्या बोलू, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, तू बोल दे यार अपना जो।
1: बिकॉज गुआवा सेज अमरूद,
0: ठीक है? ओ गुआवा इज,
1: गुआवा इन हिंदी इज अमरूद,
0: अमरूद अमरूद
1: अमरूद,
0: हाँ हाँ,
1: सो दैट इज व्हाई इट्स एरोगेंट एंड सो।
0: ओके,
1: अमरूद,
0: समझ गया अमरूद, मतलब इसने अमरूद को कर दिया आई एम रूट। ये मुझे लग रहा है कि जापान से तो नहीं आया गाइस, ये मतलब सारे फ्रूट्स को उल्टे से सीधे और सीधे से उल्टे लेके जा रहा है भाई, ये करने के कितने पैसे मिलते हैं आपको?
1: अभी तो मैं पैसे देता हूं,
0: या फिर क्रिएटिविटी कर रहे हो अभी?
1: जस्ट राइटिंग,
0: तुम कहीं पे कुछ ज्वाइन वाइन किए हो क्या, ऐसे कॉमेडी डार्क कॉमेडी क्लास आप कर रहे हो?
1: जस्ट माई फेवरेट कॉमेडियंस मधुर वेल्ली, कविराज एंड रवि गुप्ता।
0: अच्छा, तो आप इनको देखते हो? अच्छा, मतलब यू नो
1: टू मच, आई जस्ट लव देम,
0: वेरी नाइस। तो गाइस ये जो कॉन्वर्सेशन है इसको हम इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे, ऐसे ही हर्ष के साथ ढेर सारी बातचीत हो रही है और होती रहेगी। फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हर्ष से भी हम इजाजत लेंगे, एंड आई एम श्योर आपको भी मजा आ रहा होगा। अगर आपके पास भी ऐसे अल्टीमेट टैलेंट है तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलता है ऑफिशियल आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेडियो वाला आनंद के नाम से आपको मिल जाता हूं। अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे आप डीएम कर सकते हैं अपना नाम और अपना टैलेंट, हो सकता है अगला नंबर आपका हो यार। फिलहाल एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक।

0: हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद और आज की शाम हम हर्ष के साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। आई हैव विद मी हर्ष। हर्ष, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है तुम तो इंग्लिश मीडियम वाले हो भाई, तो ये हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश मीडियम वालों की आज वैसे अच्छी खासी जम रही है। वेल, मैं सच बताऊं तो मेरी बहुत कम बनती है यार, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं इंग्लिश में ही पाता हूं यार। इंग्लिश से मेरे को बड़ा डर लगता है, मैं बहुत भागता हूं। अच्छा, क्या डिफरेंस है इंग्लिश मीडियम वालों में ऐसा?
1: यार आई बिलीव ना कोई डिफरेंस है नहीं।
0: वेल, हम लोगों ने क्या इसको बना दिया है?
1: ये हम लोगों ने बना दिया है, और वरना इसमें कोई मतलब डिफरेंस है नहीं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आई विल टेल यू। मेरी मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, आई वोंट बी टेलिंग द नेम, ठीक है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारे स्कूल की जो इंग्लिश की टीचर्स थी वो भी हिंदी के लिए एक दवा देती थी।
0: ओ भाई साहब,
1: तो सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी मेरी क्यों बन पा रही है।
0: आई हैव नो आइडिया, बट जो भी बन रही है अच्छी बन रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम सुपर हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय द वे यार, तुम्हारे पास कुछ है जाते जाते जो तुम थोड़ी सी रो?
1: सो जाते बिकॉज ओके, सो देयर इज दिस वन सैड स्टोरी। वेल, आई डिड वांटेड टू एंड इट ऑन अ सैड नोट, बट आई रिसेंटली लॉस्ट अ वेरी लव्ड वन ऑफ माइन, माय ताऊजी, एंड ही वॉज अ वेरी प्योर सोल, एंड वो मुझसे हमेशा ये कहते थे कि यार तू हंसी मजाक ज्यादा करता है, थोड़ा काम पे भी ध्यान दिया कर। एंड नाउ आई वॉन्टेड टू टेल हिम कि मैं ये हंसी मजाक को अपना काम बनाने की तरफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हेन वी हैव लॉस्ट हिम, सो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड इफ एनीबॉडी देयर हैज लॉस्ट देयर लव्ड वन, ठीक है, तो उनके दिमाग में भी क्वेश्चंस आते होंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं वो तीन चार दिन जो होते हैं ना फ्यूनरल के बाद के सबके। तो मैंने उसके लिए बस एक छह लाइनें लिखी थी जो मैं पूछना चाहता हूँ भगवान से। ठीक है, तो ये लाइनें कुछ ऐसी है, मैं सुना
0: डेफिनेटली,
1: तो लाइनें कुछ ऐसी है कि हे भगवान, सुना है आप अच्छे दिल वालों को दी बुला लेते हो, हे भगवान सुना है आप अच्छे और साफ दिल वालों को
0: जल्दी बुला लेते हो,
1: फिर पूछते क्यों हो कि मेरी बनाई इस सृष्टि में इतने पाप क्यों हैं?
0: बिल्कुल ठीक है।
1: हे भगवान, सुना है आप साफ दिल वालों को जल्दी बुला लेते हो, फिर पूछते क्यों हो कि मेरी बनाई इस सृष्टि में इतने पाप क्यों हैं? आपने दिल तो इतना साफ बना दिया, फिर बताओ उनके जीवन में इतने सांप क्यों हैं? आपने दिल तो इतना साफ बना दिया, फिर बताओ उनके जीवन में इतने सांप क्यों हैं? चलो मान लिया आपकी बात, जब आप कहते हो कि भाई पुण्य है तो पाप भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा, मैंने मान लिया आपकी बात, जब आप कहते हो कि पुण्य है तो पाप भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा, मैंने बीच सपने उसको गुजरते देखा है, और आप कहते हो पार्थ तू सपना देख पूरा भी होगा।
0: वाह, सपना देख
1: पूरा भी होगा,
0: पार्थ सपना देख पूरा भी होगा।
1: पार्थ जो अपने बच्चों को कहते हैं।
0: समझ गया मैं, बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत ही अच्छी थी ये लाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओरिजिनल वाली क्लैप्स। और मैं बताऊं हर्ष, ये बहुत ही सच्ची और एकदम दिल से निकली हुई बात है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना कुछ चीजें जो हमारी कलम से निकलती है वो एक्चुअल में हमें रूबरू कराती है असलियत से।
1: डेफिनेटली
0: है ना, तो वो चीज हर कोई नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जो अपने ओरिजिनल कॉन्टेंट को लिखना जानता हो। तो अभी तुम्हारी हॉबीज क्या है, क्या चल रहा है इसके अलावा? और अभी
1: I am into family business, I am doing open
0: bus mics. आगे अब आपको यही इसी पे फोकस करना है, family business
1: alongside I'll be taking this my profession as a content creator or a comedian.
0: All right, very nice, मतलब मुझे लगता है कि आज के जमाने में इस चीज पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे।
1: Yes,
0: है ना, तो थोड़ा सा समय के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन, बहुत अच्छा था ये सफरनामा मुझे जो आपके साथ करने को मिला आज, एंड रैंडमली हम लोगों का कन्वर्सेशन हुआ, रैंडमली हम लोग यहाँ पे आज शो भी कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड था, इट्स नॉट अ प्लान, बिकॉज ये कैसे हुआ आई डोंट नो, बस एक रैंडम शो था, एक आया एकदम से, हम लोगों ने इनको बुलाया, ये भी हाजिर हो गए, बहुत मजा आया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: कुछ कहना चाहोगे? तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पे।
1: मैं बस ये कहना चाहूंगा गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों से बैर ना रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कब अपना पराया मतलब वो चला जाए। बैर ना रखें, जस्ट कीप ऑन लाफिंग।
0: एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि लाइफ में ना छोटी छोटी चीजें अगर हम इनको अपने दिमाग में और अपने जहन में रखेंगे तो शायद हम किसी के साथ ईर्ष्या में रह ही नहीं पाएंगे। यू नो, पॉजिटिविटी मेंटेन रखिए, ऐसे मुस्कुराते हुए अपने बेहतरीन से सफर की शुरुआत के लिए ट्यून इन रखिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, कीप स्माइलिंग, ऐसे ही स्माइल करते हुए आगे बढ़िया, बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो आनंद विद यू, और अभी मैं लूंगा आपसे जाने की इजाजत, क्योंकि समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपसे और ढेर सारी बातचीत करें। लेकिन हाँ, अच्छे गाने आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जो आपको थोड़ा सा हैप्पी फील कराएंगे। तो बस ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, मिलेंगे जरा सी देर में। हाँ जी, मतलब कुछ और कॉन्वर्सेशन के साथ हम मिलेंगे आपको, बट इस वाले शो में नहीं, किसी और वाले शो में। हाँ जी, फिलहाल मैं कहना चाह रहा था, कुछ कहना चाह रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, रेडियो वाला आनंद 95.9 नाम से मिलता हूँ. ऑफिशियल आईडी है एफ एम मुरादाबाद 89.6 के नाम से. फॉलो कीजिए और अभी के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ. सकता हूँ इस कॉन्वर्सेशन की कुछ कुछ क्लिप्स आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी डेफिनेटली देख सकते हैं. अभी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कुछ अच्छे गाने. जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात. बाय बाय, टेक केयर.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: हेलो जी, कैसे हालचाल है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और इस वक्त फिर से हम एक खास मेहमान के साथ स्टूडियो में हमने जो है एंट्री दे दी है, यानी कि मेरी तो एंट्री होगी और मेरे साथ ही साथ एक और बहुत ही कमाल के शख्स हैं, एक बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है जो यहाँ पर आ गई है हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में आपसे गुफ्तगू करने। और ढेर सारी वो अपने साथ पूरा एक पिटारा लेकर आई है, ढेर सारी डायरी लेकर आई है, बहुत सारी उनके पास एक पोर्टल ही है पूरी जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। तो आज कौन है जो खजाने से भरपूर हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में आ चुकी हैं, दस्तक देंगी अपनी आवाज के माध्यम से, आपको आज करेंगी ढेर सारा यू नो एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो लेकर आई है, बहुत सारी बातें आपको बताने वाली है, बहुत कुछ सुनाने वाली है। एंड शी इज अल्टीमेट, जिन्हें कह सकते हैं एक पैकेट आज आपको हम देने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है मुझे खुद को भी नहीं पता, आई एम वेरी सरप्राइज। बस इतना पता था कोई आने वाला है, लेकिन वो लेकर आने वाला है ये भी नहीं पता था। एंड यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता लगता है कोई गेस्ट को हमें इंटरव्यू करना है तो उसकी डिटेल्स हमारे पास होती है, लेकिन ये जो मैम आई है ना इनकी कोई डिटेल है ही नहीं हमारे पास। अब जो भी होगा एक्सक्लूसिवली लाइव होगा। सो सबसे पहले तो वेलकम बैक है मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
5: हेलो एवरीवन, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आनंद आपके साथ आकर।
0: थैंक यू सो मच।
5: आप जी का जो मुझे सुन रहे हैं मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि जुड़े रहिएगा, बहुत दिल पसंद नगमे सुनने को मिलेंगे, कुछ दिल को छू जाने वाली नज़में और बहुत सारी बातें दिल से दिल।
0: क्या बात है, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि आज एक नहीं दो दो एंकर आपको सुनाई दे रहे हैं, दो दो अनाउंसर आपको सुनाई दे रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि मैम बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब किसी की एक तो आवाज इतनी अच्छी, ऊपर से उनकी बात इतनी अच्छी, फिर उनका फ्लो इतना बढ़िया, तो वो पूरा एक नो माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दो एंकर यहाँ पे बैठ के आज श्रोताओं को एंटरटेन करने वाले हैं।
5: सो प्रोग्राम का टाइम एक्सीड हो जाने वाला है।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे मुरादाबाद की जनता को हम जानना चाहती है, मुरादाबाद की ऑडियंस की, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं।
5: मैं जो भी कहूंगी वो आप सब भूल जाएंगे, आपको याद क्या रहेगा, मेरी आवाज या जो कुछ मैं सुनाऊंगी। तो मुझे लगता है हमारी कविताएं, हमारी कहानियां, हमारी नज़में, ये जो हैं हमारे दिल से आती हैं और यही हमारी रूह का रिफ्लेक्शन है, आईना है।
0: एब्सोल्युटली।
5: तो बजाय इसके कि मैं कुछ और इधर उधर का इंट्रोडक्शन दूं जो आप भूलें और आगे बढ़ जाएं, आप कविताओं से शुरू करते हैं और उसके जरिए आप मुझे खुद ब खुद जान जाएंगे। और हाँ, अगर आप मुझे दोबारा सुनना चाहेंगे तो फिर मेरी ये आवाज ही मेरी पहचान होगी।
0: एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है मैम ने कर दिया, एक आपको हिंट दे दिया, एक क्लू दे दिया है कि वो क्या करने वाली है, वो तो वही बताएंगी। तो मैम प्लीज, शालिनी मैम, मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, कुछ आपसे ही शुरुआत हो जाए प्रोग्राम की।
5: बिल्कुल। तो एक छोटी सी बात है कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आपने लिखना कैसे शुरू किया। तो उसी के बारे में कुछ लाइनें हैं, एक छोटी सी नज्म है, सुनिए। कि जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा,
0: वाह,
5: जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, मैं तोड़ू उस खामोशी को मुझसे ये हट कर बैठा, तब तब कोई नज्म किसी नन्हे पौधे सी मुस्काई, तब तब अल्फाजों ने धीरे से ली है अंगड़ाई, जब जब रूह खंगाली मैंने, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन कर

0: के लफ्ज गिरे। जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, मुंह पर उंगली रख कर उनको बिठा दिया खामोश परे। चुपके चुपके से, चुपके चुपके से वो सारे बन गए दोस्त हमराज मेरे। फिर नज्म ढली कविता पनपी, बन गए कहानी राज मेरे, बन गए कहानी राज मेरे।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम। आपने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है अपनी पंक्तियों के साथ, जो आपने अपने आप कुछ किया है, लाजवाब, मतलब ब्यूटीफुल लोग, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आप क्या स्पेशल करने वाले हो। कहते हैं ना, एक कलाकार की सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो जब अपनी कलम से लिखता है तो उसकी लिखाई जो है उसके शब्दों में जब आ जाती है तो माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। वही आज आप कर रहे हो शालिनी जी, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपको मैम को सुन के डेफिनेटली मजा आने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है, मतलब ये तो कह सकते हैं एक डेमो था, ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैम सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको हमारे स्टेशन में आके कैसा लग रहा है?
0: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और स्टेशन में आने से पहले ही मुझसे पूछा जा चुका है, लोगों ने मुझसे पूछा आरजे आनंद के साथ रिकॉर्ड करने वाली हो।
1: क्या बात है, मतलब तो आपको उससे पहले नहीं पता था कि आरजे आनंद भी कोई एफएम पर है?
0: नहीं, मुझे पता था क्योंकि मैंने सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने फैंस भी हैं आपके।
1: मैम ये तो बस कह सकते हैं ना कि जब हम अच्छा काम करते हैं और जब हम मेहनत करते हैं तो वो लोगों को धीरे धीरे पसंद आने लगता है, जैसे कि अभी आपका काम हमारे लिसनर्स को और हमें पसंद आने वाला है। सो मैम मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि आपको ये लिखने की क्यूरियोसिटी कैसे आई, कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
0: मुझे लगता है कि लिखना मेरे को जीन्स में मिला है। मेरे मम्मी डैडी भी लिटरेरी हैं, माँ मेरी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत भजन लिखती हैं, तो लिखना शायद विरासत में मिला है मुझे, और शायद को हटा देते हैं, डेफिनेटली विरासत में ही मिला है मुझे। और धीरे धीरे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने का शौक भी आपको लिखने की एक कुलाहट देने लगता है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैम।
0: तो पढ़ने के शौक से ही ये शुरू हुआ है, किताबों की खुशबू से ही ये लिखना शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि जब मेरे, जो मैंने अपनी बात इसमें लिखी है कि जब जब कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, एक्चुअली वही बात है कि जब भी मुझे कुछ ऐसा फील हुआ मैंने उसे लिखा, बस इस तरह लिखना शुरू हुआ है। मैं कोई ट्रेंड या प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, मैं बस मन की बात को लिख पाती।
1: That's very nice. क्योंकि मैम लिखने के लिए भी आपको फील करना पड़ता है, आपको वो इमोशंस को यू नो कहीं ना कहीं अगर आप कागज पे उतार रहे हो तो उससे पहले आपको वो चीज को अपने जहन में लाना पड़ता है ना। जब तक आप उस फील को फील नहीं करोगे, उस मूवमेंट को फील नहीं करोगे, तब तक आप वो लिख ही नहीं पाओगे, है ना। तो इमोशन
0: शब्दों में
1: जान नहीं आएगी, जाएंगी नहीं। एग्जैक्टली, तो वो चीज तो कहीं ना कहीं हर कोई नहीं कर पाता है ना।
0: हाँ, तो ये ईश्वर की कृपा।
1: हाँ, एग्जैक्टली
0: कह सकते हैं आप।
1: ट्रू, नाइस। वैसे जो ब्यूटीफुल आपकी आवाज है, आप खुद भी इतने ब्यूटीफुल है, नो डाउट।
0: सो
1: थोड़ा सा मैं आपके बारे में ये और जानना चाहूंगा कि मतलब प्रोफेशनली आप क्या करती हैं? आप
0: एजुकेशन आपका? सच बताऊं तो वो सब करती हूँ जिसका डेजिग्नेशन होता है कुछ नहीं।
1: ओ माय गॉड,
0: कहते हैं ना कुछ नहीं करते हैं टाइप, लेकिन मैं बहुत कुछ करती हूँ। वैसे मैं होम मेकर हूँ, मैं काफी सालों तक फोटो एडिटिंग्स में काम करती रही हूँ, वीडियो एडिटिंग्स में भी काम किया है, और अब मैं होम मेकर हूँ, तो मैं 24 घंटे बाद 28 घंटे का काम करना चाहती हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, बुक रिव्यूज करती हूँ, पोइट्री करती हूँ, और ट्रैवल की शौकीन हूँ, जो आपको मेरी कविताओं में भी मिलेगा, पता चल जाएगा।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
0: करती हूँ,
1: बहुत ही बढ़िया। और जब आप नए नए जगह पे ट्रैवल करते हैं तो आपको नया नया कंटेंट भी मिलता है।
0: बिल्कुल, है ना, लिखने की प्रेरणा। और मैं नेचर लवर हूँ, तो हमेशा प्रकृति के करीब जाकर वो प्रेरणा लिखने का, जो अंदर से एक मन, अंदर से एक फील, वो सब अपने आप आ जाती है।
1: That's very nice. शालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और एक स्पेशल सेशन में मैम आई हैं, बहुत सारी चीजें लेकर पूरी प्रिपरेशन के साथ आज वो आई हैं आपको खूब सारा एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए। मैम आगे बढ़ेंगे, क्या स्पेशल सुनाना चाहेंगी इसी बीच आप?
0: तो हम,
1: आपने अपना तारुफ तो करा दिया। यस, हाँ, बचपन। एग्जैक्टली, मतलब फ्लैश बैक में लेके जाएंगे आज आप।
0: तो बचपन सभी के दिल के करीब होता
1: Absolutely.
0: है, तो एक छोटी सी नज्म सुनाती हूँ जो आपको बचपन की याद दिला देगी,
1: मतलब फ्लैश बैक में ले जाएगी आज हम सभी को। श्योर मैम।
0: बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, वो कागज की कश्तियां जो पानी में उतारते थे, वो भीगती थी, डगमगाती थी, डूब जाती थी, फिर दूसरी बनाते थे, ये सोचकर इस बार तो तैर ही जाएगी। वो भी डूब जाती थी, बनाते थे कभी उससे बड़ी कभी छोटी, कभी कागज बदलते थे, पर वो कोशिशें कम नहीं होती थी कभी। वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा। वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा। बड़े क्या, वो खूबसूरत कश्तियां जिंदगी से चली गई। बना तो भी सकते हैं, जाहिर है बना तो अब भी सकते हैं, पर वो जज्बा कहाँ से लाएंगे कि तैरेंगे।
1: ट्रू,
0: वो जज्बा ही तो था। खूबसूरत वो कश्तियां नहीं थी, वो जज्बा ही था जो बचपन में तैरता था और बड़े होकर डुबो दिया हमने।
1: अरे बाप रे, मतलब मैम ये मुझे लग रहा है कि आपने ना एकदम असलियत से रूबरू करा दिया है हमें।
0: याद आ गया ना,
1: एग्जैक्टली मतलब एकदम सच्चाई का आईना दिखा दिया आपकी छोटी सी चार लाइनों ने। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही धमाकेदार आपने सुनाया। अच्छा, ये आप खुद से लिखते हैं?
0: जी, ये सब मेरी खुद,
1: ये आपकी खुद की लिखी हुई है
0: जी।
1: क्या बात है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लिखने के लिए सबसे बड़ा जज्बा तो आपका यही होना चाहिए कि भाई आप पहले उस चीज को जाओ, उस चीज को देखो, उस चीज में घुसो, उसके बाद फिर उसे पन्नों पे उतारो। एंड आई थिंक इट्स नॉट इजी मैम।
0: नहीं तो पर जो आपने जिया है,
1: हाँ,
0: उसे जो आपने देखा है, जिया है, जो आप महसूस कर सकते हो वो आप पन्नों पे उतार सकते हो।
1: Absolutely.
0: अगर आपने जीते समय महसूस नहीं किया, हाँ, अगर आप डूबे नहीं ऊपर ऊपर से निकल गए, हाँ, तो फिर लिखना मुश्किल है।
1: करेक्ट, वही। शालिनी जी के साथ ढेर सारी बातचीत जो है चल रही है आज इस प्रोग्राम में, और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है सेशन चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैम बातचीत के बीच बीच में एक अगर कुछ अच्छे गीत संगीत हो जाए तो प्रोग्राम और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो कोई एक ऐसा गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहती हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब है, कौन सा गीत है जो आपको सुनवाया जाए?
0: बारिश से मुझे वो याद आ गया, रिम झिम रिम झिम रुम झुम झुम झुम।
1: वाओ, ब्यूटीफुल।
0: भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैम ने गाया, बहुत मजा आ रहा है। आप तो मुझे लग रहा है कि मल्टी टैलेंटेड है, अच्छा बोल भी रहे हैं, अच्छा लिख भी रहे हैं और अच्छा गा भी रहे हैं। भाई साहब बहुत मजा आ रहा है, नो डाउट कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। एवरीबॉडी, फिलहाल गाने की बात चली तो पहले ही गाना सुनेंगे, उसके बाद वापस मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। इस गाने के बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या गाना था यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाने को सुन के ना मुझे तो एकदम वो बारिश वाला वेदर याद आ गया। इतना ब्यूटीफुल ट्रैक जिसको सुनते ही हम फ्लैश बैक में चले गए। वेल आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ शालिनी मैम मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जो आपके साथ ढेर सारी बातचीत कर रही है और लिखकर लाई है अपने दिल के जज्बात, जो सीधा आप तक डिलीवर कर रही है हमारे स्टेशन के माध्यम से। आई एम सो ग्लैड मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मजा आ रहा है मुझे सेशन को एंजॉय करते हुए आपके साथ। मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद को भी नहीं पता, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैम, अच्छा मैं आपकी कविताओं के बीच में और आपकी शेरो शायरी जो आप रहे हो बहुत तो है ही अल्टीमेट, नो डाउट। इसी बीच में मेरी खुद की एक गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है कि आपने कई बारी देखा होगा कि आजकल जेंजी को ना ऐसे एकदम से हम किसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम में, हमें ऐसा लगता है कि भैया हमें तो प्यार ही हो गया। मतलब आई डोंट नो लव है या फिर अट्रैक्शन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम में तो प्यार, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में तो नहीं है। जैसे वो अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं वो हो सकता है, लो ऑफ अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट होना। तो जैसे हम फर्स्ट टाइम में किसी को देखते हैं कॉलेज में, मार्केट में, कहीं पे भी, आजकल की जेंजी का है ही ये हाल। अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, उसको प्यार हो गया है, तो उसके लिए कुछ है आपके पास?
1: बिल्कुल, और ये जेंजी का नहीं है, ये तो हमेशा से लव एट फर्स्ट साइट तो शायद हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ।
0: अरे वाह,
1: तो अगर आप पहले देखें तो सॉरी, तो अक्सर ऐसा भी होता था कि हमने कुछ ऐसा देखा कि हमें अट्रैक्शन हो गया, या हमें ऐसा फील हो रहा है कि बस यही तो चाहिए था,

0: पांव झांक रहे थे। एक पांव में काले धागे में पिरोए काले मोती पड़े थे, नजर से बचाने के लिए होंगे शायद। बार बार भीड़ में गुम जाती थी वो। मैं उन्हीं पांव का पीछा करता, फिर खोज लेता था उसे। उसके पांव मेरी आंखें, मेरी आंखें उसके पांव, लुका छिपी खेल रहे थे जैसे। गुम हो गई वो, गुम हो गई वो, और मैं चेहरा ना देख पाया था। बस वो पांव आंखों में लिए घर लौट आया था। रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे, रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे। सुबह होते ही फिर वही मंदिर की सीढ़ियां और वही मैं। हर रोज सुबह शाम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, दुआएं मांगने लगा हूं, बंदगी सीखने लगा हूं। इसे मोहब्बत कहते हैं या इबादत?
1: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मैम। क्या खूब आपने लिखा, मजा आ गया इसको सुनकर, मजा आ गया वाकई में। आई एम श्योर दोस्तों आपको भी डेफिनेटली मजा आ ही रहा होगा। कॉन्वर्सेशन इतनी अमेजिंग चल रही है, बातें इतनी ब्यूटीफुल हो रही है, तो ऑफकोर्स मजा तो आना बनता है। वेल आगे बढ़ते हुए मैम आपका फिर से वेलकम बैक करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप हमारे लिसनर्स को तमाम सारी अपनी लिखी हुई बातों से रूबरू करा रही हैं, वो ताज़ा तरीन बेहतरीन बातें जो है आप हमें वापस याद दिला रही हैं। जो छोड़ के आ चुके होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो पे, जो आज अपनी उन यादों में वापस चले जाएंगे। बिल्कुल मैम, और मुझे लगता है कि यही एक खूबसूरत बात होती है इन कविताओं की, इन पोइट्रीज की, कि ये हमें फिर से जिंदा कर देती हैं। अगर हमारी कुछ चीज हमें खो भी गई है ना, मिस हो भी गई है, अगर हम इनको सुनते हैं तो लगता है कि वाह, हमारे सामने पूरी पिक्चर आ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: ये खूबसूरत एहसास है, और जो आज वो एहसास को आप जगाने के लिए यहाँ आ गई है,
0: थैंक यू सो मच,
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि गाइज इस तरह का टैलेंट ना हर किसी में नहीं होता, और जिसमें होता है फिर तो बल्ले बल्ले। और यार मैम आपका गॉड गिफ्ट है आई थिंक।
0: हाँ बिल्कुल,
1: बस आपने इसको एनहांस कर दिया है,
0: इसको एनहांस कर दिया है। बिल्कुल, मैंने कहीं कुछ सीखा नहीं है, और बचपन से स्टेज पे मेरी मम्मी मुझे भेजती रही कुछ कुछ चीजें सिखा के, मुझे कविता पढ़ना सिखाया, मुझे बाकी चीजें डिबेट सिखाई, और उसके बाद वो चीज मैं शायद पॉलिश करती रही, उन चीजों को वक्त देती रही, और जिसमें आपका दिल लगता है ना, True. वो चीज अपने आप पॉलिश हो जाती है।
1: एब्सोल्युटली, जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, पैशनेट होते हो ना, तो फिर आपका पोटेंशियल, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप बाहर आने लगता है, और आप फिर उसमें आपको ये भी नहीं लगेगा मैं इससे बोर हो रहा हूँ, आप इंजॉय करोगे, एंजॉय लॉट, आप जितना ज्यादा उसमें घुसोगे उतना आपको मजा आएगा। और जिस चीज में आपको मजा आता है ना, वही चीज अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर भी मजा आता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और जैसे कि अभी आपने कहा था कि कविताएं जैसे पीछे ले जाती हैं कविताएं, तो मैंने भी ऐसे लिखा था कि कविताएं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सब चिट्ठियां हैं।
1: क्या बात है।
0: तो वो चिट्ठियां जो या तो अधूरी रह गई और या अपने पते तक पहुंच नहीं पाई।
1: करेक्ट।
0: तो प्रेम हो या नाराजगी हो, इजहार हो, मनोहार हो, समर्पण हो, दर्द हो या टीस हो, या आक्रोश हो, इन सबको किसी ना किसी पते पर पहुंचना था।
1: करेक्ट।
0: लेकिन ये रास्ते में खो गए। अगर ये सब अपने पते पर पहुंच जाते तो इनका सफर खत्म हो जाता,
1: खत्म हो जाता,
0: और वजूद भी।
1: एब्सोल्युटली,
0: इन्हें कोई मोड़ मार के हवाई जहाज बना के उड़ा देता, कोई इसमें चना मुरमुरा खा लेता।
1: करेक्ट।
0: कहीं ये कूड़ेदान में जाती और कहीं अलाव में जल गई हो। हो सकता है कुछ वक्त के लिए इन चिट्ठियों को संभाल लिया होता किसी ने, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इनका वजूद खत्म होना ही था,
1: होना ही था।
0: तो वो चिट्ठियां जो किसी पते पर पहुंच नहीं पाई वो कविताएं हो गई, और ये कविताएं आसमान में लटके सितारों की तरह टिमटिमा रही हैं, स्याह रात में लाखों जुगनुओं की तरह जगमगा रही हैं, महक रही हैं जैसे हिरन में कस्तूरी महकती है, चहक रही हैं जैसे भोर में चिड़िया चहकती हैं, महफिलों की शान और तन्हाइयों की जान हो गई ये कविताएं, लाखों दिलों की मेहमान हो गई।
1: ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या बात है, लाखों दिलों की मेहमान हो गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आज की हमारी जो मेहमान है वो शालिनी जी हैं, और जो हमारे साथ लगातार बहुत अच्छी अच्छी बातचीत कर रही हैं, और देखो ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा।

0: नो no, मुझे भी नहीं पता है, बहुत मजा आ रहा है टू बी वेरी मैम. बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है जब हम टाइम देख रहे होते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 20 मिनट कैसे हो गए, अनबिलीवेबल. इस कॉन्वर्सेशन को चलते चलते प्रोग्राम में ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़े से कुछ और मैम के किस्से और कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें भी सुनेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम जो है पूछेंगे मैम से. बट उससे पहले मैम हम सोच रहे हैं कि ये सब बीच में एक और एंटरटेनमेंट का अगर तड़का लग जाए तो मजा आ जाएगा. एक और खूबसूरत सा गीत जो आप चाहती हैं हमारे शो को एक बार तो ये सुनवा देना चाहिए, आनंद मजा आ जाएगा.
1: तो वो सुनाते हैं.

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी एंजॉय किया। आज का सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। यस, आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। ऑफकोर्स उनकी बातें आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होंगी। आई एम श्योर बहुत सारी उनकी कविताएं आपको फ्लैश बैक में भी लेकर चली गई होंगी। आज हमारे साथ शालिनी जी स्टूडियो में मौजूद है, ढेर सारी बातचीत वो कर रही है। लेकिन मैं एक चीज उनसे पूछना चाहूंगा, मैम आप मुरादाबाद में कहाँ से बिलोंग करती हैं? थोड़ा मैं भी तो जानूं आपके बारे में, थोड़ा सा ये बताइए आप।
1: मैं ओरिजिनली बरेली से हूँ।
0: अच्छा, ओके।
1: और रह रही हूँ यहाँ लगभग 20 साल से,
0: मुरादाबाद
1: में ही हूँ और पैसिफिक स्टार होम में रहती हूँ।
0: अरे वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और आज फिलहाल वो रेडियो की स्टेशन में आ गई हैं, रेडियो की दुनिया में आ गई हैं, जहाँ पर अपनी लिखी हुई वो सारी बातें आज आप तक पहुँचा रही हूँ।
1: शायद
0: थैंक यू मैम, एंड आई डोंट नो कि इनकी सारी बातें हम आप तक पहुँचा पाएंगे या नहीं, बट मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बचा के रखनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर वापस काम आ सके। दोबारा भी तो बुलाना है ना फिर उनको मुझे। सो वेल, अभी मैम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी कविता या कोई चार पंक्तियां अगर आप हमारे नेचर के लिए, पहाड़ों के लिए करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे माउंटेन बहुत पसंद है। अगर मैं बात करूं ट्रैवलिंग की, तो अगर हम ट्रैवलिंग में जब भी कहीं ट्रैवल करने जाते हैं और वो अगर माउंटेन वाला एरिया मिल जाए तो मजा आ जाता है,
1: माइंड
0: ब्लोइंग। मतलब
1: एक नंबर की घुमक्कड़।
0: अरे क्या बात है,
1: आपको सुनाती हूँ जो मैंने अपनी पहाड़ की घुमक्कड़ी के दौरान महसूस किया है वो। और अब अगर सुनने वाले भी आंख बंद करेंगे तो मुरादाबाद
0: पहुंच ही जाएंगे,
1: पहाड़ पर
0: पहुंच जाएंगे। तो चलो हम लोग फील करते हैं,
1: बिल्कुल
0: पहुंचते हैं पहाड़ों की दुनिया में।
1: इन पहाड़ों में बंजारापन मेरे लिए सुकून की परिभाषा है। सूरज से पहले अरुणा का आना, जैसे प्रियतम के लिए रेड कार्पेट बिछाना, हवाओं में बहता चिड़ियों का संगीत और बादलों का मखमली शामियाना, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और कदमों का खुद ब खुद सद के चलते जाना, सुबह जैसे अंगड़ाई लेकर जाग रही हो और मुझे अकेला पाकर कविता का मुझसे बतियाते हुए साथ चलते आना, घरों से उठते धुएं का सर्द मौसम के साथ मिलकर हवा में तस्वीरें बनाना और मेरा इस सारे आलम में खुद के भीतर बे आवाज उतर जाना, सुबह का दोपहर को लांघ कर बेसबर हो शाम से मिलने चले आना और शाम का खुद आसमान में रंग बनकर बिखर जाना, आसमां का सारे रंगों के साथ नदी में डुबकी लगाना और नदी का लहराते बलखाते सारी धरा को धानी ढंग जाना, कुदरत की गलबैयां डाले कविता का सारे रंगों के साथ मेरे मन समा जाना और मेरा दुआ करना कि यूं ही फूले फले ये पहाड़ ये नजारे, कि बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना।
0: क्या बात है, बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना। बिल्कुल, और ये आना जाना तो बिल्कुल लगा रहेगा मेरे दोस्त। अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो बस आप मैम की चार पंक्तियां जरूर याद कर लीजिएगा। शायद आप जब जब जाएंगे तो आपको ये पंक्तियां याद आती रहेंगी, एंड मुझे लगता है कि इन पंक्तियों से तो सच में हम सब पहाड़ों में पहुंच ही गए हैं। मैम आज बहुत मजा आ गया और आपकी इन लाइनों से मुझे लगता है कि वाकई में आप एक नंबर की घुमक्कड़ तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरीके से लिखा है ना वो बिल्कुल हमें ओरिजिनल फील दे रहा था, लग रहा था कि हम वहां पहुंच चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी जरूर मजा आया होगा। सो मैम, अब चलते चलते कोई प्यारी सी चार पंक्तियों के माध्यम से कोई एक सोशल मैसेज, कुछ अच्छा विचार जो आप रखना चाहें हमारे लिसनर्स को, जो आप अपने कविताओं के कहानियों के माध्यम से बताना चाहें, कोई संदेश आप देना चाहें इस प्रोग्राम के माध्यम से।
1: बिल्कुल, तो एक छोटी सी बात कहूंगी और ये है ऑर्गन डोनेशन के बारे में।
0: ब्यूटीफुल,
1: सुनिए प्लीज। रूह जब आजाद हो जिस्म के इस पहरन से, ये बूटी ये झालर ये सलमा सितारे ये मोती नगीने ये गोटा किनारे, ये सब हमारी आंखें हमारे दिल हमारी किडनी के बारे में है। ये बूटी ये झालर ये सलमा सितारे ये मोती नगीने ये गोटा किनारे, जलने न पाए छुटा लेना सारे, कि इनके लिए हैं लंबी कतारे, किसी का दिल इंतजार में दिल के हमारे और किसी की नजर के इंतजार में खुद नजारे, क्यों मिट्टी मिलाएं लुटो ये सारे कि जीते रहेंगे तुम्हारे हमारे।
0: जीते रहेंगे तुम्हारे, हमारे। सो नाइस मैम, थैंक यू सो मच आपसे बातचीत करके, सच में बहुत मजा आया। एंड आई एम श्योर ये जितने लोगों ने सुना होगा उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा डेफिनेटली।
1: थैंक यू सो मच,
0: बातें यहाँ रखिए।
1: यस, बहुत अच्छा,
0: अपने लिसनर्स के साथ आपको भी बातचीत करके डेफिनेटली मजा आया होगा, क्योंकि आज वो लिसनर मेरे नहीं आपके भी हो गए, क्योंकि इतनी मनमोहक वाली आवाज है आपकी, इतनी अच्छी आप बोल रहे हैं, तो यू नो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड एक कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा थॉट या कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है आप कहना चाहे मुरादाबादी से तमाम लोग आपको सुन रहे हैं?
1: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये जितने भी क्रिएटिव आर्ट हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, चाहे वो लिखना है, चाहे वो गाने हैं, या कुछ भी जो भी क्रिएटिव आर्ट हैं, वो आपको एक जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का सलीका सिखाते हैं। तो लगे रहिए इसमें और एंजॉय करते रहिए।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत अच्छा लगा। एंड जल्दी फिर आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ और नई बेहतरीन बातों के साथ, तब तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।
1: थैंक यू सो मच।
0: एंड गाइज आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। छोड़ के जा रहा हूँ कुछ अमेजिंग ट्रैक के साथ, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात, तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: करो।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी कहते हैं ना श्रोताओं, एक घर एक परिवार। जहां कभी एक ही थाली में खाना खाया जाता था, एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराया जाता था, लेकिन जैसे ही माँ बाप की उम्र ढलती है और बात जमीन जायदाद की आती है, वही अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके घर जमीन और संपत्ति बनाते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद परिवार प्यार से रहे। लेकिन अफसोस, कई घरों में सबसे पहले सवाल यही उठता है कि किसके हिस्से में आएगा संपत्ति। यही से शुरू होती है वसीयत की अहमियत। वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अगर समय रहते सही तरीके से वसीयत बना दी जाए तो कई पारिवारिक झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर और रिश्तों में आने वाली दरारें रोकी जा सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्या यह जरूरी है और इससे परिवार को क्या फायदा मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए आप।
1: नहीं, मैं तो वेट करता हूँ हर वीकेंड्स पे कि आप कोई अच्छी सी नई सीरीज लेके आओगे लीगल टॉक्स में, अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम की, जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो को, उनको कुछ नया जानने को मिलेगा।
0: पर अब की बार आपने वेट ज्यादा करवा दिया सर।
1: देखिए, कुछ होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो मैं माफी चाहूंगा अपने रेडियो के लिसनर्स से भी, कम्युनिटी रेडियो के, कि मैं टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ में और आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप बने रहिए अपने रेडियो कम्युनिटी सेंटर से, आपका मुरादाबाद कम्युनिटी जो 89.6 रेडियो है। शुरू करते हैं आज का।
0: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये शो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात की कमाई से घर बनाता है, जमीन खरीदता है ताकि उसके बाद भी परिवार खुशहाल रहे। लेकिन कई बार वही घर और वही जमीन अपनों के बीच दूरियों की वजह बन जाती है। प्यार की जगह हिस्सों की बातें होने लगती है और रिश्ते अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक समझदारी भरा फैसला ना सिर्फ संपत्ति का सही बंटवारा तय करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत छोटा सा वर्ड है वसीयत, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका।
0: कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाल।
1: टॉपिक बहुत आज का जो है बहुत ही के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा अपने लिसनर्स से मैं बोलूंगा।
0: बिल्कुल। तो सर, यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत होता क्या है?
1: देखिए, वसीयत जिसको हम हिंदी में विल बोलते हैं, वसीयत एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति ये लिखता है कि इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है, उसकी एसेट्स जो है, किसको देनी है, कितने रेशो में देनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक अपनी विल के माध्यम से उसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि मेरे ना होने के बाद मेरे, ताकि मेरे जो चिल्ड्रंस हैं या जो भी मेरे जो और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उससे प्रिवेंटिव होने के लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है। उसी डिक्लेरेशन को उसको हम विल बोलते हैं, उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एक, तो उसको ही वसीयत बोलते हैं।
0: मतलब फैमिली वालों का नाम मेंशन होता है उसमें।
1: हाँ, उसे जो भी उसकी कमाई हुई एसेट्स है, जो भी उसके पास जो संपत्ति है, उसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में वो सारी डिटेल्स खोल देता है। उसको अपने जीते जी वो जो है सब उसको डिक्लेयर कर देता है कि कल को उसके जाने के बाद इस दुनिया से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उसके रिलेटिव्स में या उसके बच्चों में क्रिएट ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर व्यक्ति वसीयत बना सकता है?
1: हाँ, बिल्कुल बना सकता है। अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, एकदम आप बिल्कुल साउंड माइंड से जो है बिल्कुल होश और आवास में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप अपनी वसीयत, अपनी विल आप अनाउंस कर सकते हैं। अपने लीगल जो भी आपके कंसल्टेंट है या एडवोकेट है, उनसे आप मिलके आप अपनी वसीयत बना सकते हैं और उसको आप जो है आने वाले फ्यूचर के लिए कोई भी अगर लगता है आपको कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है, तो उसको आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
0: मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए सर?
1: एज देखिए 18 वर्ष हो या उससे ऊपर होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: एटलीस्ट आपको बालिग होना जरूरी होता है।
0: क्या वसीयत बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?
1: देखिए, अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन कई एक ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसमें, कानूनी लैंग्वेज आपको नहीं पता होती है तो आपको एक जो एडवोकेट है वो हायर जरूर करना चाहिए, जिससे कोई भी आपको अगर कोई लीगल वर्ड है या लीगल टर्म है जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई अगर देखिए आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने जो भी लीगल कंसल्टेंट है या लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही आपको वसीयत बनवानी चाहिए।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर ही बनानी आवश्यकता होती है?
1: देखिए, साधारण कागज पे भी आप कोई अगर अपनी विल करना चाहे तो कर सकते हैं और स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, साधारण कागज पर भी वैध वसीयत बनाई जा सकती है।
0: क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
1: जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अगर कोई विवाद सामने कोई आगे फ्यूचर आने वाला होता तो उसकी संभावना कम हो जाती है उससे।
0: और क्या सर वसीयत में दो गवाह होना आवश्यक है?
1: हाँ, वसीयत में विटनेस जरूर चाहिए होती है, ऑर्डिनरी तौर पे दो, एटलीस्ट दो विटनेस तो मैंडेटरी है, दो गवाह बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल।
0: क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
1: हाँ, वसीयत अगर आपने कोई भी करी हुई है और आपको लग रहा है कि भाई अब मैं अपना माइंड आपका चेंज हो गया, या आपको लगता है कि मैं वसीयत मैंने अपने जो है अब चेंज करना है, या मुझे अपना ये हिस्सा बढ़ा के इतना देना है या कम करना है या नहीं देना, तो आपका राइट बनता है, आप अपने जीते जी अपनी वसीयत जो है आपकी वो अपने लाइफ में अपने जीवन काल में कभी भी रद्द कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं आप।
0: यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई तो उसकी संपत्ति का क्या होगा?
1: देखिए, ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आज की डेट में, लोग इतना डीप में सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है वसीयत की क्या जरूरत है, लेकिन कॉमन देखिए लाइफ जो है हमारी जो है सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वसीयत तो एटलीस्ट कम से कम सबको करनी ही चाहिए। और अगर वसीयत नहीं बनाई होती है तो उस केसेस में प्रॉब्लम्स ये आती हैं, जो उसके लीगल हायर्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उसमें आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है, डिस्प्यूट्स होने की संभावना रहती है, और फिर वो जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है सब्जेक्ट, वो आप कोर्ट के सू के माध्यम से ही उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगा जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा, ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हैं और जो पार्टीज अपना अपना जो है पक्ष रखती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी रेशियो में सबको जो है प्रॉपर्टी मिल पाती है। फिर
0: उत्तराधिकार का क्या अर्थ है?
1: देखिए, उत्तराधिकार एक तरीके का सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के कानूनी वारिसों को मिलने की प्रक्रिया को हम उत्तराधिकार कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने जो है वसीयत कोई अपनी करी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, यानी जिसको उसने सक्सेशन किया है, जिसको उसने ऐसे।
0: एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर, जो कि हर किसी के मन में घूमता रहता है, ये तो क्या बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों को इसका आंसर नहीं पता होगा, वो सोचती हैं बचपन से ही उन्हें ये पता है कि मुझे तो शादी होके घर चले आना है, बस बात खत्म। तो ना वो कभी संपत्ति के लिए अपने हिस्से के लिए कभी कहती हैं अपने घर में, और ना ही कभी उनको मिलता भी होगा तो बहुत ही कम मैंने देखे हैं केसेस की लोग अपनी बेटी को शादी के बाद भी अगर हिस्सा देते हों। लेकिन हाँ, वर्तमान में कानून के अनुसार बेटी को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है, हर लड़की का हर बेटी का अपने परिवार में अपने फादर की संपत्ति में उसका अधिकार है, उनके बाद में वो अधिकार के लिए अपनी संपत्ति में हिस्से के लिए वो कोर्ट में सू कर सकती है, उसे राइट मिलता है।
0: क्या बात है, तो सुन लिया भाई लड़कियों बहुतों को नहीं पता था सर, सच में एक्चुअल में नहीं पता होता है, क्योंकि उनको बचपन से यही कहा जाता है कि ये अभी तुम्हारा घर है, शादी के बाद तो वो हमारा अगला घर हो जाता है।
1: संपत्ति में जो है बेटी का भी अधिकार बनता है, बराबर का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना बेटी का हिस्सा।
0: सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि शादी हो जाने के बाद?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस भाई लड़की की शादी हो गई अब तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी के बाद भी बेटी का संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर अधिकार हमेशा बना रहता है, उसका लीगल राइट।
0: पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है?
1: देखिए, स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, अपना खुद उसने कमाया है, जबकि पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे पीढ़ियों से, कोई बाबा के या दादा के जमाने से कोई पीढ़ियों से चली आ रही कोई संपत्ति होती है, तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं।
0: क्या बात है श्रोताओं, बस यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आप सभी के बीच कनेक्ट होते हैं। आपने कितने नहीं जाना जी, रेडियो किसी बिल्कुल भी नहीं घुमानी यार, जो रीना के साथ कनेक्ट रही ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है श्रोताओं आप सभी का, और आप सुन रही हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, और बहुत से लड़कियों को भैया यही लगता है कि अभी भी कि शादी के बाद मायके का जमीन जायदाद हमारी नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होता है तो देखिए मायके का गेट आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं क्योंकि मम्मी पापा के जायदाद में आपका भी पूरा अधिकार होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम वसीयत करा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल करा सकता है, ये संबंधित व्यक्तिगत कानून है और मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो जो भी अपनी संपत्ति हो किसी एक व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है, वसीयत कर सकता है उसके लिए।
0: क्या मौखिक वसीयत मान्यता होती है?
1: समानता लिखित वसीयत अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक मानी जाती है, मौखिक वसीयत केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही मान्य हो सकती है। और विशेष परिस्थिति ये होती है जैसे कोई बहुत ही सीरियस कोई बीमारी है, या बिल्कुल उसको लगता है कि वो इसकी लाइफ सर्वाइवल बहुत कम है या थोड़े टाइम की है, तो रजिस्ट्रार के सामने अगर वो कोई ओथ लेता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ओथ लेता है और वो कोई ऐसी संपत्ति को डिक्लेयर करना चाहे या लिखने पढ़ने में असक्षम हो, तो उस समय मौखिक जो वसीयत भी वो किसी रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के समक्ष डिक्लेयर करके कर सकते।
0: यदि वसीयत पर विवाद हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
1: देखिए संबंधित पक्ष न्यायालय में जाकर वसीयत की वैधता को चुनौती दे सकता है, और अदालत जो भी निर्णय होगा जो भी डिसीजन लेगी साक्ष्यों के आधार पे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पे जो भी अदालत जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होगा जो डिसीजन होगा वो पक्षों को मानना पड़ेगा।
0: क्या नाबालिग बच्चों के नाम पर वसीयत किया जा सकती है?
1: बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अभिभावक गार्जियन का उल्लेख करना उचित रहेगा, क्योंकि नाबालिग के लिए आप अगर कोई भी वसीयत कर रहे हैं तो उसको गार्जियन मतलब उसकी जो है मैच्योरिटी जो 18 ईयर्स ऑफ एज होने तक जो है गार्जियन अभिभावक जो है उसका उल्लेख करना मैंडेटरी होता है।
0: मतलब 18 प्लस होना ही चाहिए?
1: नहीं वसीयत कर सकते हैं आप जो है नाबालिग के लिए भी, लेकिन एक गार्जियन जो है गार्जियन अभिभावक का उल्लेख करना उसमें उचित रहता है।
0: ओके
1: उससे कोई भी उसमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आती है फिर।
0: ओके क्या वसीयत में किसी भी व्यक्ति या संस्था को समर्पित की जा सकती है?
1: समर्पित हाँ, आप कोई भी अगर कोई भी अपनी संपत्ति है आप कानून के हिसाब से अनुसार व्यक्ति अपनी स्वयंअर्जित संपत्ति जो है वो किसी भी संस्था को आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है सर।
0: क्या परिवार के सभी सदस्यों को वसीयत की जानकारी देना जरूरी है?
1: देखिए वैसे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई आपका फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए और नहीं बताना है तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो तो
0: मतलब बताना बहुत जरूरी है सर।
1: वो आपको लगता है कि अगर हाँ भी ठीक है मेरे बताने से ये चीजें जो है डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद कल को लड़ाई झगड़ा ना हो तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वसीयत विल कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये संपत्ति को पार्टीशन करना है।
0: संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई म्यूचुअली आप जो रिकंसाइल करें, आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास करें, कोई सॉल्यूशन निकालें कि वो जो है जो भी जो है डिस्प्यूट है आपका रिजोल्व हो जाए, बातचीत से ही रिजोल्व हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई जो है डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी लीगल जो है अपना कंसल्टेंट या लीगल कोई जो है आपके लॉन्ग या एडवोकेट्स होंगे आप उनको जो है उनसे राय लेके आपका मशवरा करके आप कोर्ट के थ्रू केस डाल के भी आप उसको रिजोल्व करा सकते हैं।
0: एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, आम जनता के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सलाह क्या होगी?
1: देखिए यही सलाह है कि अपनी संपत्ति के संबंध में समय रहते स्पष्ट और विधि सम्मत वसीयत बनवाएं जो भी है इस पर लॉ है, और आवश्यक दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी योग्य अधिवक्ता से या कोई भी जो आपके लीगल कंसल्टेंटों से आप कानूनी सलाह अवश्य लें, और बस मैं यही बोलूंगा कि जो है प्रॉब्लम्स जो है हमें पता नहीं होती कब आने वाली है, तो आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है तो आपको भी अपनी वसीयत जरूर बना के रखनी चाहिए, और ये सेफ है प्योरली, और जो है आप अपने रहते कभी भी वसीयत आप उसको चेंज कर सकते हैं रद्द कर सकते हैं।
0: क्या बात है, एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप?
1: देखिए संदेश मेरा अपने लिसनर्स से से यही है कि आपका रेडियो कम्युनिटी रेडियो जो इतनी अच्छी अच्छी लीगल टॉक्स में इतनी अवेयरनेस की बातें लेके आते हैं उसको सुनते रहें और अपने लीगल जो आपके जो राइट्स हैं उसके प्रति सजग रहें और जो है हमेशा जो है जागरूक रहें और जो है बस यूं ही जो है हमारे शो को आप प्यार देते रहें।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि श्रोताओं का प्यार हमारे लिए
1: बहुत जरूरी है। उन्हीं के लिए हम लोग हर वीक वेट करते हैं कि उनसे बात होगी, वो हम जो है उनके लीगल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सर अगली बार बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे,
1: नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि वसीयत आखिर क्या होती है, इसे बनाना क्यों जरूरी है और यह कैसे आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन सच तो यही है कि जिसके पास भी कोई संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस या कोई कीमती चीज है, उनके लिए वसीयत बनाना एक समझदारी भरा कदम। समय रहते बनाई गई एक सही वसीयत परिवार में होने वाले कई विवादों, गलतफहमियों और कानूनी परेशानियों से बचा सकती है। सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई आपकी इच्छा के अनुसार सही व्यक्ति तक पहुंचती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी कई शंकाओं का समाधान किया होगा और आपको यह समझ आया होगा कि वसीयत सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समझदारी को लेके जाता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत सी गलत फहमियाँ होती है लोगों के अंदर जो आज क्लियर हो गया है, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे श्रोताओं एक ऐसे टॉपिक के साथ, आप सभी के साथ, जहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए अपनी जिंदगी में और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहिए। बाय।